रीझ गई देखकर। अरे मेरी स्वामिनी जी का नाम लेके रो रही, ये राधा नाम है ही ऐसा, जिस दिन रंग चढ़ेगा ना राधा कश, वो हृदय की कुछ दशा बदल जाती है। जैसे जैसे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और राधा नाम का प्रभाव पड़ेगा, काफी है, फिर और कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए, शब्द याद कर लो, ये ऐसा रंग चढ़ेगा राधा राधा कुछ, राधा नामय कार्यम हनुदिनी मिलतम साधना घीस कोटिश, केवल केवल राधा राधा, परम पदवी तुम्हारे चरणों में लौटेगी, सिद्धियां तुम्हारे चरणों में, ये राधा नाम है। एक कौन सखी है जो ऐसी स्वामिनी जी को पुकार रही है, एक अनुपम रूप सखी सुख सागरी तन कोटि अनंग तरंग छवीली नागरी।

हाथ में वीणा लिए हुए राधा राधा राधा, बुद्धि थोड़े सब बंद हो जाती चलना। ये वो देश है, बावरों का देश है वृंदावन। यहाँ ज्ञान विज्ञान झाड़ू लगा के बाहर परिक्रमा के कर दिया जाता है। ये तो वो देश है जो आंसुओं से भीगी हुई भूमि से युक्त है। चाहे जिस भाव के जन हो, यहाँ आंसुओं से अभिषिक्त करते रहते हैं, वो भूमि है। ऐसी भूमि पर भी आकर और वास करके यदि राधा प्रेम न प्रकट हो, राधा नाम में प्रीति न हो, तो बड़ा ही मलिन हृदय है। ये साधन भूमि नहीं, तो सिद्ध प्रेम भूमि है। लालजू की प्रेम वृत्ति को पहचान पाना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है। ऐसा प्रेमी कोई नहीं जैसे लालजू है। सच्ची तुम्हें बताते हैं, मतलब बहुत ही चतुर शिरोमणि होते हुए बहुत ही भोरे हैं, बहुत ही लाडले हैं। देखो ना, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर अपने भक्तों की लंगोटी धोते पाए गए, रथ आते पाए, क्या क्या। आज भी हमारी सबकी, हम कहलाते हैं उनके दास, लेकिन सही पूछो तो वही हमारी सेवा करते हैं। हम तो केवल नाम मात्र के दास हैं, वही हमारा भरण पोषण अंतर और बाहर से वही करते हैं। सखी श्री जी से जागीर की ऐसा प्रेमी हमने नहीं देखा। वो मानसरोवर के कुंजों में बैठ करके बिना हाथ में लेकर के अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा ऐसा मंत्र रट, ये परामंत्र है, पराविद्या, इसीलिए आगम निगम पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ये पराविद्या है राधा नाम। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी ये दुर्लभ नाम है। ये कृष्ण की आंतरिक हृदय वृत्ति में विराजमान ये राधा नाम है। श्री जी से कहने लाडली जू, वहां के जितने भी जीव जंतु हैं, खगमृग पशु पंछी, राधा नाम सुनकर सब मोहित हो रहे हैं और एकटक चकोर की भांति उसके मुख चंद्र की तरफ देख रहे। वो अशुभ प्रवाह करती हुई राधा राधा राधा राधा ऐसा वीणा वादन करते हुए गान कर रही। लाडली जू, मान सरोवर मांझ अरी सुनि नहाई के, राधा को जाप जपे पानी में जाई के। और हमने देखा किसके बाद वो मानसरोवर में स्नान किया और इतना हृदय तक छाती तक जल में खड़े होकर राधा राधा राधा ऐसा जप कर रहे हैं, अर्थात राधा नाम का कीर्तन और राधा नाम का जप कर रहे हैं। फिर लाडली जो हमने देखा कि वो आपकी स्वर्ण श्री विग्रह की प्रतिमा को साथ

0: आई गए।
1: जो हमारी स्वामिनी जी की कैसे प्राप्ति होती है, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर गुवार स्वयं लाल जी महाराज, गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम श्री लाल जी का राधा आराधन तत्पर प्रतिपल किशोरी जी की आराधना करते रहते हैं। राधा आराधन तत्पर तत्पर है श्री स्वामिनी जी की, कैसे कोई जानेगा राधा तत्व, जिन श्री कृष्ण तत्व को वेद भी नेति नेति कहते हैं वो राधा तत्व का क्या वर्णन कर पाएंगे। लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लालडी जी महाराज, प्रेम अनिर्वचनीय है, कोई नहीं वर्णन कर सकता। फिर सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी का कोई वर्णन कैसे करे। सखियां जो आचार्य रूप से होते तो वो भी कह रही, जो को कोटि कल्प लग जीवे रसना कोटि को पावे तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत नावे। लाडली जू वो आपकी स्वर्ण प्रतिमा को स्वर्ण श्री विग्रह को स्नान करा रही है और चरणोदक लेकर पान करके अपने माथे पे चरणोदक और हृदय से उस प्रतिमा को लगाकर ध्यानस्थ हो जाती है।

भी लाडली जू आपकी प्रतिमा का श्रृंगार कर रहे हैं। सुंदर सुंदर केसर, चंदन, कर्पूर, इस मिलित चंदन से पत्रावली की रचना उस स्वर्ण प्रतिमा में करते हैं, सुंदर पोशाक धारण कराते हैं, फूलों से श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, जल पवाते हैं, फिर आचमन करा करके मुख पोछ कर पान की बीड़ी और फिर आपके चरणारविंद में प्रणाम करके प्रसाद पाते हैं जो भोग लगाया।

स्वामी जी सुंदर सुंदर फूलों को चयन करके सैया की रचना कर निकुंज में फूल बंगला बना दी और आपकी प्रतिमा को विराजमान करके सुंदर सुंदर पद गान करते हैं, आपको रिझा रहे। यह है उपासना महारानी जी को प्रसन्न करने की। जानन गानन तानन प्राणन सोही के, आहा, वो बड़ी जानकार है। ऐसे सुंदर सुंदर रागों का गान करके प्राण मोहित हो रहे हैं उनकी गान। समस्त आचार्यों के आचार्य हैं लालजी महाराज, जगत गुरु हैं, नृत्य गान वाद्य आदि सबके आचार्य हैं, यही इन्हीं से सब प्रकट हुआ है। जानन गानन तानन प्राणन सोही के, और लाडली जू एक छोटी सी प्रतिमा और आपका नाम कंठी में पहने हमने उनको देखा। तेरी प्रतिमा पहिरे कंठी में पोही के, तुलसी की कंठी और उसमें आपका राधा नाम और आपका रूप दोनों विराजमान किए हुए हैं। कंठ सुघर संगीत सबे स्वर गावहीं, राग रागिनियां तो मानो मूर्तिमान होकर उनके कंठ में विराजमान हो ऐसे गान कर। और एक आश्चर्य की बात, वो अपने अधरों पे मुरली रख के वैसे ही बजाती जैसे लालजू बजा रहे। मुरली धर जो मुरी के मुरली जो बजा वही, बंशी इतनी प्रेम मई है कि लालजू जब अधरों में धरते हैं तो उसका वजन नहीं सह पाते, ग्रीवा टेढ़ी हो जाती है, कमर भी टेढ़ी हो जाती, ललित त्रिभंगी तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं। रसमयी वंशी का भार अधरों पे पड़ा तो महाराज ललित त्रिभंगी वो रूप और कहीं नहीं मिलेगा, ये वृंदावन का रूप है, कहीं नहीं मिलेगा, द्वारिका में नहीं मिलेगा, मथुरा में नहीं मिलेगा, विग्रह विराजमान उन्हीं के सब है। लेकिन ये रूप यहां बंशी, ये है बंशी का क्षेत्र वृंदावन, सुदर्शन का द्वारिका मथुरा में, वहां भी देखा गया उनका। यहां कभी सुदर्शन जी का प्रवेश नहीं, कभी ब्रज 84 कोश में कौमोद की गदा पांचजन शंख भगवान की दिव्य पार्षदों का भी प्रवेश नहीं, यहां तो कर कमल में श्री मुरली जी विराजमान है। लाडली जो जब वो मुरली में राधा नाम गाते हैं तो जमुना गमुना ना करे वो प्रवाह बढ़ा वही, मृगवाहन चाहन चित्र बंधे धुनि भावई, ऐसा बंशी का नाद कि यमुना का प्रवाह बंद हो गया। यमुना गमना न करे, यमुना जी का प्रवाह बंद हो गया, मृगवाहन चंद्रमा भी चलना रुक गया, थकित हो गया, चंद गति मंद भई निरख छवि काम हो।

वही लाडली जू, बिल्कुल जैसे नंद नंदन बंसी बजाते हुए वो सखी वैसे ही बंसी बजा रही। उनकी बंसी ध्वनि सुनकर वर मोर चकोर किशोर मरालन मंडली, कहीं मोर मंडली, कहीं है हंस मंडली, सुख सारिका को ये पक्षियों के झुंड के झुंड उनको आसपास घेरी हुई, मानो मुनिव्रत धरे कपोती कोकिला कीर, मानो मौन व्रत धारण करने वाले सब परमहंस विराजमान हो, ऐसे चकोर की भांति देखते हुए सब पक्षियों की मंडली विराजमान, और वो अपने अधरों में बंशी बजा रहे। हमें तो देख के ठीक ऐसा अनुमान होता है जैसे नंद नंदन ही हो, वैसे किशोर उन्हार श्री नंद किशोर की, क्योंकि अखियां बड़ी सुख देनी पैनी कोर की, बिल्कुल नंद नंदन जैसी आंखें हैं वैसे ही उनकी चलन चितवन, वैसे ही बंसी और वैसा ही प्रेम। हमारी प्रार्थना है कि आप चल के खुद देख लो कैसी वो आपकी आराधना करती, समझ पाए। सखी श्री जी को प्रेरित करती पधारो लाडली जी, वो आपके, वो हमारा परिचय, हमको लाडली जू का परिचय, हमारा लाडली जू को परिचय, ये काम ये गुरुदेव रूपी सहचरी आचार्य रूपी सहचरी करती। श्री जी से हमारी स्मृति, वो एक है आपका, उनको हमारी तरफ आ, हमारे चित्त को लाडली जू की तरफ, इसीलिए रे मन रसकन संगविन रंचना उपज, कहो कृपा उपजे कई भांति बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। श्री जी से कहा कि हमारी प्रार्थना है आप चल के खुद देख लीजिए।

जिए, अगर आप चलेंगे ना तो उसे बहुत नेत्रों में सुख मिलेगा, क्योंकि आपको प्रतिमा के यहां जब आपको साक्षात देखेंगे तो कैसा लगेगा, और आपको भी सुख मिलेगा क्योंकि वो आपके विशेष प्रेम में मत वाली है। जब आप देखोगी तो आपको सुख मिलेगा, और जब आपको वो देखेगी तो उनको सुख मिलेगा। चलो प्रिया जी, बड़ी कोमल चित लाडली जी, बहुत लाडली जी, लाडली जी, बस कोई है ही नहीं, कोई नहीं, प्रभु भी नहीं आप। इसीलिए तो पता नहीं कौन सा तत्व से किशोरी जो है, किसी के परिचय का नहीं है। आज तक लालजू परिचय नहीं जान पाए हमारे, आप ऋषि मुनियों की तो बात जाने। दुआ दिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। स्वामी जी महाराज श्री हरिदास जी कह रहे कि प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, तैसो भ्रम होत देख्यो न कबहूरी। आज तक पहचान नहीं हो पाई, कैसे कोई जानेगा इस महा युगल सरकार प्रेमिकों की, आज तक पहचान नहीं हो पाई प्रिया प्रीतम में। आज तक दो दिन अंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। प्रतिपल ये नए प्रेमी हैं, अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, इनको नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम ब्रशुभानु किशोर। प्रतिपल नवीन नव किशोर। श्री जी इतनी कोमल चित्त है, बस उसी कोमल चित्त की वृत्ति को गुरु कृपा से समझ के ऐसे गए, भगवत प्राप्ति तुम अगर करोड़ों बार होनी होती तो भी सस्ती थी यार। हमारी महारानी जी के दरबार से सुनो तो भगवत प्राप्ति तो हमारे घर की जेब की बात है। ये केवल महारानी जी के ही बल पर है, किसी साधन बल पर ऐसा नहीं। अगर साधन बल पर सुनना है तो भगवान विश्वनाथ जी के रंग में रंगे हुए वेदांत दर्शन से सुनो तो कांप जाओगे कि क्या किसे कहते हैं मोक्ष, किसे कहते हैं अखंडानंद, कांप जाओगे भैया हम नहीं चल पाएंगे। और यहाँ यहाँ ऐसे लगे चलने की बात की, हम तो दौड़ के चले जाएंगे श्री जी के पास पक्का, क्योंकि जैसे हरिवंश परम कोमल चित, परम कोमल, जेव ही ये कहा श्री जी को क्या हुआ, रोमांच हो गया, कोई हमें इतना प्यार करता है, राधा राधा बोल, श्री जी के अश्रु चल गए श्री जी के, कैसे तुम्हें बताए कितना वो, अरे प्रेम मूर्ति है लाड, कोई राधा राधा बोल रहा है, कोई हमारी प्रतिमा की सेवा कर रहा है। ये जो आप लोग भोग लगाते हैं, नाचते हैं, आरती करते हैं, निहाल हो गए महारानी जी के सामने, मैं किसी और की नहीं सुनना है, श्री जी देख रहे हैं, एक एक पल देख रहे हैं। बात सुने रोमांच किशोरी के भयो, इतनी प्रेम विवशता हुई कि पास में खड़ी सखियों ने संभाल लिया, गले का हार जैसे ऐसे सब सखियां प्यारी जी को बहुत प्यार करती, सखियां प्यारी जी बहुत, पलकन को जैसे अधिक पुतरिन सोमति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभाल, अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार। ये वृंदावन है, ये वृंदावन का प्रेम है, सखियों ने संभाला, किस बात में, कोई राधा राधा कह रहा है, कोई हमारी प्रतिमा का पूजन कर रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, श्री जी कैसे, श्री जी

0: मोती जल।
1: प्यारी जी के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं, जैसे मानो मोतियों की वर्षा। कोई राधा नाम ले रहा, मेरे को पुकार रहा है। परम कोमल चित लाडली, परम मदन टेर के बाबा का जो चरित्र आता है, तो उन्होंने तो यही कहा ना कि लाडली लाल के संग में आप भी कठोर हो। वो तो ऐसे ही बोल रहे थे, इतने वर्ष हो गए वृंदावन वास करते, आंखों से अंधा हो, पूरा जीवन हो गया आपके चरणों में, आज तक आपको करुणा नहीं आई, मुझ दीन पर दया नहीं आई, आपके दरवाजे में पड़ा राधा राधा पुकार रहा हूं। उनको क्या पता कि सामने युगल सरकार प्रतिपल रहते हैं। लाडली जी नहीं रोक पाए, नजदीक जाके कहा, बाबा ये तू कैसे कह रहे हो कि लाडली जी कठोर हो गए। तो उनका संग दोष चढ़ता है ना, लालजू कठोर हृदय के हैं, इसलिए संग दोष से वो कठोर, ऐसे तो पड़ी कोमल। नहीं नहीं मैं कठोर ना है। लालजू ने कहा, तुमने तो भेद ही खोल दिया, हम तो केवल दूर से रसा। लालजू ऐसे, लालजू ने बाबा के नेत्र छुए, दिव्य ने देखा युगल सर चरणों में। लाडली जी से कहा, पहला कार्य करो मेरे को अंधा करो, आंखें खुली तो आपको देखा और देखना नहीं, बस अब और तुरंत हमारी आंखें हटाओ, बस यही रूप में पधारे श्री जी की। बड़ी करुणामय सरकार, देखो कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, मेरी सेवा कर रहा है। तो देखो प्रेम चले भरी नयन मैन रस में, स्वामिनी जी के आंखों से अश्रु टपक रहा है और कुंजों में जैसे मोती बिखेरते हुए जा रहे हो, ऐसे अश्रु गिरते जा रहे और चपल चली शीघ्रता। ऐसा हम सबके प्रति उनका प्यार है, ऐसा आपका समझना। बस एक ही कमी है कि हम अपनी ममता को अपने स्नेह को बांटे हुए, नहीं तो जिस दिन मुड़ोगे आप इधर ना, आप खुद देख लेना कि श्री जी का प्यार क्या है। उन्हीं के प्यार से कहीं कुछ प्यार दिखाई दे तो उन्हीं के प्यार का अंश है।

गजगामिनी गजगामिनी प्रिया जो मत वाली चाल से सखी के कांधे पर अपनी भुजा पधराए हुए हंस गति से चल रही, आगे आगे सखियां लताएं निवारती जा रही, जो वृंदावन के पशु पक्षी दर्शन के लिए भाग की मंडली से इतारे उनसे रास्ता करा। वाम करें इतमाम लिए छवि की छड़ी, फूलों की छड़ी ली हुई हटाती जा रही है। लताएं देख रही प्रिया जो आ रही तो ऐसे वो नृत्य करती कि सब फूल बिछ जाते हैं, मानो लताएं अपने पुष्पों से श्री लाडली जू के चरणों में पावड़े बिछा रही। महारानी जू गजगामिनी जू पधार रही हंस गति से।

सभी पहुंची उधर सेवा परायण नूपुरों की ध्वनि सुन करके देखा हो जिनकी प्रतिमा वही स्वामी जी धारण नेत्र लाडली जी के नेत्र दो चकोर दो चंद्रमा दो वल पंकज दो सखियों ने देखा

नेत्रों को देखकर युगल सरकार की उस पर सखियां गुलाल उड़ा रही है। सी लाडली जो देख के उनकी इस अनुराग को ऐसे प्रेम में विथकित हो रही, व्याकुल हो रही। कीरत की बिटिया विथकी छवि देख के सखी अखियन की पुतरी पुतरी भई पेख गए। आप ध्यान से सुनिए, आप जो भोग लगाते हैं उसमें जो आप प्यार प्रकट करते हैं ना, प्यारी जू बोलिए, प्यारी सीधे प्यारी जू पा रहे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ये बस अंदर से आप श्री जी की सेवा में हैं, बस ध्यान रखो, ये जो महल रचना करते हो कुंज की, जो भोग रचना करके भोग पवाते हो, जो आरती करते हो, जो दुलार करते हो, ये लाडले देख रहे हैं, बस इनका देखना ही हमारे लिए काफी है।

लकी श्री जी ने कहा कि सखी हमारे कोई बहुत पुण्य होंगे जिससे हम तुम्हारी जैसी उपासिका का दर्शन कुंजों में पाया। ऐसा प्रेम राधा नाम से, ऐसा प्रेम राधा रूप से। तुम्हारा नाम क्या है?

क्या नाम है आपका, किस गांव से आई हो और मेरी इस मान सरोवर की कुंज में क्या कामना रखती हो जो ऐसी उपासना कर रहे हो। श्री लालजू महाराज सहचरी बपू है, उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा जू है। श्यामा जू तो मेरा नाम है, ये श्यामा जू तो। और नंदगांव से आए हो, आप जानते हो नंदगांव, श्री जी कहा जानते हो, पर पूरे ब्रज में श्यामा जू तो मेरा ही नाम है। तो ये ऐसे ही हैं, इनमें पता ही नहीं, खुद को पता नहीं कि इनमें कौन श्यामा जू है कौन श्याम जू है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, जैसे दो शीशी में एक ही रंग भर दे ऐसे ही दो देह केवल है, वही एक परम रस है। तो कभी प्रिया जू पुकारने लगती है, हा प्यारी जू आप कैसे रुस गई मान कर गए, तो लालजू को लगता है ये तो हमारी बात बोल रहे हैं। अब प्रिया जू भाव में प्रीतम के हैं बुला रहे हा प्रिया, कभी कभी लालजू कहते हे प्रीतम हे प्यार। सखिया ये नहीं समझ पाती कि लाड़िलो के हृदय में चल क्या रहा, बड़ा एकांतिक प्रेम है। उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा, मैं नंदगांव की हूं और आपकी अनन्य भक्त हूं। ये शब्द बहुत प्यारा शब्द है, आपकी अनन्य, बस इससे सब कुछ हो जाएगा। मान लीजिए बस एक ठसक ले आइए हमारी भोरी सखी के लिए, लाडली जी के लिए, मैं आपकी हूं बस। देखो ना महाप्रभु कह रहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, मुझे कोई परवाह नहीं, नर्क भेज दो या कहीं भी जन्म दे दो, बस महारानी जो आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में स्फुरित रहो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा राधिका रथ निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। क्या फर्क पड़ता है, जहां प्यारी जो वहां निकुंज, ये कहीं भी भेज दो, नर्क स्वर्ग अपवर गया आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख राशि, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपकी अनन्य भक्त हूं। अब सब कुछ छुप सकते हैं, चितवन प्रेमी की बचाई नहीं जा सकती, वो अपनी पहचान बता ही देती है चितवन। जैसे श्री सेवक जी महाराज जब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए आए तो बंचन महाप्रभु ने पहले आदेश कर दिया था, जिस दिन सेवक जी वृंदावन में आएंगे सब भंडारा लुटा देंगे राधा वल्लभ लाल का, ऐसे महाप्रेमी के आगमन पर। सेवक जी को लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, श्री जी की सेवा की सौंद नहीं लुटानी चाहिए, तो छुप करके ऐसे वेश ढक करके आए, और जब नेत्र मिलाए तो राधा वल्लभ लाल जी के नेत्र चंचल हो गए। महाप्रभु गोस्वामी श्री बनचंद जी सेवा में थे, उन्होंने कहा श्री जी के नेत्र चंचल हो गए, कोई ऐसा प्रेमी आ गया। तो नीचे जब देखा तुम ऐसे वस्त्रों से ढके हुए, बोले सेवक जी ही होंगे। जब निज जनों को भेजा कि आप दामोदर दास सेवक जी है, महाप्रभु आनंद, नेत्र से पता चल जाता है कोई है, निज जन है कोई। प्रेम उशासन लेत मिले दो प्रेम शो।

को तुम राधा नाम जपक राधा रूप उपासक ऐसा प्रेम आओ हमारे हृदय से लोगो लाडली जी ने अपने हृदय से लगा। अब हृदय से लगने पर थोड़ी छुपाया जा सकता है क्योंकि हृदय की गति प्रेमियों की अलग होती है। ये धड़कन तो बेकार धड़क रही है, जैसे हृदय मशलता रहता है प्रतिपल, कोई मशले ऐसे प्रेम की पीड़ा उत्पन्न होती रहती प्रेमियों, और जब उनके हृदय मिलते हैं तो वही हृदय जानता, दूसरा नहीं जानता। लालजू का हृदय से लगाना और नेत्र में नेत्र मिलना, सखियों से श्री जी ने कहा और कोई नहीं, ये तो प्रीतम है, ये प्रीतम ही हम समझ गई, इतना तो अनन्य धर्म का पालन प्रीतम ही कर सकते।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे। दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी के विचार।
1: आप में से कितने हैं जो अभी किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सब लोग आप किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इनका ये कहना है कि मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फिर आप एक इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्यों एंटर कर रहे हो, जहां पर कि पहले तो एंट्रेंस को क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में अच्छी जगह पर जॉब मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में उस जॉब को रिटेन करना भी आने वाले टाइम में और मुश्किल होने वाला है। व्हाई आर यू डूइंग दैट? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। कोई है आप में से जो बोलना चाहेगा, जवाब देना चाहेगा?
2: रिस्क नहीं होता बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। तो रिस्क जहां पे आ जाते हैं ना, तो वो चीज उसमें भी काफी वो हर्ट जाता है। और अगर जिस चीज में रिस्क ना हो उसमें सब सपोर्ट करते हैं, फिर हम सोचते हैं सब सपोर्ट ही कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, यहाँ पे जा रहे हैं तो हम।
1: इन्होंने कहा कि हम एंट्रेंस के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर उस पाथ पर कोई रिस्क नहीं होता है। क्या ये सच है झूठ है? कितने एग्री करते हैं इनकी बात से? तो जब रिस्क है और बहुत रिस्क है, क्योंकि लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें से कुछ का होता है, ये बात हमको पता है, तो फिर क्यों इस पाथ को आप चुनते हो जब यहाँ पे रिस्क भी है और कोई श्योरिटी भी नहीं है? तो क्यों इस पाथ को चुनते हो, क्यों कुछ और एक्सप्लोर नहीं करते हो?
3: सर पैसे की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, तो जितना बिजनेस नॉर्मली स्टार्ट किया था उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई में लग जाता है।
1: कितना लग जाता होगा, आप में से कोई बताएगा जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है?
4: कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है सर।
1: कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है?
4: जी सर, फिट जी में सर 6-7 ले लेते।
1: नहीं नहीं, 6-7 लाख थोड़ी होती है।
4: यस सर,
1: मुझे आइडिया नहीं है, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मतलब एवरेज फीस क्या होती है कोचिंग की एक साल की?
4: 2-3 लाख सर।
1: 2-3 लाख रुपए साल की, तो मतलब 2 साल की हो गई 5-6 लाख रुपए। तो 6 लाख लगाने के बाद में होने की क्या पॉसिबिलिटी है और नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी है?
4: 99% है कि तो नहीं होगा सर।
1: 99% है कि नहीं होगा?
4: यस सर।
1: तो रिस्क तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर बॉस, ये तो बहुत ज्यादा है। सब एग्री कर रहे हैं इनसे कि 99% है? या अगर ऑप्टिमिस्टिकली भी देखा जाए तो 90% है कि नहीं होगा, 10% है कि हो जाएगा, अगर हम सिर्फ उन्हीं की बात करें जो बच्चे सीरियस हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा जो कोचिंग ले रहा है वो सीरियस भी हो पढ़ाई को लेकर के। तो मैं कह रहा हूं वो बच्चे जो ब्रिलियंट हैं, एफर्ट भी पूरा कर रहे हैं और डिजर्व भी करते हैं, तब भी जो पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन होने की अच्छी जगह पर, वो 10% है। 90% है कि नहीं होगा? और जब नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाट इज योर बैकअप प्लान?
4: प्राइवेट कॉलेज सर।
1: तो वहां भी पैसा लगेगा या वहां पे फ्री में पढ़ाई है?
3: पैसा लगेगा।
1: कितना पैसा लगता है 4 साल का, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है? 20 लाख रुपए। अच्छा, मेडिकल का तो 80-90 लाख है, बट अगर इंजीनियरिंग की भी बात करी जाए तो 20 लाख रुपए तो मान के ही चलो, तो नियर अबाउट आपने 20-25 लाख रुपए तो लगा दिया अपने घर वालों का। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं हो, मेजोरिटी ऑफ यू। आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास से हैं? हाथ ऊपर करिए। मेरा मिडिल क्लास वाला सेशन देखा है आप लोगों ने?
3: यस सर, यस सर, देखा।
1: अगर वो देखा होता तो अभी हाथ ऊपर नहीं करते। मिडिल क्लास मतलब अगर मैं सिंपल वे में पूछूं तो आप में से कितने हैं जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो साल की 12 लाख से ज्यादा है? अब हाथ ऊपर करो। इसको मैं दूसरी तरीके से पूछता हूं, आप में से कितने हैं जिनके घर वालों के पास में 20-30 लाख रुपए स्पेयर है, मतलब अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? हाथ ऊपर करो। इसका मतलब आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर आपके घर वालों को लोन लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पे ये निकल करके आया है कि 50-60% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं, दे आर अनएम्प्लॉयबल, मतलब उनकी इतनी स्किल ही नहीं होती कि उनको एम्प्लॉय किया जा सके, यानी कि उनको वो काम मिल ही नहीं सकता जिस फील्ड से उन्होंने पढ़ाई करी है। या तो उनको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या अपने आप को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो 25 लाख की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे?
3: 9-10 ईयर्स।
1: 25 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 25 लाख रुपए जोड़ना पड़ेगा।
3: yes.
1: और जोड़ करके विद इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ेगा।
3: इंटरेस्ट भी देना है क्या?
1: इंटरेस्ट भी देना। नियर अबाउट हम मान करके चलते हैं, इन द बेस्ट केस सिनेरियो आपको 20 साल लगेंगे 25 लाख रुपए का जो लोन है उसको चुकाने के लिए या अपने घर वालों को वापस करने के लिए।

0: मतलब 40 की एज तक जा करके तो आप वो पैसा वापस करोगे, तो रिस्क मेरे हिसाब से कम तो नहीं है। और ये सिनेरियो है कि अगर आपकी जॉब लग गई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम नहीं है हमारी कंट्री में, ये भी हो सकता है कि जॉब ना लगे तो क्या करोगे, सिंपल जेन्युइन क्वेश्चन।
1: 25-30 लाख देने के लिए भी पेरेंट्स ही मोटिवेट करता है, उनकी ही जिद होती है कि हमें ये करना चाहिए। वही कहते हैं यूपीएससी निकालो, वही कहते हैं नीट निकालो, वही आईआईटी जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, उनकी ही जिद होती है और सोसाइटी की और रिलेटिव्स की जिद होती है कि हम जाएंगे तो वो हम ही है करोड़ों में से एक। तो इट्स लाइक हमारी विश तब भी नहीं होती है,
0: ये और ज्यादा गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार को ये होता कि आपके अंदर से होता कि मुझे ये क्रैक करना है, फिर आप किसी एंट्रेंस के लिए जाते तैयारी करने के लिए, तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपके पेरेंट्स ने फोर्स करके या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपको भेज दिया है, अब पॉसिबिलिटी क्या है आपके क्रैक करने की? अब तो आपका मन ही नहीं है वो काम करने का, करना पड़ रहा है। एक है कि आप खुद अपने अंदर से मोटिवेटेड हो, बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, तब फिर भी होने की पॉसिबिलिटी है, बशर्ते कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी हो उसको क्रैक करने की। लेकिन अगर आपका खुद का ही मन नहीं है लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, उसकी वजह से आप जा रहे हो, तो वहां जाकर के क्या करोगे? बहाने ढूंढोगे क्लास बंक करने के, टाइम पास करने के तरीके ढूंढोगे, रात को बैठ करके वीडियो गेम्स खेलोगे या क्या करोगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में, आपकी हंसी से पता लग रहा है। घर वालों को तो ये लगता है कि मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या कर जाएगा, अगला सुंदर पिचाई यही है, हमारे घर में ही पैदा हुआ है। लेकिन आपको तो पता है ना अंदर से आप क्या हो, तो इसका मतलब क्या है, वो पैसा पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। बड़ा नुकसान किसका है, आपके पेरेंट्स का या आपका? क्यों, आपका क्यों है, जवाब दो।
2: सर हमारे लिए टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है पैसों से भी, क्योंकि अगर हमारा पैसे हम पेरेंट्स ने लगा दिए और हमने टाइम भी वेस्ट कर दिया, बट हमारा जो टाइम चला गया वो टाइम अब नहीं आने वाला।
0: तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, दैट इज वन। टू, फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब जा करके आपको कोई भी जॉब होगी, कैसी भी जॉब होगी,
2: लेनी पड़ जाएगी,
0: करनी पड़ेगी, इतना प्रेशर आ जाएगा पीछे से। तो नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ पूरी लाइफ के लिए?
2: हमारे ही हुआ।
0: आपके पेरेंट्स का तो पैसों का नुकसान हुआ, आपकी तो लाइफ ही खराब हो गई।
2: Yes.
0: तो अब बताओ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, लगाओ दिमाग। और अभी तो मैंने AI के बारे में तो बात ही नहीं करी है कि AI का एजुकेशन के ऊपर क्या असर आने वाला है और जॉब मार्केट पे क्या असर आने वाला है, उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी।
3: सर इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, मुझे जो लगता है हर जगह आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं खुद बताऊं तो मैं 10 ईयर्स जब था 10 साल का, तब मैं YouTube ट्राई किया, फिर मैं गेमिंग में एंटर किया, फिर मैंने e-sports भी खेला, फिर मैं एक सर प्रोफेशनल लेवल अंडर 16 क्रिकेट करियर भी चूज किया था मैंने, वहां पर सर ड्यू टू फिजिकल इश्यूज वहां पर मैं नहीं कर पाया। बाकी सर अब मैं आया हूँ इस डिजिटल मार्केटिंग के एरा में, यहाँ पर सर 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी मैंने बिल्ड कर लिया, जिससे कि मेनली मेरा 50-1 लाख रुपीज महीने का जनरेट होता है।
0: अभी आपकी एज कितनी है?
3: 15.5 ऑलमोस्ट लाइक 16 राउंड फिगर।
0: 16 साल?
3: यस सर।
0: तो आपके घर वाले खुश है?
3: बिल्कुल खुश होंगे सर, 16 साल का लड़का घर में सर 1 लाख रुपए अगर महीने का दे रहा है तो खुश तो होंगे।
0: लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है, प्लीज डोंट माइंड इट, कि अभी ये जो क्विक आपको सक्सेस मिली है ना, इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये मत समझने लग जाना कि मैं 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। आज आप कमा रहे हो, कल कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ऑलवेज कीप योर फीट ऑन ग्राउंड एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर All kinds of situations. जो आप कर रहे हो वो सही है।
3: सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मैंने टारगेट लिया कि मुझे मंथली का 1 लाख करना है, तो वो मैंने एक बार दो बार टारगेट को अचीव कर लिया, बट सर जब मैं नेक्स्ट अब टारगेट को अपना बड़ा करता हूँ, जब उसको इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा, तो सर वो कम्फर्ट जोन वाली फीलिंग आने लगती है, मन में ये होता है कि अरे पहले भी तो किया है, अब भी कर लेंगे, तो उस चीज को मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ सर?
0: आप कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहाँ पे बाकी लोग उल्टी कर देंगे, उनके मुंह से झाग निकलने लग जाएगा, क्या बोल रहे हो आप? ये बेचारे अभी अपना पता नहीं कितने साल कितनी तैयारी करने वाले हैं, उसके बाद जाकर के कोई पैकेज लगने वाला है, और आप कह रहे हो कि सर 1 लाख रुपए में मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। सर सर कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं ना 2 लाख रुपए अचीव कर जाऊं। बस भाई बस, इतना लालच नहीं करते, बहुत है अभी इस एज के हिसाब से, आगे जैसे से एज बढ़ेगी अपने आप ही रास्ते खुलेंगे, प्लीज हैव अ सीट। बट ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ये जो टेम्पररी सक्सेस है इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, गड़बड़ हो जाएगी। तो एक सोल्यूशन हमको दिखा यहाँ पर, अब ये सोल्यूशन कितना जेन्युइन है कितना नहीं है आई कांट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे, बट मैं ये कह सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस एंड विद माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड कि ये पॉसिबल तो है। इनके साथ ये हो रहा है नहीं हो रहा है आई एम नॉट श्योर, बट ये पॉसिबल तो है।
2: मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क के बारे में जो भी बताया, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम भी ट्राई करना चाहते हैं कि चलो हम भी चलते, इतना अच्छा पैसा है, जाते हैं, वो कुछ पैसे लेते हैं हमसे, वही 1-2 हज़ार कि हाँ हम आपको सिखाएंगे, ये करेंगे, वो फिर हमें वो 3-4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, और उसमें ना कई लोगों को नहीं पता चलता, बट वो ना पूरे माइंड को हमारे इधर से उधर कर देते हैं, हमें बहुत सारा पैसा दिखाते हैं कि इतना पैसा है, क्या करोगे बताओ, बंगला खरीदोगे, क्या खरीदोगे, जबकि खुद उनके पास कुछ नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा एक मोटरसाइकिल होती है बस, उसमें
0: वो भी आप ही के पैसों से खरीदी होती है।
2: हाँ, और कहते हैं कि देखो मैंने ये टारगेट बनाया, मैंने ये अचीव करा, आप क्यों नहीं कर सकते हो, बस 1 साल दे के देखो, ये करके देखो, ऐसे करते हैं। और एक बार जब इंसान इस चीज में जाता है तो फिर उसको तो फ्रॉड ही लगता है सब चीज की, हाँ फ्रॉड है।
0: आपने कभी ऐसा ट्राई किया?
2: हाँ मैंने किया है।
0: आपने कितने पैसे दिए थे?
2: मैंने दिए थे 500 रुपए, उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग होगी सब वापस हो जाएगा अगर ये सब हुआ तो, मैंने कहा चलो सही है, कौन सा ज्यादा ही लग रहे हैं। फिर उन्होंने फोर्थ डे बताया कि आपको 50,000 की शॉपिंग करनी है, फिर आप एक लेवल पे आओगे, उसके बाद आपको लोगों को पकड़ने, अब लोग कहाँ से पकड़े वो भी सिखा रहे हैं कि अपने दोस्तों को कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करो। मैंने कहा लोगों को तो मैसेज करेंगे, अब कौन कैसा हमें क्या पता। फिर कहेंगे आप ऑटो से जाते हो, वहाँ पे हाय हेलो करो, उनसे रिलेशन बनाओ और उनको उसमें घुसाओ।
0: ये जो इस तरह के कोर्सेज कराते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, उसमें से 100 में से 99 फ्रॉड है, इस बात को लिख करके रख लो। तो चैलेंज ये नहीं है कि पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता है, चैलेंज ये है कि जेन्युइन कौन है और फ्रॉड कौन है। पहले तो एक बात को मेरी अच्छे से समझ लो कि जो आने वाले 10 साल हैं उसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ है, और जहां तक आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं या आप खुद हो, जहां तक नहीं देख पा रहे हो, एआई की दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। डेली कुछ नया हो रहा है और इतनी तेजी से हो रहा है, इतनी तेजी से हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब्स जो आज की डेट में है वो फ्यूचर में नहीं रहेगी, इस बात को समझ लो अगर समझ सकते हो तो। अब मैं बताता हूं मैं फ्यूचर को किस तरीके से देख रहा हूं, या फिर अगर मैं आप लोगों की जगह हूं तो मैं क्या करूंगा। नंबर वन, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना आप लोगों का, ये सबसे प्रेशियस है पूरी लाइफ में। अभी आपका दिमाग खुला हुआ है, आप कुछ भी नया बड़ी जल्दी सीख सकते हो। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके लिए कुछ भी नया सीखना, यह नया सीखना तो बहुत दूर की बात है, नए आइडियाज को एंटरटेन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो जाकर के अपने पेरेंट्स को देख लो, उनसे जाकर के किसी भी नई चीज के बारे में बात करो, वो एकदम से घबरा जाएंगे इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, और वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब बेकार होता है, बिना समझे। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, कितने मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, डोंट वेस्ट इट। अगर आप ये सोच रहे हो कि पास में जैसा होता आया है कि मैं ये डिग्री लूंगा

डिग्री ले ली है, अब जॉब लग गई है, अब वो कहते हैं लाइफ सेट है। ये जिनकी लाइफ सेट है ना, उनकी लाइफ ऐसी हिलने वाली है कि उन्हें खुद भी नहीं समझ आएगा कि हुआ क्या है। कितने मेरी इस बात को मानते हैं कि अगर आप अपने काम के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए, चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, अगर उन टूल्स को आप यूज करते हैं तो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। तो जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो 10 गुना से, तो 10 लोगों का काम एक इंसान कर सकता है। तो अगर मेरी एक आईटी कंपनी है और वहां पर 100,000 लोग काम करते हैं और वो काम 10,000 लोग कर सकते हैं, तो मैं बाकी 90,000 का क्या करूंगा? निकाल दूंगा। तो 90,000 लोगों का क्या होगा? या तो अपनी स्किल्स को उनको अपग्रेड करना पड़ेगा या अपनी लाइन को चेंज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, देखो मेरी इस बात को ना गांठ बांध लो, आने वाले टाइम में मीडियोक्रिटी नहीं चलने वाली है। मशीन्स का जमाना आने वाला है और जिसको मशीन्स को यूज करना आता होगा उसका जो आउटपुट है वो और लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा और वो इंसान कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो, अगर बिजनेस करते हैं तब भी अगर आपको मशीन्स को यूज करना आता है तो आपके पास में एक एज होगा इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इससे भाग नहीं सकते, ये तो सीखना ही पड़ेगा। तो अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो मैं क्या करूंगा? अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, अपने टाइम को कहां यूटिलाइज करूंगा? जो भी कुछ नया हो रहा है एआई की दुनिया में, वो सब कुछ सीखने के लिए वहां पर अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रखूंगा। डेली कुछ नया आ रहा है, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं एग्जिस्टिंग जो एआई एप्लीकेशंस हैं उनमें, और डेली नई नई ऐप्स आ रही हैं। तो यू नीड टू बी अपडेटेड। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ भी नया डिसरप्शन आ रहा है मार्केट के अंदर, आप फटाफट से उसको सीख जाओ और फटाफट से अपने आप को अडैप्ट कर लो उसके अकॉर्डिंग। जरूरत पड़े तो जब इंडस्ट्री पूरी की पूरी चेंज होगी तो आप अपने आप को बदल दो। अगर ये कर सकते हो, यानी कि अगर आप इन टूल्स को यूज करना जानते हो तो आप सर्वाइव करोगे फ्यूचर में, अगर नहीं जानते हो तो दिक्कत आने वाली है। तो अपनी जो स्पीड है सीखने की कि इस दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सीखो। टाइम वेस्ट मत करो फालतू का कंटेंट देखने में, इधर उधर टाइम पास करने में। आप में से कोई ऐसा है जो ये बता सके टॉप 10 एआई टूल्स के नाम? कोई है जो बता सकता है? यू हैव नो आइडिया, नो क्लू। तो ये आइदर और के चक्कर से बाहर निकल आओ कि सर हम पढ़ाई करें या बिजनेस करें, दोनों करना पड़ेगा। पढ़ाई इसलिए करनी पड़ेगी ताकि एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो तो आपके पास में एज आ जाएगा। कल को जॉब मार्केट में जाओगे तो एटलीस्ट कुछ तो हो दिखाने के लिए, अगर आपको जॉब ही करनी है तो। लेकिन साथ साथ में बिजनेस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है? कुछ क्रिएट करना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, यानी पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको बोल दिया जाए सर्वाइव करो, क्या कर सकते हो सर्वाइव? अगर कर सकते हो तो कह सकते हैं कि हाँ, अब आप अंदर से एक एंटरप्रेन्योर हो, अब चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप एक क्रिएटर हो। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब क्रिएटर्स, आई एम सेइंग समवन हु कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक लाइव्स बेटर ऑफ अदर पीपल इन सम वे, जिसके लिए वो लोग पैसा देने को तैयार हो जाए, उसको एक क्रिएटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपकी एज में हूं, यानी मेरी एज है मान लो 18 साल, अब मेरे आगे एक चैलेंज है, मैं क्या करूं? जॉब की भी तैयारी करनी है तो क्या उसको छोड़ दूं? अब वो मेरी अपनी कॉल है कि मैं छोड़ूंगा या करूंगा, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा छोड़ने के लिए, नंबर वन। बट एक बात पक्की है कि मैं साथ साथ में कुछ ना कुछ तो और करूंगा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गया। जो एजुकेशन की पूरी जो डेफिनेशन है वो चेंज होने वाली आने वाले टाइम में। एजुकेशन मतलब क्या? कि कुछ आपने सीख लिया है, अपने माइंड के अंदर भर दिया है और कुछ कर रहे हो, आने वाले टाइम में वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कौन वो लोग होंगे जो बचेंगे आने वाले टाइम में और कौन वो लोग हैं जो नहीं बचेंगे। इफ यू कैन कनेक्ट दी डॉट्स, यानी अलग अलग चीजों को देख करके आप किसी तरीके से कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जहां से आप पैसा कमा सकते हो और सर्वाइव कर सकते हो फाइनेंशियली, इंडिपेंडेंटली, अपने बेस पर, तो फ्यूचर आपके लिए है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं तो सिर्फ इस डिग्री के बेस पर सर्वाइव कर सकता हूं, तो आने वाले टाइम में उस डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। इस स्किल की वैल्यू होगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि कुछ अलग अलग हो, उसको जोड़ दिया जाए और कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि जहां से पैसा कमाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आज हर दूसरा इंसान यूट्यूबर बनने के बारे में सोच रहा है। तो यूट्यूब में जो सबसे हाई पेइंग जो सेक्टर है वो है BFSI सेक्टर, यानी बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस।

तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे टूल्स ढूंढूंगा जहां पर मैं ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर कुछ वीडियोस बना सकूं। और पहले मैं यूट्यूब पे जाकर के देखूंगा कि कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जिसके ऊपर बहुत व्यूज आ रहे हैं या जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है गूगल पे और यूट्यूब पे, क्योंकि अगर गूगल पे ज्यादा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूट्यूब पे भी ज्यादा होगी। अब मेरी इस थॉट प्रोसेस को समझना, आइडिया को मत पकड़ना, गड़बड़ हो जाएगी। आइडिया को पकड़ोगे फिर वही बंद दिमाग की तरह कॉपी करने लग जाओगे, लेकिन अगर थॉट प्रोसेस को समझोगे तो कुछ भी कर जाओगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, एक वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ pictory.ai जहां पे आप टेक्स्ट इनपुट करोगे और वो उसको वीडियोस में कन्वर्ट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर। ये काम करने में यूजुअली 2 से 4 दिन लगते हैं। तो क्या यहां से आपके दिमाग में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कह सकते हैं कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप एक क्रिएटर हो, आप क्रिएटिव हो। तो एक दिन में कितनी वीडियोस बन सकती हैं? बहुत सारी। लेकिन वीडियोस बनाने से पहले मुझे यह समझना होगा कौन सी वीडियोस ऐसी हैं जिसके वायरल होने के चांसेस हैं। तो पहले मैं ये स्टडी करूंगा लोग सर्च क्या कर रहे हैं गूगल पे और यूट्यूब पे। फिर वो स्टडी करके, फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर सर्चिंग फॉर व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, तो क्या हो अगर इस तरह की मैं वीडियोस जनरेट करूं थ्रू AI। अब मुझे उसके लिए कॉन्टेंट चाहिएगा। कॉन्टेंट राइटिंग स्किल्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मान लो मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, मैं क्या करूंगा, ChatGPT पे जा करके लिख दूंगा व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। तो ChatGPT पूरा का पूरा मेरे को टेक्स्ट दे देगा। उस टेक्स्ट को मैं रन करूंगा पायरेसी के लिए कि कहीं किसी तरीके से किसी के राइट्स वॉयलेट तो नहीं हो रहे, ऐसी भी कुछ वेबसाइट्स हैं। तो जब मैंने चेक कर लिया और मुझे ये श्योरिटी आ गई कि किसी के राइट्स वॉयलेट नहीं हो रहे हैं, उस टेक्स्ट को ले जा करके मैं एंटर करूंगा पिक्टोरी में। वो एक पूरी की पूरी वीडियो जनरेट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर, जिसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूं। लेकिन यूट्यूब अब क्या कर रहा है वो भी मैंने पढ़ा कि वो जो AI वॉइसेस हैं, जैसे ही यूट्यूब पकड़ लेता है कि इसमें AI की वॉइस है, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको या तो ब्लॉक कर देता है या इतना तेजी से प्रमोट नहीं करता है। तो मुझे इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी में जा करके जो यूट्यूब का कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है वो निकाल करके उसके बैकग्राउंड में उसको लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, अलग अलग जगह से अलग अलग टूल्स को यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो बहुत ही कमाल का है और जिसकी मार्केट में नीड है। अब अगर मैं खुद बैठ करके वीडियोस बनाऊं तो पहले तो मुझे वो स्किल्स एक्वायर करने में कई महीने लगेंगे, कई साल लगेंगे। उसके बाद एक एक वीडियो को बना के डालने में 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन लग जाएंगे। अब यहां पर एक दिन में मैं 10 वीडियोस जनरेट कर सकता हूं, यानी यूट्यूब पर मैं 10 अलग अलग चैनल्स ओपन कर सकता हूं। और अगर मैं कंसिस्टेंटली इस काम को पार्ट टाइम बेसिस पे करता हूं अगले 1 साल तक, ये नहीं कि 2-4-5 दिन किया, 10 दिन किया, रिजल्ट नहीं आया तो उसको छोड़ दिया। पढ़ाई लिखाई में ऐसे करते हो क्या कि कहीं गए किसी कॉलेज में 2-4 दिन को समझ नहीं आया, बेकार है, छोड़ दो? ऐसे नहीं करते ना, 4 साल पता है ना कि वहां पे लगाना है, तो इस काम में भी टाइम लगाना पड़ेगा। तो 1 साल तक अगर मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने 10 चैनल्स पे, तो 1 साल में मैंने कितनी वीडियो अपलोड कर दी, 365 × 10 यानी कि 3650 वीडियोस। उसको करने में टाइम कितना लगा, मैक्सिमम 1 से 2 घंटा डेली। इतना तो आप टाइम कहां खराब कर देते हो, आपको खुद भी पता नहीं होगा। बट इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, या तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिल गई तो बहुत बढ़िया है, तो ज्यादा खुश नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है कि अब मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं, 1,00,000 रुपए कमा रहा हूं। क्योंकि ये भी हो सकता है कल को यूट्यूब एक नई पॉलिसी ले आए और कहे कि ये जो AI जनरेटेड वीडियोस हैं इसको हम डीमोनेटाइज कर देंगे, तो कहां गया आपका वो 1,00,000 रुपए महीना, गायब हो गया ना। तो एक्साइटेड नहीं होना, उस पैसे को जोड़ना है और उसको यूज करना है और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने के लिए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि यहां से पैसा आएगा, तो उस पैसे को उड़ाना नहीं है, एक्साइटेड नहीं होना है, घर वालों को ये नहीं बोलना है कि अब मैं 1,00,000 रुपए महीने का कमा रहा हूं, मेरे को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पैर जमीन पर रखने हैं, उस पैसे को जोड़ना है और दिमाग लगाना है कि उसमें रिस्क क्या है, कल को अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे, वैसा होता है तो क्या करोगे, वो होता है तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूट्यूब का एल्गोरिथम पकड़ लेता है AI जनरेटेड साउंड्स को, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीडियो वहां से बना ली, कॉन्टेंट ChatGPT से मिल गया, पायरेसी चेक कहीं और से हो गया, कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए कैसी नहीं वो आपने और जो सॉफ्टवेयर है वहां से पता कर लिया, सर्च वॉल्यूम किसका है किसका नहीं है, प्लस साउंड के लिए आपने क्या किया, 10 मिनट का एक ऑडियो सैंपल अपलोड करना होगा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, वो सीख जाएगा कि आपकी साउंड क्या है। तो अगर आपने ये कर लिया तो अब वो आपकी साउंड है, म्यूजिक यूट्यूब का है, कॉन्टेंट रॉयल्टी फ्री है, अब इन वीडियोस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर इस तरह से सोच पा रहे हो तो फ्यूचर में आपके लिए जगह है। इसको एक्चुअल में स्किल्स बोलते हैं कि आपने कुछ ऐसी स्किल्स एक्वायर कर ली जो वैल्यूएबल है, हो सकता है आज इमीडिएटली नहीं है लेकिन फ्यूचर में
आप कहीं जाओ और वो आपसे पूछे कि अच्छा आप में से कौन है जिसको ये काम आता है, आप कहोगे मुझे आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। मतलब आने वाले टाइम में वो लोग सरवाइव करेंगे दुनिया में जो कुछ भी कर सकते हैं, जो सिर्फ एक काम कर सकता है। वो पास्ट में रेलेवेंट थे, फ्यूचर में नहीं होंगे, क्योंकि वो एक काम आज नहीं तो कल मशीन कर लेगी, फिर आप क्या करोगे। लेकिन वो इंसान जो कुछ भी कर सकता है उसकी वैल्यू क्या होगी। आई होप आज के सेशन से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, कुछ नया समझ में आया है, कुछ नया सीखा है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव सोचो, इतना क्यों सोच रहे हो। कभी कभी ये लाइंस मोटिवेशन नहीं प्रेशर बन जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आज पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं जस्ट टॉक अबाउट इट सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और आज हम बात करेंगे टॉक्सिक पॉजिटिविटी पर। क्या हर वक्त पॉजिटिव रहना जरूरी है या कभी कभी अपनी फीलिंग्स को फील करना भी हेल्दी होता है। मेरे साथ हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। वेलकम मैम।
1: शांति, थैंक यू।
2: ओके ज्योति जी, टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है?
1: बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन दिया है। टॉक्सिक भी है और पॉजिटिविटी भी है, तो जरूरी बात है जब पहला शब्द ही टॉक्सिक आ रहा है तो पॉजिटिविटी में कुछ ना कुछ तो मिक्सचरिटी होगी। टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब ही होता है कि जब किसी को पॉजिटिव करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, उनको बार बार, वो चाहते कुछ और हैं लेकिन उनको कहा जा रहा है आप पॉजिटिव रहिए, आप पॉजिटिव सोचिए, आप पॉजिटिव ही आपको सोचना है करना है, और उस व्यक्ति की अपनी मेंटल स्टेट नहीं है उस चीज़ को सोचने की। हमारे थॉट भी इस तरीके से होते हैं, एक होते हैं राइट थॉट और एक होते हैं पॉजिटिव थॉट। राइट थॉट वो है कि आप जो चीज़ जैसी है वैसे ही आपने बताया, उसको कहा जाता है राइट थॉट्स। लेकिन जो पॉजिटिव थॉट्स की अगर बात की जाए तो पॉजिटिव थॉट्स उसको कहा जाता है कि गलत सिचुएशन में भी आप उसको अच्छा कैसे देख सकते हैं। जो यहाँ टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात कही गई, ये एक्चुअल में राइट और रॉन्ग थॉट की बात है। जो राइट थॉट है माने जो व्यक्ति गलत है उसको हम गलत ही कह रहे हैं, जो राइट है उसको हम राइट ही कह रहे हैं। तो इसको राइट थॉट्स कहे जाते हैं कि आप गलत नहीं है कि वो व्यक्ति वैसा है, लेकिन अब हमें अगर पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव थॉट्स का मतलब होता है कि पॉजिटिव में नेगेटिव है हमें ये पता है, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए पॉजिटिव कुछ अफर्मेशन या कुछ ना कुछ सोचना है, उसको पॉजिटिव थॉट्स कहा जाता है।

0: ही इसको ले तो ज्यादा बेटर है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी ना कह करके टॉक्सिक थॉट कहना ही इसको राइट वे में बात होगी, क्योंकि पॉजिटिविटी में कहीं भी टॉक्सिक चीज आ ही नहीं सकती है। पॉजिटिविटी का मतलब ही सिर्फ पॉजिटिव है। अगर दूसरा हमें एक सजेशन दे रहा है कि आप सोचे, ये उसकी ओपिनियन है, चूज आपको करना है कि आप उसको किस वे में लेना है। अगर आपको लगता है कि आप उस चीज को कर सकते हैं तो आपके लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप जबरदस्ती उसे कर रहे हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव थॉट्स बन जाएंगे और वही फिर टॉक्सिक बन जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर हम देखें, जैसे अभी ही 3 लड़कियों ने जो सुसाइड किया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हम जो आ रही है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमने सुनी है बातें कि उनके फादर ने सिर्फ उनको मना किया कि आप मोबाइल में कोरियन चीज़ें या उसी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना लें, सिर्फ उसको मना करने के पीछे। अब वो राइट ही था,
1: बिल्कुल
0: रॉन्ग तो नहीं था, अगर हम सब देखें तो वो रॉन्ग नहीं है कि उनको मना किया जा रहा है ज़्यादा टाइम मोबाइल्स में नहीं आप रहो, लेकिन उनके अंदर वो इस कदर रच बस गई हैं कि उनको अपनी मौत ज्यादा इजी लगी, बशर्ते उन चीजों को छोड़ने। तो पॉजिटिव थॉट उनके लिए टॉक्सिक हो गया है। तो था उनके फादर का पॉजिटिव, लेकिन उन्होंने उसको टॉक्सिक के रूप में लिया और अपने ही जीवन की जो कहे कि एक कहानी थी, एक सुंदर जीवन बनता, तो उसको उन्होंने खत्म कर लिया। इसी को कहा गया है कहीं ना कहीं टॉक्सिक और पॉजिटिविटी। मैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं कहूंगी, क्योंकि पॉजिटिविटी में कभी टॉक्सिक नहीं होता है।
1: जी बिल्कुल सही।
2: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी।
1: प्रिया जी, क्या हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना जरूरी होता है?
2: मैं फिर से इसमें आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ में

0: चीजों को, अच्छी चीजें जो भी हैं, बढ़ाना चाहेंगी या घटाना चाहेंगी?
1: बढ़ाना चाहेंगी।
0: तो बस फिर पॉजिटिव रहना जरूरी होता है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब ही है अच्छा, यानी बढ़िया साइड। और बढ़िया साइड को हर कोई बढ़ाना ही चाहेगा, और इसका अगर हम स्टार्टिंग बहुत छोटे टाइम से कर दें, आज से कर दें, चलो आज मैं 50 साल की हूँ लेकिन मेरा जीवन हमेशा उतराव चढ़ाव में रहा है और मैं हमेशा नेगेटिव ज़्यादा सोचती हूँ, पॉजिटिव कम, लेकिन अब मैं अगर बदलना चाहती हूँ तो आज और अभी मुझे अपने आप को पॉजिटिव दिशा में ज़्यादा ले जाना चाहिए। जितना मैं पॉजिटिव रहूँगी, और जो मैं कहती हूँ कि जैसे नेगेटिविटी आज हम चारों तरफ देखते हैं, ये बढ़ रही है, ऑफ कोर्स बढ़ ही रही है, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल।
0: तो ये नेगेटिविटी जो बढ़ रही है, तो इसको काटने की जो दूसरी चीज है, जो वायरस आता है तो एंटीवायरस उसको देते हैं, तो जितना वायरस है उस लेवल का एंटीवायरस दिया जाता है। तो आज नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है हमारे चारों तरफ, तो उसको काटने के लिए हमारे को फिर पॉजिटिविटी, ऑफकोर्स पॉजिटिविटी ही लेना पड़ेगा। तो उसी लेवल का, उसी क्षमता का उतना ही जो कहें अमाउंट, हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन के हर उस नेगेटिव को काट सकें जो हमारे अंदर अब आ चुका है, हमारे वर्ड्स में, हमारे थॉट्स में, हमारे एक्शंस में, हमारे हर चीज के बिहेवियर में। इनफैक्ट डेस्टिनी में भी हम अब देख रहे हैं कि लोगों को नेगेटिव जो है वो अचीव हो रहा है, और ये ऑल बिकॉज ऑफ मी है, ये दूसरों के कारण नहीं है। जो हम अगर अच्छे से गांठ बांध लें कि मैं आज अगर दुखी हूं तो वो मेरी वजह से हूं, मेरे साथ कुछ भी अगर हो रहा है उसका मूल कारण मैं ही हूं। बीच में कई पहलू, कई चित्र हम देखते हैं, लोगों को हम नाम दे देते हैं, उसका डेबिट हम दे देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी मेरे आसपास हो रहा है, उसका मूल कारण, जो मेन जो रीज़न है, वो मैं ही हूँ। तो अगर मैं अपनी सोच, मैं अपने बोल, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता हूँ तो वो मेरी डेस्टिनी तक ज़रूर अचीव होता है। लेकिन हाँ, मेरे अंदर क्या उतना पेशेंस है, मैंने कोई चीज़ बिगाड़ी है, आज मैंने कोई चीज़ बिगाड़ दी है, तो एक क्षण में कोई चीज़ जब बिगड़ी नहीं है तो एक क्षण में वो चीज़ बनती भी नहीं है। तो उसको अगर बनाना है, तो अगर मैं और नेगेटिव होता हूँ तो वो बनती नहीं, वो और बिगड़ती है। चाहे वो बात ही है, घर में कोई बात हो गई, मैं नेगेटिव हूँ, चार लोग पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो वो मेरे को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी दे रहे हैं, बातें भी दे रहे हैं, लेकिन मैं नेगेटिविटी ही बढ़ा रही हूँ। मैंने अब एक को अपनी और साइड कर लिया, यानी नेगेटिव बना दिया, धीरे धीरे तीसरे को भी नेगेटिव बना दिया, तो बात सुलझेगी या बिगड़ेगी?
1: बिगड़ेगी।
0: तो उसी प्रकार से नेगेटिव को काटने के लिए मुझे पॉजिटिव होना, मुझे अपने आप को चेंज करना, ये बहुत बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: अच्छा, जब हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं और हमें नहीं चाहिए कि कोई बार बार बोले सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी वो सिचुएशन नेगेटिव फेज में चल रही है, तो ये क्या सब ठीक हो जाएगा कहना कब हार्मफुल हो जाता है सामने वाले पर्सन के लिए?
2: जब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले व्यक्ति को, जिसको भी हम बात समझाने जा रहे हैं, उसकी मेंटल स्टेट को देखना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल,
2: इसीलिए कहा भी जाता है कि दवाई नब्ज़ देख के दी जाती है। किसी को नब्ज़ अगर कोई हाई डोज नहीं ले सकता है तो उसको बहुत मीठी गोलियों से दिया जाता है और तब जाके वो उस गोली को लेता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही हार्ड दे देंगे तो व्यक्ति झेल नहीं पाएगा और उसका कुछ गलत इफेक्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव सिचुएशन में चल रहा है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है उसकी मन की बात को, मन की स्थिति को समझने की कि वो एक्चुअल में चाहता क्या है और उसके मन की स्थिति इस समय सिर्फ अपने मन की बात सुनाना चाहती है, उसको नहीं चाहिए कोई सजेशन। एक्चुअल में आज की जो समय चल रहा है वो इसी तरीके का है। आज हर कोई अंदर भरा हुआ है और हर कोई अपने आप को खाली करना चाहता है, लेकिन उसने अपने माइंड को एक चीज़ दे दी है, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और टाइम बहुत सारा है लेकिन उस टाइम को कहीं और लगा रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ टाइम देना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है,

0: घर के अंदर ही है, सब अपने अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं, किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि एक दूसरे का चेहरा भी कभी ढंग से देखा हो। पहले यही होता था कि मोबाइल्स ही होते थे और चेहरों के भाव ही समझ जाते थे। आज न माता पिता न बच्चे किसी के भी भाव समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कोई समझ रहा है तो शायद उनको समझाने का तरीका सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा अगर बच्चा छोटा है तो बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाना पड़ता है, एप्पल दिखाना पड़ता है, तब वो ए शब्द जानता है, ए लिखना जानता है। अगर हम उसको पहले दिन ही एप्पल ना दिखा करके ए लिखना सिखाएं या पूरा एप्पल लिखना सिखाएं तो शायद नहीं कभी सीख पाएगा। तो इसके लिए पहले उसको रटाया जाता है, उसके माइंड में वो चीज़ फीड की जाती है। सेम ऐसे ही किसी भी व्यक्ति अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन में चल रहा है तो सबसे पहले ज़रूरी है उसको ये कहने के लिए कि आपको खुशी किस काम में मिल रही है वो काम आप करें। आपको गेम्स में खुशी मिल रही है, आप गेम करें। आपको म्यूज़िक में खुशी मिल रही है, आप म्यूज़िक सुनें। आपको डांस में खुशी मिल रही है, आपको ड्राइंग में खुशी मिल रही है, जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है उस काम को करें। लेकिन वो खुशी का जो प्रोसेस हम, वो मेरी कोई हॉबी होनी चाहिए। आजकल क्या है कि हमने हॉबी किसको समझ लिया है, मुझे कुछ नहीं करना है उसको हम हॉबी कहते हैं। वो हॉबी नहीं है, उसको बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन उसको कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हम सिचुएशन से भाग रहे हैं, तो कब तक हम भागेंगे? भागने से तो कभी भी समस्याओं का हल नहीं होता है। तो थोड़ा सा अपने मन को जो मुझे हेल्दी कर दे, वो टाइम हमें हेल्दी टाइम अपने आप को देना है, ताकि इंटरनल में स्टेबिलिटी ला सकूं। जब मेरे इंटरनल में वो पीसफुल होगा, वो स्टेबिलिटी होगी, तो हमें किसी की भी बात पॉजिटिव फिर नेगेटिव नहीं लगेगी। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति पहली भरा हुआ है, उसके बाद से दूसरा भी कोई बोल रहा है, तो वो बातें फिर चुभन हो जाती है और वो व्यक्ति इतना इरिटेट हो जाता है कि जो सही लोग हैं उनके पास भी कभी नहीं बैठना चाहता है, वो उनसे दूरी बना लेता है और वो बहुत हार्मफुल है। हम एक गेम कराते हैं, आपने भी शायद देखी हो, कि बैलून को फुलाया जाता है और बैलून को तोड़ने के लिए कहा जाता है। तोड़ने का कहा भी नहीं, लेकिन तोड़ना लोग शुरू कर देते हैं। एक जगह हम यही गेम करा रहे थे, तो एक बच्चे ने अपना बैलून, जब दूसरा उसको फोड़ने आ रहा था, उसने अपना बैलून खुद फोड़ दिया। और ये सिचुएशन बहुत हार्मफुल होती है कि जैसे ही कोई नेगेटिव चीज हम और आती हुई देखते हैं तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, हम अपने लिए ही उसका हम जीवघात कर लेते हैं, हम अपने लिए सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, हम लोगों से रिलेशन ख़त्म कर देते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले जिस भी नेगेटिव व्यक्ति हो रखा है उसके नेगेटिविटी को पॉजिटिव नहीं करके पहले नेगेटिव को कम करने के लिए उसको खुशी कहाँ से मिलती है वो खुशी की बातें बताना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
2: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: प्रिया जी, क्या टॉक्सिक पॉजिटिविटी इमोशंस को सप्रेस करने की आदत बना देती है?
2: जैसे कि ज्योति जी से पहले बात हुई कि या तो हम टॉक्सिक ही बोल लें या तो पॉजिटिविटी बोल लें, लेकिन क्योंकि ये वर्ड आ चुका है और ये वर्ड हमारी आने वाली ये जो जनरेशन है जो चल रही है जनरेशन जी, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस कर रहा है कि क्या ये चीज़ें जो आपने कहा हमारी इमोशंस को सप्रेस करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि इसके साथ टॉक्सिक वर्ड जो लगा है तो जहाँ जहर होगा वहाँ वो जो मरने जैसी फीलिंग है, दबने जैसी फीलिंग वो तो आएगी ही आएगी, ओबियस है। लेकिन यहाँ ये बात है कि पॉजिटिविटी यानी सामने वाला आपको अच्छा अच्छा बोल रहा है, अच्छा समझा रहा है, और कई बार माता पिता जो हमारी लाइफ में होते हैं और वो हमारे को प्रेशराइज कर देते हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी हमें कहता है अरे तू इतना गलत नहीं सोचते, अरे ऐसे नहीं सोचते, ये मत सोचा कर, ये तू गलत सोचता है। तो लेकिन एक मौका जो हमें हर व्यक्ति को देना चाहिए कि क्या सोचते हो उसको क्लियर वो बोल सके, और मैं समझती हूँ उसे मिलता भी होगा। हर एक को अपने भाव व्यक्त करने का मौका यहाँ नहीं तो कहीं मिलता तो जरूर होगा, और अगर कहीं भी वो व्यक्त नहीं कर सकता है तो वो लिख तो सकता ही है। और हम जहाँ की हम स्पिरिचुअल जो मैं मानती हूँ कि अगर लिख भी नहीं सकते हो तो भगवान के आगे बैठकर आप अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो इन सब में असमर्थ है, वो नहीं कर पा रहे हैं और उनकी बात भी कोई नहीं समझ पा रहा है, तो वो अपना ही एक जोन बना लेते हैं जिस जोन से वो बाहर आना नहीं चाहते और किसी को अंदर आने देना भी नहीं चाहते। कोई इतना इजीली सहज उनके कमरे में घुस नहीं पा रहा है, उस जोन में घुस नहीं पा रहा है, क्योंकि वो आने नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से फिर वो टॉक्सिक हो जाते हैं। और क्योंकि सामने वाला जो आ रहा है वो पॉजिटिव है तो इसलिए उन दोनों ने दोनों ही शब्दों को जोड़ दिया, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। मैं टॉक्सिक हूँ, आप पॉजिटिव हो, इसलिए मुझे फोर्स मत करो। लेकिन इस

0: कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसी से भरे हुए, वो इस सीन से बाहर ही नहीं आ रहे। तो व्हाट यू वांट, फर्स्ट आस्क योरसेल्फ कि मैं चाहता क्या हूँ, क्योंकि सुनाने के लिए मैंने कईयों को सुना दिया, लेकिन मैं अभी भी वहीं हूँ। और अगर मैं मूव नहीं कर रहा हूँ तो फिर क्या ही उसका इलाज हो सकता है, क्योंकि करना तो मुझे ही है। मैं जिस कमरे में कैद मैंने अपने आप को किया है, अंदर से कुंडी मारी है, बाहर से कुंडी नहीं है कि कोई भी आके खोल देगा, ये कुंडी मैंने मारी है, अंदर से मारी है, इसलिए मुझे ही उठकर उस कुंडी को खोलना होगा, और कोई इस कुंडी को खोल ही नहीं सकता है। इसलिए इतनी हिम्मत, इतना करेज अपने आप में लाएं और इस कुंडी को खोलें, और खोल करके लोगों को अंदर आने दें या खुद बाहर आ जाएं।
1: बिल्कुल सही बात,
0: क्योंकि उस बंद कमरे में घुटन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट।

0: लास्ट देना बैठी।
1: ब्रेक के बाद वेलकम बैक, शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
2: क्या सैडनेस, एंगर या फ्रस्ट्रेशन को फील करना भी हेल्दी होता है? आप दोनों का इस पे क्या कहना है?
3: आपको क्या लगता है, सैडनेस में मिलते हैं सुकून?
2: नहीं, बट कभी कभी हाँ।
3: एक्चुअल में सैडनेस में कभी सुकून है ही नहीं। वो जैसा कि पहले भी बताया है कि हमने उस चीज को समझ लिया है कि हाँ वो सुकून दे रहा है, लेकिन सुकून नहीं है, क्योंकि हम सदा सैडनेस में नहीं रह सकते, लेकिन सदा खुश
2: बिल्कुल
3: रह सकते हैं।
2: जी।
3: सदा खुश रहने वाला व्यक्ति, इसका मतलब खुशी मेरे लिए परमानेंट है, लेकिन दुख परमानेंट नहीं है, है ना। दुख से कभी भी हमें जो कहे कि एक हेल्दी कहे, वो नहीं हो सकता। जब हेल्दी नहीं रहते तभी दुख आता है, तभी फ्रस्ट्रेशन होती है, तभी सैडनेस होती है। तो हेल्दी तो हम इसको कभी भी किसी भी तरीके से नहीं कह सकते हैं। सिर्फ हमने अपने आप को ये समझा लिया है कि शायद यही जीवन का दस्तूर है और यही जीवन है कि हाँ ये तो बहुत जरूरी है। जैसे कई लोग कहते हैं एंगर बहुत जरूरी है, अगर थोड़ा

0: ऐसा नहीं किया जाए तो काम ही नहीं होता है। एक्चुअल में दोष मैं नहीं कहूँगी आज के बच्चों का है या किसी का है, दोष है हमारी जो चलता आ रहा है। क्योंकि जब हमारी दादी हुआ करती थी तो उस समय पर क्रोध करना माना उनकी सिर्फ आँख ही अगर वो दिखा दे तो उसको ही क्रोध समझ लेते थे, गुस्सा कर रहे हैं। थोड़ा समय बदला तो एक थप्पड़ लगा दिया करते थे, तो पता चला कि बहुत देर तक बात करने के बाद एक थप्पड़ लगने पे काम होता है। तो इतना पेशेंस था उनके पास कि एक थप्पड़ तक वो टिल वेट करते थे, पेशेंस में रहते थे। और समय बीता तो वो चीज़ें बढ़ गई। अब जो जनरेशन है उनको ये लगता है कि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही माइंड में सेट कर रखा है। आप किसी भी व्यक्ति से आज मिलेंगे, अगर आज की जनरेशन से, वो यही कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। और ये कहते कहते कहते उनके पास सच में ही उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अब टाइम नहीं है कि हम पेशेंस रखें, अब टाइम है बस मारो और काम करो, काम करवाओ, क्योंकि वही उनकी नेचर बन रही है। लेकिन वो नेचर क्या उनके लिए खुद से पूछ के देखें, नेचर वो अच्छी होती है जो दूसरों को देना वही अच्छा है जो मुझे खुद के लिए पसंद है। क्या मुझे कोई थप्पड़ मार के काम कराए तो मुझे पसंद होगा, अच्छा लगेगा? क्या मुझे कोई गलत बोल करके काम कराना चाहे तो क्या हम करेंगे? या 24 घंटे हमें गलत ही बोलता रहे तो क्या मेरी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? हमारा मन ही वहाँ से हट जाएगा। तो ऐसे ही सारी दुनिया के अंदर हर व्यक्ति ऐसा ही है, जिसे गुस्सा नहीं चाहिए, जिसे प्यार चाहिए। लेकिन आज प्यार की परिभाषा हमने बहुत खराब कर दी है। प्यार का पता ही नहीं है किसे कहते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। प्यार का मतलब है अगर मैंने आपसे प्यार किया है तो प्यार का मतलब है कि मैं आपके लिए कितना एफर्ट कर सकती हूँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले समझें कि मुझे क्या चाहिए। तो क्या मुझे दुख में खुशी मिलती है, क्या मुझे उदासी में कभी खुशी मिलती है, या मुझे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो क्या मेरी एनर्जी बढ़ती है या हमारी और घट जाती है?
1: बिल्कुल
0: घटती है ना। तो ऐसे ही जो चीज मेरे जीवन में से डे बाय डे घटा रही है चीजों को, तो वो कैसे हम कहेंगे कि हाँ ये हेल्दी है? तो ये हेल्दी नहीं होता है। हेल्दी जो चीज है वो खुशी ही हेल्दी है। इसीलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। कभी ये नहीं कहा गया है रोने जैसी खुराक नहीं या दुख जैसी खुराक नहीं। हमेशा ये कहा जाता है खुशी जैसी खुराक, क्योंकि वही हमें हेल्दी बनाता है, वही हमारी हर सिचुएशन को सॉल्व करता है।
1: बिल्कुल सही बात है। प्रिया जी आपका क्या कहना है इस पे?
2: जी जैसे कि कहा कि नेगेटिव वर्ड्स हैं, और नेगेटिव वर्ड्स के साथ आपने एक एक पॉजिटिविटी जोड़ रखी कि हेल्दी हो सकता है क्या। तो वही बात है कि जैसे मैं ये कहूँ कि हर व्यक्ति की क्षमता के ऊपर डिपेंड है कि कितना भी नेगेटिव होने पर वो पॉजिटिव रह सकता है। ये आपकी अपनी क्षमता है, हर एक के साथ ये लागू नहीं होता। सैडनेस जो कि नॉर्मल नहीं है, एंगर कहें या फिर फ्रस्ट्रेशन कहें, ये सब नॉर्मल इमोशंस नहीं है। इसके लिए हमारे अंदर बहुत एनर्जी चाहिए, इसको व्यक्त करने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए और इसको अंदर रखने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए। तो यानी हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है नेगेटिव को एक्यूमुलेट यानी संभालने के लिए, रखने के लिए। और वहीं पे आपने एक नेक्स्ट जो वर्ड डाला है वो हेल्दी। तो हेल्दी इज हेल्दी, ये तो है ही पॉजिटिव। तो जैसे कहते हैं कि जहर जहर कभी अमृत हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है अगर धीरे धीरे धीरे धीरे एक पर्सन जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था, चाणक्य जी ने दिया था, वही जहर उनको इतना बलशाली बना देता है कि शत्रुओं के आगे उनका जहर काम नहीं करता है ना। शत्रुओं के दिए गए जहर से चंद्रगुप्त मौर्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बात यही है कि आपने किस तरीके से लिया है, कैसे लिया है, उसको किस दिशा में लिया है। मैंने अपने जो क्रोध है उसको अपनी ऊर्जा बना ली है, ठीक है। मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन जो है उसको अपना ईंधन बना लिया है अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो दिस कैन बी हेल्दी। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये चीजें कभी भी हेल्दी नहीं होती, क्योंकि हमारी ये नेगेटिविटी को बढ़ाती है। नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा खपत होने लगती है। यानी अंदर आग लगी है तो अंदर का जो कपूस है, जो पॉजिटिव साइड है, उसको वो जलाई चली जा रही है। अगर अच्छाई जल रही है और उसकी अग्नि बढ़ती चली जा रही है तो आप खुद समझ सकते हैं कि पूरा ही घर एक दिन जल जाने वाला है। तो ये कहां से हेल्दी हो सकता है?
1: सही बात।
3: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: ज्योति जी, सोशल मीडिया ने टॉक्सिक पॉजिटिविटी को कैसे नॉर्मलाइज कर दिया है?
2: इसकी अगर हम बात कहें तो टॉक्सिक शब्द को पहले हम ये चीज समझेंगे कि ये चीजें हम जो लोग देख रहे हैं, टॉक्सिक ही चीजों की तरफ हमारा ध्यान है, फोकस है जो हम ले रहे हैं सोशल मीडिया में। आजकल सारी जगह आप देखेंगे तो नेगेटिविटी का ही बोलबाला है, हर जगह नेगेटिव ही न्यूज है। चाहे आप न्यूज़पेपर उठा लें, चाहे आप टेलीविज़न ऑन करें, चाहे आप मोबाइल्स में कोई स्क्रॉल करते करते कोई मूवी देख रहे हैं या कोई चीज़, उसमें क्या चीज़ हम देख पा रहे हैं? सिर्फ लड़ाई झगड़ा, नेगेटिव चीज़ें, जो कि देखते देखते हमारे अंदर वो इमोशंस बना रही हैं, वैसा ही हमें बनाती जा रही है अंदर से। क्योंकि हम कोई भी चीज़ जितना सुनने से नहीं सीखते उतना देखने से सीखते हैं। तो जो चीज़ हम देख रहे हैं वही चीज़ हमारे अंदर इंटरनल, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वो जा करके प्रिंट हो रही है। और जब वो प्रिंट हो जाती हैं तो नेचुरली मेरे भी जो नेचर है, मेरे भी बिहेवियर में वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। आज किसी बच्चे ने देखा कि छोटेपन में एक छोटी सी बंदूक हाथ में दे दी गई कि खिलौना है, अब उसे वो खिलौना चलाने आया, थोड़े दिन बाद उसने बड़ा वो ले लिया, तो वो चीज़ क्या है उसका इम्प्रेशन? फिर उसको ये लगता है कि नहीं, मैं तो ये चलाऊं तब मुझे आनंद आएगा। तो वहाँ कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया, हम क्या चीज़ उसमें देख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं ये नहीं कहती कि पूरा ही सोशल मीडिया ख़राब है, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? अगर हम खराब चीज़ देखते जाएंगे तो नेचुरली हमारे अंदर वो नेगेटिविटी ही पनपेगी, वही टॉक्सिक बन जाएगा। आज कैसे बच्चों को सुसाइड करने का इतनी हिम्मत हो रही है? कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया ही इसका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनको वो ओपिनियन मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब एक सीरियल आया करता था, सबने देखा, आपने भी सुना होगा और देखा भी होगा, क्राइम पेट्रोल नाम से, तो जी सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल, तो उसमें एक बच्चे का इंटरव्यू आया, एक बच्चे ने जो कि घर में रहता था और बहुत छोटेपन से ही वो टीवी पे देखता था और उसको क्राइम पेट्रोल ही बहुत अच्छा लगता था, वो देखने लगा। उनके घर में ही, जिसके घर में वो काम कर रहा था और बड़े बच्चे की तरह उसको वो पालते थे, उनके उसके मन में उसको देख करके आया कि मैं भी ऐसा करूं। और उसने घर में छोटी बच्ची जो कि उसके पास ही रहती थी, उसको ही भैया कहती थी, उसके साथ ही, सिर्फ उसने उसको देख करके उसकी उसको भी मार दिया और घर का सारा सामान लेकर के चला गया। जब पकड़ में आया, क्योंकि प्रोफेशनल तो था ही नहीं, जब पकड़ में आया तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे मन में ये सारी जितनी भी प्लानिंग थी ये कहाँ से तुम्हारे माइंड में आई, कौन तुम्हें गाइड कर रहा है? तो कहा मैं क्राइम पेट्रोल बहुत देखता था और उससे मैंने अपने माइंड को जो है मैनेज किया, मुझे सारी टेक्निक्स आई, कहाँ मुझे अपने फिंगरप्रिंट्स हटा देने हैं, कहाँ कैसे करना है, वरना हर एक चीज़। तो कहीं ना कहीं मीडिया में ये चीज़ों को जो हाईलाइट किया जा रहा है तो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें बच्चों पर इफ़ेक्ट डाल रही हैं। तो इसके लिए पॉजिटिव चीज़ों को जितना हम दिखाएंगे, जितना हम बताएंगे और उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे तो नेचुरल पॉजिटिविटी ही लोग लेंगे। तो इसके लिए सोशल मीडिया बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, पॉजिटिविटी देने के भी और नेगेटिव देने का भी।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: प्रिया जी, क्या हम बिना टॉक्सिक हुए पॉजिटिव रह सकते हैं?
2: बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं, अपने दादा दादी जी को भी देखते हैं, और ये फिर भी अगर कहीं ना कहीं टॉक्सिक होते हैं तो हम उनके पीछे का भी सोच सकते हैं कि जो बिल्कुल ही चक्की पे आटा पीसते थे और गाय भैंस ही जो उनको पालन करते थे, पालते थे, उनके द्वारा ही अपना जीवन संचालन करते थे, जहाँ लाइफ बहुत स्लो थी, जो हमारे दिशा में हम देखते हैं तो लाइफ बहुत स्लो थी, लेकिन लाइफ स्लो होने का मतलब सोच भी बहुत स्लो थी। तो सोचने में स्लोनेस लाना, इसका मतलब नंब होना नहीं होता या डंब होना नहीं होता, स्लो होने का मतलब है उतना ही स्पिरिचुअल थे। तो जितना हम स्पिरिचुअलिटी को आज भी अपने जीवन में महत्व देते हैं, अपने लाइफ में बढ़ाते हैं स्पिरिचुअलिटी को, तो उतना ही हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और इतना ही हम अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपने कहा कि टॉक्सिक हुए बिना हम अपना जीवन जो है बहुत अच्छे से पॉजिटिव रह सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल, क्योंकि आज हमें लगता ही नहीं कि टॉक्सिक हुए बिना ऐसा हो सकता है। हम गुस्सा हुए बिना किसी से अपने काम नहीं करवा पा रहे, हम गुस्सा हुए बिना कोई काम खुद भी नहीं कर पा रहे, आसपास जितने लोग हैं हमें लगता है गुस्सा कर देने से वो फास्ट करेंगे, जल्दी करेंगे और रिजल्ट्स भी मिलते हैं, तो हमें लगता है कि गुस्सा तो करना जायज़ है, बनता है। और इसीलिए आज की डेट में एक बहुत बड़ा वर्ड आता है कि गुस्सा तो नॉर्मल है। वाकई में अगर देखें तो नॉर्मल तो नहीं है, गुस्सा नॉर्मल नहीं है। हमने तो धारावाहिक में भी ऐसे सीन्स हमारे दिखाए गए हैं जो कि मैं नहीं मानती वो सत्य होंगे, कि हमारे देवी देवताओं को भी गुस्सा करते हुए दिखाया है, जो मेरा मानना है कि वो सत्य नहीं है। वहाँ कहीं ना कहीं कोई मिक्सिंग की गई है, क्योंकि देवी देवता भी अगर गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो हम मनुष्य होकर अगर गुस्सा कर लेते हैं तो क्या ही बड़ी बात है। लेकिन वास्तविकता यही है कि वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, भगवान कभी गुस्सा नहीं होते। अगर वो गुस्सा होते तो गुस्से को कभी भी नेगेटिव टर्म या फिर नेगेटिव साइड में नहीं लिया जाता।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: तो हम वाकई में पॉजिटिव रह सकते हैं और बिना टॉक्सिक हुए अपने कामों को बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को ये देखना होगा कि मैक्सिमम मैं कौन से लेवल पे रहता हूँ। मैक्सिमम जो मेरा सर्कल है या जो भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ या जो भी मैं खा रहा हूँ या जहाँ भी मैं बैठा हूँ, वो पॉजिटिव है या नहीं।
1: बिल्कुल,
2: जो मैक्सिमम होगा वो उसका इम्पैक्ट जरूर होगा। आप दो बच्चे हैं घर में, एक को आप गुरुकुल में रखिए या साधुओं संतों के बीच में रखिए, और एक को जो नॉर्मल जो आज का है माहौल उसमें रखिए। डीजे भी है, सब कुछ है, बार है, डिस्को है, स्कूल है, लाइफ है, सब कुछ है, और एक को वहाँ जंगलों में रखिए जहाँ पर साधु संत रहते हैं। बहुत बड़ा चेंज आप देखेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: जितना ही वो शांत होगा यहाँ वाला उतना ही हाइपर होगा, वो जितना ही स्लो है उतना ही फास्ट। लेकिन जितना ही स्लो का मतलब स्लो नहीं कहूंगी, जितना ही स्लो होने के कारण उसकी जो क्षमता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्षमता है, यहाँ उसमें वो जीरो होगा। और अगर थोड़े बहुत नंबर मिल भी जाएं तो 10-5 ही मिलेंगे, यानी उसका अगर उसके अंदर पॉजिटिविटी है तो 10%, अगर उसके अंदर सहन शक्ति है तो 1%। तो इस तरीके से हर चीज़ अगर हम देखते हैं तो वही बच्चे हैं, वही पेरेंट्स हैं, लेकिन आसपास के माहौल से बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो अपना माहौल बदलिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और उसके बाद अपने जीवन में देखिए तो बहुत बड़े चेंजेस आएंगे।
1: बिल्कुल सही बात है। ज्योति जी, लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
3: मेरा यही है कि किसी को भी अगर समझना है या समझाना है तो सबसे पहले उनके मन के भाव को समझने की कोशिश करें, अपने मन को शांत करके पहले उनको सुने वो क्या कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद ही उनके मन को जब दिशा बदलेगी तभी उनकी दशा भी बदलेगी, तभी वो पॉजिटिव हो पाएंगे। तुरंत अपने अनुभव या अपनी चीज़ें शेयर नहीं करें, उनके आगे थोपे नहीं किसी के ऊपर, हर एक को अपनी लाइफ के हिसाब से उनको उनके तरीके से ही दें। अगर बच्चा है तो बच्चे को बच्चे की तरीके से ही चीज़ दी जाएगी, अगर हम सोचे कि बुजुर्गों की तरह दे दे तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर उनके मन के हिसाब से चीजें दी जाएंगी तो हर एक सिचुएशन को संभालना बहुत इजी हो जाएगा।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: आज की डिस्कशन से एक बात क्लियर है, पॉजिटिविटी तब तक हेल्दी है जब तक वो हमारे इमोशंस को डिनाई नहीं करती। अपनी फीलिंग्स को समझना, एक्सेप्ट करना और प्रोसेस करना ये वीकनेस नहीं, इमोशनल मैच्योरिटी है। बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी का दिल से शुक्रिया इस इनसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे थे जस्ट टॉक अबाउट इट सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता।

असलियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: I hate water wasting रे, जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ही इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ओनली ऑन रेडियो महारानी। और इस संघर्ष की कहानी में बहुत ही स्पेशल डे सेलिब्रेट होने वाला है। आज इंटरनेशनल योगा डे है, वर्ल्ड म्यूजिक डे है और साथ ही साथ बहुत ही स्पेशल डे फादर्स डे भी है। तो आज के इन खूबसूरत पलों में से एक घंटा मैं आपका चाहूंगी और चाहूंगी मैं आज का हमारा शो आप अपने पिता के साथ में सुने। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि पिता जो है वो क्या है वो आज तक किसी इंसान को समझ में नहीं आया। कभी लगता है कि शायद पिता वो इंसान है जो सबसे कम बोलता है लेकिन सबसे ज्यादा करता है। कभी लगता है वो इंसान है जो अपनी परेशानियां छुपाकर हमारे चेहरे की मुस्कान देखना चाहता है। और कभी कभी लगता है कि पिता वो इंसान है जो खुद थका हुआ होता है लेकिन जब बच्चा कहता है ना पापा मुझे ये चीज चाहिए तो वो बिना कुछ सोचे अपनी थकान को भुलाकर वो चीज ला करके देता है उसे। तो इन्हीं खूबसूरत फीलिंग्स को किसी ने बहुत ही खूबसूरत लाइंस में कहा है, पिता वो आसमान है जिसकी छांव में बच्चे अपने सपनों की उड़ान भरते हैं। पिता वो खामोश आवाज है जो बिना कहे भी हर जरूरत समझ लेता है, क्योंकि पिता का प्यार अक्सर शब्दों में नहीं होता, वो हमारी फीस भरने में होता है, हमारे देर से घर आने पर इंतजार करने में होता है, हमारी गलतियों पर डांटने में होता है और हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहने में होता है। लेकिन एक बात और भी है, इस दुनिया में कुछ ऐसे पिता भी हैं जो खून के रिश्ते से किसी के पिता नहीं लगते लेकिन फिर भी अपने काम, अपनी सोच और अपने प्यार से हजारों बच्चों के लिए पिता जैसी जगह बना लेते हैं। तो आज फादर्स डे स्पेशल में संघर्ष की कहानी में जुड़ चुकी हैं कुछ ऐसी कहानियां जो खून के रिश्ते से तो पिता नहीं थे लेकिन एक फादर फिगर बन गए अपनी सोच और अपने इंसानियत के रिश्ते से। तो इस खूबसूरत से मौके पर रेडियो महारानी की तरफ से ये प्यारा सा गाना आप सभी फादर्स के लिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो महारानी।

0: पड़ोसन हूँ, इसलिए जासूस हूँ।
1: सुनो पम्मी बहन जी।
2: बोलो सिमी बहन जी।
1: तुम्हें पता है गुड्डू की लड़की चुन्नू के लड़के के साथ भाग गई, और ये खबर सबको सबसे पहले मैंने ही बताई थी। और पता है एक दिन स्वीटी के घर चार लड़के आए। हाय, वो तो बाद में पता चला कि वो पेंटर थे। और पता है टिल्लो का पति रोज पीकर आता है, और जब ये बात मैं सबको बताने जाती हूँ तो लोग मेरे को जासूस बताते हैं। ले अब ये भी कोई बात हुई भला।
2: सही कह रहे हो पैंड जी, जो जानकारी रखते हैं ना उनको सब जासूस ही कहते हैं।

0: बाहर का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

कहते हैं पिता होना सिर्फ एक बच्चे को पालना नहीं होता, कभी कभी जिंदगी किसी इंसान को ऐसी जिम्मेदारी में डाल देती है जहां वो हजारों बच्चों के लिए पिता बन जाता है। आज फादर्स डे स्पेशल में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की। हेलो, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ओनली ऑन रेडियो महारानी। ये कहानी है हरियाणा के मशहूर हॉकी कोच बलदेव सिंह जी की। एक समय ऐसा था जब हरियाणा का छोटा सा शहर शाहबाद मारकंडा शायद देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स सेंटर्स में नहीं गिना जाता था, लेकिन एक इंसान ने वहाँ की तस्वीर बदलने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। साल था 1982 जब बलदेव सिंह हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कोच के तौर पर शाहबाद पहुँचे। बाद में 1993 में वापस आकर उन्होंने वहाँ हॉकी को एक नई पहचान दी। उन्होंने सिर्फ प्लेयर्स को हॉकी खेलना नहीं सिखाया बल्कि उन्होंने उन्हें खुद पर बिलीव करना सिखाया, जिसकी वजह से वो प्लेयर्स अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल गए और खास तौर से लड़कियां, जिन्हें उन्होंने स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का जज्बा दिया और उनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले किया। उस समय जब कई परिवार बेटियों को स्पोर्ट्स में भेजने से हिचकिचाया करते थे, बलदेव सिंह ने उन्हें मौका दिया, ट्रेनिंग दी और उनके सपनों को उड़ान दी। आज शाहबाद मारकंडा को इंडियन वुमेन्स हॉकी की नर्सरी के तौर पर जाना जाता है और बलदेव सिंह की कोचिंग से कई इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले, जिनमें इंडियन हॉकी टीम की कई बड़ी खिलाड़ी और कैप्टन शामिल हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो बलदेव सिंह जी ने 80 से ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स को ट्रेन किया है। वो उन तमाम खिलाड़ियों के लिए उस पिता की तरह बन गए जो रास्ता दिखाता है, गिरने पर संभालता है और जीतने तक साथ खड़ा रहता है। और उनके इसी योगदान के लिए उन्हें 2009 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और हाल ही में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन आज फादर्स डे स्पेशल में सिर्फ बलदेव सिंह जी ही नहीं, हमारे साथ एक ऐसे इंसान भी जुड़े हुए हैं जो फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, पर उन्होंने उन लोगों के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद दुनिया कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक अलग माइंडसेट और एक अलग पावरफुल थिंकिंग रखने वाले एक इंसान की कहानी आगे हमारे साथ जुड़ेगी, तो कहीं मत जाइए, संघर्ष की कहानी में सुनते रहिए इन नई नई कहानियों को फादर्स डे स्पेशल में। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस लौटूंगी, तब तक एंजॉय करिए इन प्यारे प्यारे गानों को और मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त मोनिका।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

ये बस की बात नहीं है और एक घंटे में किसी की कहानी को सुनाना भी इतना इजी नहीं होता, पर हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं आपके साथ उन सारी चीजों को शेयर करने का जो एक पर्सन की लाइफ जर्नी को डिफाइन करती है। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर एक मोटिवेशनल स्टोरी से एक बात सामने आती है कि आपका थिंकिंग प्रोसेस, आपकी जिद, आपका हौसला, यही आपको बाकी इंसानों से थोड़ा अलग बनाता है। और आज फादर्स डे स्पेशल की जो अगली कहानी है वो है ओडिशा के कुटक में रहने वाले डी प्रकाश राव जी। एक समय था जब प्रकाश राव खुद पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए, फाइनेंशियल हालत इतनी ठीक नहीं थी, छोटी सी उम्र में उन्हें अपने पिता की चाय की दुकान पर काम करना पड़ा। लेकिन शायद उस अधूरी पढ़ाई ने उनके अंदर एक सपना छोड़ दिया था, एक ऐसा सपना कि जो कमी उन्होंने महसूस की वो किसी और बच्चे की जिंदगी में ना आए। कुड्डक की झुग्गियों में रहने वाले कई बच्चे ऐसे थे जिनके पास स्कूल जाने के साधन नहीं थे, कई बच्चे गलत रास्तों की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि उनके पास सही मार्गदर्शन नहीं था। तब प्रकाश राव ने एक फैसला किया। उन्होंने सोचा अगर बच्चे स्कूल तक नहीं जा सकते तो क्यों ना स्कूल को ही बच्चों तक पहुंचाया जाए। साल था 2000 जिसमें उन्होंने अपने ही घर को स्कूल बना दिया। उन्होंने आशा और आश्वासना नाम से एक स्कूल शुरू किया। सुबह वो अपनी चाय की दुकान संभालते थे और फिर अपना समय उन बच्चों को पढ़ाने में लगाते थे। स्कूल से पढ़ाई भले ही उन्होंने कंप्लीट नहीं की थी, पर पढ़ने की चाह ने उन्हें इतना लायक, इतना शिक्षित बना दिया था कि वो छोटे बच्चों को शिक्षा दे सकते थे। सुबह वो अपनी चाय की दुकान संभालते और फिर वो अपना समय उन बच्चों को पढ़ाने में लगाया करते थे। इतना ही नहीं, अपनी कमाई का लगभग आधा हिस्सा उन्होंने इन बच्चों की शिक्षा, खाना और जरूरतों के लिए लगाना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए निकलो तो आपका सपोर्ट करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन पहले आपको ही खुद निकलना पड़ता है। और धीरे धीरे डी प्रकाश राव का छोटा सा प्रयास एक बड़ी उम्मीद बन गया। उनके स्कूल में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ने लगे। शुरुआती शिक्षा के बाद डी प्रकाश राव उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूलों में भेजने में मदद करने लगे। उन्होंने अपनी फाइनेंशियल हालत ठीक ना होने के बावजूद कई बार अस्पतालों में लोगों की मदद की और जिसे खून की जरूरत थी उन्होंने उनके लिए खून भी दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो 200 से ज्यादा बार उन्होंने ब्लड डोनेशन अब तक कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मन की बात में इनकी स्टोरी को लोगों के साथ शेयर किया था और साल 2019 में उन्हें एक सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन प्रकाश राव की असली पहचान कोई पुरस्कार नहीं है, उनकी असली पहचान वो बच्चे हैं जिनके हाथ में उन्होंने किताबें दी हैं। डी प्रकाश राव ने हमें सिखाया कि बड़ा बनने के लिए बड़ा पद होना जरूरी नहीं बल्कि बड़ा दिल होना जरूरी। तो अब टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे एक ऐसे कॉलर, एक ऐसे पिता जो अपनी बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर संघर्ष की कहानी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: डॉन की खोज तो 7 देशों की पुलिस कर रही है, पर पानी की खोज सारी दुनिया।
1: डॉन को पकड़ना शायद आसान भी हो, पर पानी के बिना जीना मुश्किल। तो आज से ही पानी यूज करो उतना, जरूरत हो जितना।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
1: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
5: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ इसलिए गधा हूँ।
6: सुन भाई सुरेंद्र।
7: हाँ भाई सुरेंद्र।
6: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूं, तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
7: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

0: खूबसूरत से गाने के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ओनली ऑन रेडियो महारानी। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे एक बहुत ही प्यारे से कॉलर, बहुत ही प्यारे से फादर, तो आज वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो सर।
1: हेलो मैम।
0: मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर कि जब एक इंसान फादर बनता है तो उसकी फर्स्ट फीलिंग क्या होती है, वो कैसा फील करता है जब फर्स्ट टाइम वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेता है?
1: बच्चों को प्रथम बार हाथ में लेने की जो फर्स्ट फीलिंग है वो पिता अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता है, पर कहीं ना कहीं जो फीलिंग हमारे पिता को महसूस होती है, जो जिम्मेदारियां, जो चीज़ें, जो इमोशन उन्होंने फील किए थे, वो सारी चीज़ें मैं फील करूँगा, ऐसा प्रथम बार बच्चे को लेने पर महसूस होता है।
0: मैंने देखा है कि सभी फादर्स जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते, चाहे वो फैमिली के साथ में हो चाहे वो अपने बच्चों के साथ में हो, तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न होता है कि फादर्स इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, अपनी फीलिंग्स को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं?
1: पिता एक्सप्रेसिव इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कहीं ना कहीं पिता कमज़ोर पड़ गया तो जो न्यू है हमारी वो कमज़ोर दिखने लग जाएगी। बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें फील कराते हैं कि शायद चीज़ें अब संभल नहीं पाएंगी और ये हमारी आंखों में, हमारे इमोशन में और हमारे जज्बातों में फैमिली को दिख गया तो फैमिली बिखर जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। ये कोई भी पिता अपनी फैमिली को कमजोर होते नहीं देख सकता है।
0: बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से फेस टू फेस वो सारी चीजें नहीं कह पाते जो वो कहना चाहते हैं, तो मैं बस ये कहना चाहूंगी, ये पूछना चाहूंगी आपसे कि आप अपने बच्चों को और साथ ही साथ जो हमारे लिसनर्स, जो बच्चे ये सुन रहे हैं इस शो को, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि एज अ पेरेंट्स क्या बातें होती हैं जो उन्हें भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और साथ ही साथ आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने बच्चों को?
1: रेडियो महारानी के थ्रू मैं हर बच्चे को और अपने बच्चे को इतना कहना चाहूँगा कि भले ही आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं लेकिन उनकी इस डांट में भी आपकी फिक्र छुपी होती है। बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर शेयर करें। आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ हैं, वो आपको समझते हैं और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे।
0: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ लिसनर्स, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो आपका भला चाहते हैं और आपके लिए कुछ अच्छा ही चाहते हैं। हर एक इंसान, हर एक फादर की फीलिंग वो शायद खुलकर शेयर नहीं कर पाते, पर कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए कुछ अच्छा ही होता है। उनकी डांट हो, चाहे वो आपकी फिक्र हो, वो सब आपके अच्छे के लिए होती है। इस फादर्स डे के मौके पर मैं सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे बोलना चाहूंगी रेडियो महारानी 89.6 FM की तरफ से, और साथ ही साथ तहे दिल से उनको शुक्रिया अपनी हर जिम्मेदारी, अपने हर फर्ज को बहुत दिल से निभाने के लिए और साथ ही साथ अपने बच्चों की हर बात को समझने के लिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नई उम्मीद और नए हौसले के साथ और एक नए इमोशंस के साथ में। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 9654896896 पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, अभी वक्त हो गया मेरा आप सभी से विदा लेने का, फिर वापस आऊंगी एक नए इमोशन के साथ में।

0: वेलकम टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे इंचले आपके साथ और शो लेकर आई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत खास टॉपिक के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जिस पर अक्सर बात कम होती है लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा होती है। हम अक्सर अपने अराउंड जितने भी मेल्स हैं उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी संभाले, हर सिचुएशन में स्ट्रांग बनी रहे और अपनी फीलिंग्स को साइड में रख दे। लेकिन आज मेरा सवाल ये है, क्या हर वक्त स्ट्रांग दिखना ही स्ट्रांग होना वाकई होता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल प्रेशर, नींद की दिक्कत, इवन काम का प्रेशर और इन सब के बीच अपनी बात अंदर ही रख लेना, ये सब मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए आज रेडियो महारानी पर पोषण की पाठशाला में सेलिब्रेट किया जा रहा है मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ, जहां हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विदुर आर्य, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद, जो मेंस मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग और टाइमली सपोर्ट के इम्पोर्टेंस पर आज हमें गाइड करने वाले हैं। सो बने रहिए रेडियो महारानी के आज के इस खास एपिसोड में। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। डॉक्टर, आज हम मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जून मंथ को मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के तौर पर क्यों मनाया जाता है और इसके साथ ही अगर बात की जाए आज के टाइम की, इसकी रेलेवेंस कितनी बढ़ गई है हमारी सोसाइटी में?
1: थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर विदुर आर्य है, मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट मेट्रो हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ। जून को मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है ताकि सोसाइटी में मेन की साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रगल्स को रिकॉग्नाइज करे और उनके अराउंड जो स्टिग्मा है उसे रिड्यूस किया जा सके। ट्रेडिशनली हमारी सोसाइटी में मेन को प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर और इमोशनली स्ट्रांग फिगर के रूप में देखा गया है, इसी वजह से उनकी इमोशनल पेन को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। आज के टाइम में इसकी रिलेवेंस और भी बढ़ गई है क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल्स में प्रेशर्स मल्टीपल लेवल्स पर बढ़ गए हैं, करियर कंपटीशन, फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल कंपैरिजन, रिलेशनशिप चैलेंजेस और डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन। बहुत से मेन साइलेंटली स्ट्रगल करते हैं विदाउट सीकिंग हेल्प। सबसे कंसर्निंग बात यह है कि मेन जनरली प्रोफेशनल हेल्प कम लेते हैं, बेशक उनको कितना भी ज्यादा स्ट्रेस हो। इसी वजह से अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत जरूरी हैं ताकि मैसेज क्लियर हो, मेंटल हेल्थ जेंडर स्पेसिफिक इशू नहीं है, मेन को भी इमोशनल सपोर्ट की उतनी ही जरूरत है जितनी और लोगों को।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर अपनी वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए। इन बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन छोटी सी म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विदुर, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। सो डॉक्टर, अगर मैं बात करूँ, अक्सर कहा जाता है कि मर्द रोते नहीं है या स्ट्रांग बनो, क्या ऐसे सोशल बिलीव्स मेंस मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, जिन्हें मेंस खुद भी नहीं समझ पाते हैं?
1: बिल्कुल, ये बिलीव्स मेंटल हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल हो सकते हैं। जब एक लड़के को बचपन से सिखाया जाता है कि रोना मत, वीक मत बनो, इमोशन दिखाना मैस्कुलिनिटी के लिए अगेंस्ट है, तो वो ग्रेजुअली अपने इमोशंस को सप्रेस करना सीख जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इमोशन सप्रेस करने से वो खत्म नहीं होते, वो अंदर एक्युमुलेट होते रहते हैं। इमोशनल पेन फिर अलग अलग फॉर्म्स में बाहर आ सकता है, एंगर, इरिटेबिलिटी, इमोशनल नमनेस, एल्कोहल यूज या अदर ड्रग्स यूज, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स। मैनी मेन डिप्रेशन में भी सैडनेस के इंस्टेड एंगर, एग्रेशन या विड्रॉल दिखाते हैं। इसलिए हमेशा मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन को रिडिफाइन करना होगा। रियल स्ट्रेंथ कभी कभी वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करने में होती है। इमोशनल एक्सप्रेशंस वीकनेस नहीं, इमोशनल मैच्योरिटी का साइन है।
0: जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया, हमें इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये बात सुनना बहुत जरूरी था, क्योंकि हर जिम्मेदारी निभाने वाले इंसान को भी सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। अगर हम इन सारी चीजों का ख्याल रखेंगे तो हमारी सोसाइटी में जो बिलीव्स हैं, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से, और हमारे अराउंड जितने भी मेंस हैं, वो भी अपने इमोशंस को फील कर पाएंगे, हमसे खुलकर बात कर पाएंगे। बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: पोषण की पाठशाला सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ की, जहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विधुर। सो डॉक्टर, अगर मैं बात करूँ मेंस मेंटल हेल्थ की, आपके एक्सपीरियंस में आज के मेंस सबसे ज्यादा किस तरह की मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? जैसे बात की जाए स्ट्रेस, एंजाइटी, लोनलीनेस या फिर डिप्रेशन या फिर बर्नआउट की, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ पर ज्यादा इफेक्ट करती है?
1: मेरे एक्सपीरियंस में कॉमनली 4-5 मेजर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज स्ट्रेस, जैसे फाइनेंशियल बर्डन, वर्क प्रेशर, करियर इंस्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये क्रोनिक स्ट्रेस का मेजर सोर्स है। सेकंड इज एंजाइटी, आजकल परफॉर्मेंस प्रेशर

0: सुपरफिशियल इंटरेक्शंस होती हैं पर डीप कन्वर्सेशंस नहीं होती हैं। फोर्थ इज बर्नआउट। कंटिन्यूअस प्रोडक्टिविटी कल्चर, जैसे ऑलवेज ऑन, ऑलवेज अवेलेबल रहना, तो ये हमारी बर्नआउट को बढ़ाता है और प्रोडक्टिविटी को कम करता है। फिफ्थ इज डिप्रेशन। मेन में डिप्रेशन अंडर डायग्नोस्ड होता है बिकॉज सिम्टम्स कई बार एटिपिकल हो सकते हैं, जैसे इरिटेबिलिटी, लो मोटिवेशन, इमोशनल डिटैचमेंट, सब्सटेंस यूज जैसे अल्कोहल एंड आजकल बहुत सारे सूखे नशे हो रहे हैं, कैनाबिस, ओपियोइड्स, बहुत सारे तरह के सब्सटेंसेस। बहुत केसेस में तो पेशेंट खुद से डिप्रेशन को डायग्नोज भी नहीं कर सकता। तो ये कुछ मेंटल चैलेंजेस हैं जो आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं।
1: जी थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड अभी डॉक्टर की बातों से ये पता चला कि अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो ये सिर्फ इमोशंस नहीं, रोज की आदत और लाइफस्टाइल से भी जुड़ी होती है। सो आज रेडियो महारानी पर जितने भी मेंस हमें सुन रहे हैं, ये एपिसोड खास आपके लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, आप किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर सकते, तो रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, वहाँ अपनी बातें हमारे साथ साझा कीजिए। आपकी इस जर्नी में हम आपके साथ हैं और आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विदुर। तो डॉक्टर, अगर मैं बात करूँ मेंस मेंटल हेल्थ की, सबसे पहले हमें ये बताइए कैसे पहचाने कि नॉर्मल स्ट्रेस अब मेंटल हेल्थ कंसर्न में बदल रहा है, साथ ही कौन से ऐसे वार्निंग साइन है जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
1: नॉर्मल स्ट्रेस तो लाइफ का पार्ट है। प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेस परसिस्टेंट रहे और फंक्शनिंग को इम्पेयर करे। इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइंस मोस्टली क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इमोशनल साइंस, कॉन्स्टेंट इरिटेबिलिटी, फीलिंग ओवरवेल्म्ड, मतलब हमेशा ओवरवेल्म फील करना, फ्रीक्वेंट एंगर आउटबर्स्ट, होपलेसनेस, इमोशनल नमनेस। सेकेंड इज कॉग्निटिव साइंस, जैसे ओवर थिंकिंग, पुअर कंसेंट्रेशन, कॉन्स्टेंट वरी एंड नेगेटिव थिंकिंग। थर्ड इज फिजिकल साइंस, जैसे हेडेक, फटीग, पाल्पिटेशंस, बॉडी पेन, जीआई इश्यूज जैसे नौजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एक्सेट्रा। फोर्थ इज बिहेवियर साइंस, जैसे कि सोशल विड्रॉल, इंक्रीज स्मोकिंग और अल्कोहल, स्लीप डिस्टर्बेंसेज, चेंजेस इन द एपेटाइट, मे बी एपेटाइट कैन बी इंक्रीज्ड और इट कैन बी डिक्रीज्ड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज विच वर बिफोर पेशेंट वॉज इंटरेस्टेड बट नाउ ही इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। मेजर रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं, जो ऐसा फील कर रहा है जैसे सब बेकार लग रहा है, किसी से मिलने का मन नहीं है, मेरे बिना सब बेटर होगा। अगर ये सब सिम्टम्स लगता है 2 to 4 weeks या उससे ज्यादा परसिस्ट कर रहे हैं और डेली फंक्शनिंग को इम्पेयर कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करना चाहिए।
0: बहुत इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर आज आपने बताई है, और शायद हम में से बहुत से लोग हैं जो इन साइन को हमेशा नॉर्मल रूटीन का हिस्सा समझकर इग्नोर कर देते हैं। वहीं अगर हम शुरुआत में ही इन चीजों पर ध्यान देंगे तो शायद हो सकता है हम किसी की मेंटल हेल्थ को टाइमली इम्प्रूव कर सके। वैसे कहा जाता है कि अगर आप अपनी हेल्थ पर किसी भी टाइम ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो कभी भी लेट नहीं होता है। तो बस यही कहना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरह की किसी भी मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, तो प्लीज आज ही बात कीजिए अपने डॉक्टर से, आज ही बात कीजिए अपने फैमिली मेंबर से, और नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप एक आज छोटा स्टेप लीजिए, धीरे धीरे करके आप इस बीमारी से बाहर जरूर आएंगे। और इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees.

0: जब इमोशंस रिपीटेडली सप्रेस किए जाते हैं, बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रेस स्टेट में रहते हैं। इससे क्या होगा? क्रोनिक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज, एडिक्शंस, स्लीप प्रॉब्लम्स, ऐसी चीजें डेवलप हो सकती हैं। इमोशनल सप्रेशन साइकोसोमेटिक सिम्टम्स भी कॉज कर सकता है, जैसे एसिडिटी, हेडेक्स, बॉडी एक्स, फटीग। एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट, रिलेशनशिप सफर करते हैं। फैमिली मेंबर्स फील कर सकते हैं कि पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल हो गया है। साइलेंस ऑफन क्रिएट्स पेन, देन आइसोलेशन, एंड आइसोलेशन क्रिएट्स मोर पेन। सो दिस क्रिएट्स अ विशियस साइकिल। तो शेयर करने से ये जो साइकिल है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। सो हमें अपनी फीलिंग्स को अपने क्लोज फैमिली मेंबर से, किस क्लोज रिलेटिव से, जो आपको लगता है ट्रस्टेड पर्सन है, उससे शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया, हमें इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये बात सुनना बहुत जरूरी था, क्योंकि हर जिम्मेदारी निभाने वाले इंसान को भी सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। अगर हम इन सारी चीजों का ख्याल रखेंगे तो हमारी सोसाइटी में जो बिलीव्स हैं ये एक दिन खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से, और हमारे अराउंड जितने भी मेंस हैं वो भी अपने इमोशंस को फील कर पाएंगे, हमसे खुलकर बात कर पाएंगे। बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। 89.6

0: आज और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ, जहां आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विदु। तो डॉक्टर, अगर मैं बात करूं मेंस मेंटल हेल्थ की, तो अगर हमारे आसपास हमारे दोस्त, भाई, हस्बैंड या फिर कॉलीग, अगर इनका बिहेवियर में थोड़ा बहुत बदलाव नजर आए, तो उसे सपोर्ट करने का सही तरीका क्या है, साथ ही क्या करें और क्या ना करें?
1: सबसे पहले हमें बिहेवियर चेंजेस नोटिस करने चाहिए। जैसे पर्सन पहले बहुत बोलता था पर अब बिल्कुल चुप रहने लगा है, ज्यादा देर बात न करना, इरिटेट रहना, उसके स्लीप में इश्यूज आ रहे हैं, पहले जो चीजें उसको अच्छी लगती थी अब उसको अच्छी लगनी बंद हो गई हैं, तो ये चेंजेस उसके अंदर आप नोटिस कर सकते हैं। सपोर्ट का बेस्ट अप्रोच है एम्पैथी। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है, हमें सेफ कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम कुछ स्ट्रेस्ड लग रहे हो, सब ठीक है। सेकेंड इज लिसन मोर एडवाइस लेस। कभी कभी उन्हें सॉल्यूशन नहीं सिर्फ लिसनर चाहिए होता है। उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, जो तुम फील कर रहे हो वो अंडरस्टैंडेबल है। फोर्थ इज एंकरेज हेल्प, थेरेपी या साइकेट्रिक कंसल्टेशन नॉर्मलाइज करें। फिफ्थ इज स्टे कनेक्टेड, रेगुलर फॉलोअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें अपने रेगुलरली उससे बात करनी चाहिए, रेगुलरली उससे पास जाना चाहिए, उसकी फीलिंग्स सुननी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या ना करें, हमें ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए कि स्ट्रांग बनो, सबके साथ होता है, ओवर रिएक्ट मत करो, और अनसॉलिसिटेड लेक्चर्स, मतलब हम उसको बिना उसकी जरूरत के हम उसको लेक्चर्स ना दें, या बिना अगर वो ना चाहते हुए भी लेक्चर्स ना दें। अगर सेल्फ हार्म या सुसाइडल सिग्नल्स हों तो इमीडिएटली प्रोफेशनल हेल्प अर्जेंटली लेनी चाहिए।
0: बहुत इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर आज आपने बताई है, और शायद हम में से बहुत से लोग हैं जो इन साइन को हमेशा नॉर्मल रूटीन का हिस्सा समझकर इग्नोर कर देते हैं। वहीं अगर हम शुरुआत में ही इन चीजों पर ध्यान देंगे, तो शायद हो सकता है हम किसी की मेंटल हेल्थ को टाइमली इम्प्रूव कर सके। वैसे कहा जाता है कि अगर आप अपनी हेल्थ पर किसी भी टाइम ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो कभी भी लेट नहीं होता है। तो बस यही कहना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरह की किसी भी मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, तो प्लीज आज ही बात कीजिए अपने डॉक्टर से, आज ही बात कीजिए अपने फैमिली मेंबर से, और नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप एक आज छोटा स्टेप लीजिए, धीरे धीरे करके आप इस बीमारी से बाहर जरूर आएंगे। और इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं म्यूजिक ब्रेक।

0: इम्प्रूव करती है। थेरेपी लेना इसका मतलब है कि हम अपने आप को और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। थर्ड मिथ इज विल पावर से सब ठीक हो जाएगा, बट रियलिटी में क्या होता है, सम कंडीशंस नीड प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। हमें कुछ बीमारियों के लिए, कुछ हमें प्रॉब्लम्स के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेनी जरूरी है हमें, क्योंकि जब हमारे पास विल पावर ही नहीं होगी, कई कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें विल पावर नहीं होती है, तो हम उसमें हम हेल्प लेने की जरूरत है। फोर्थ मिथ इज मेडिकेशन लेने से आदत पड़ जाती है, तो इसकी रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। जबकि हर साइकेट्रिक मेडिसिन एडिक्टिव नहीं होती, मोस्ट एंटीडिप्रेसेंट्स एडिक्शन कॉज नहीं करते। जब बस इम्पोर्टेंट है कि हमें डॉक्टर की गाइडेंस में लेना है और जैसे डॉक्टर बोले तरह से लेना है और उसी तरह से उनको बंद करना है। फिफ्थ मिथ इज मेंटल इलनेस मतलब पागलपन। मेंटल इलनेस इश्यूज स्पेक्ट्रम पर होते हैं, इस मिथ को ब्रेक करना अवेयरनेस का कोर पार्ट है।
1: जी थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड अभी डॉक्टर की बातों से ये पता चला कि अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो ये सिर्फ इमोशंस नहीं, रोज की आदत और लाइफस्टाइल से भी जुड़ी होती है। सो आज रेडियो महारानी पर जितने भी मेंस हमें सुन रहे हैं, ये एपिसोड खास आपके लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, आप किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर सकते, तो रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, वहाँ अपनी बातें हमारे साथ साझा कीजिए। आपकी इस जर्नी में हम आपके साथ हैं और आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: जहां आज हम बात कर रहे हैं मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ पर, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विधुर। सो डॉक्टर विधुर, इस मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ पर आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, चाहे वो खुद स्ट्रगल कर रहे हो या किसी अपने को सपोर्ट करना चाहते हो?
1: मेरा मैसेज सिंपल है, जैसे हम डायबिटीज, बीपी या हार्ट हेल्थ को सीरियसली लेते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ को भी लेना चाहिए। माइंड और बॉडी सेपरेट नहीं है, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसको इग्नोर मत करिए, सप्रेस मत करिए और डिले मत करिए। अर्ली हेल्प आउटकम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करती है, और सोसाइटी को भी मेन के लिए इमोशनल सेफ स्पेसेस क्रिएट करने होंगे। अगर आप सुन रहे हैं और साइलेंटली स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, आपको सब कुछ अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है। जो आप फील कर रहे हैं वो रियल है, और उस पेन को इग्नोर करना जरूरी नहीं। हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होता, एक्चुअली हेल्प मांगना एक करेज का साइन है। किसी ट्रस्टेड दोस्त, फैमिली मेंबर, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से बात करिए। हीलिंग पॉसिबल है, रिकवरी भी पॉसिबल है। इट इज ओके टू स्ट्रगल, इट इज ओके टू स्पीक अप, एंड इट इज ओके टू आस्क फॉर हेल्प। थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर विधुर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। उम्मीद है आज का एपिसोड आप सभी के लिए एक नया नजरिया और एक जरूरी जानकारी लेकर आया होगा। आज हमने जाना कि मेंटल हेल्थ सिर्फ एक टॉपिक नहीं, बल्कि हर इंसान की ओवरऑल वेलबींग का एक जरूरी हिस्सा है। इमोशंस को समझना, स्ट्रेस को पहचानना और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट लेना बिल्कुल नॉर्मल है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर विधुर फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद, जिन्होंने इतनी सिंपल और मीनिंगफुल बातों के जरिए हमारे लिसनर्स तक ये खास मैसेज पहुंचाया। और इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे अंजली, फिलहाल मैं चलती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सर संदीप वापस आ गया।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ फिट है तो हिट है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे और आज का एपिसोड डेडिकेटेड है एक ऐसी प्रैक्टिस जो सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि बैलेंस पीस और हेल्दी लाइफस्टाइल का मैसेज देती है। और आज के स्पेशल कन्वर्सेशन का पार्ट हमारे साथ बन रही है योगा प्रोफेशनल राधिका नागपाल जी। आज हम बात करेंगे कि योगा कैसे हमारी डेली लाइफ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बेटर स्लीप और ओवरऑल वेलबींग को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। तो चलिए बिना देरी के वेलकम करते हैं हमारे आज की गेस्ट का। बहुत बहुत स्वागत है राधिका जी आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। राधिका जी, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे एंड जैसे कि कहते हैं ना, योगा से ही होगा। तो सबसे पहले हमें ये बताइए, आज के फास्ट पेस लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं तो योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि लाइफस्टाइल कैसे बन सकता है?
1: थैंक यू सो मच अंजलि फॉर योर क्वेश्चन। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बहुत बहुत बधाई योगा डे की। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे पास एक पर्टिकुलर योगा डे है अब उसको सेलिब्रेट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि ये कितनी जरूरी चीज है हमारे लाइफस्टाइल में। क्योंकि योगा सिर्फ अपने आप में एक्सरसाइज नहीं है, ये बेसिकली हमारा लाइफस्टाइल है। क्योंकि जब हम अपना दिन योगा से एक प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं तो ये बेसिकली हमारा पूरा जो दिन है ना उसका रूटीन सेट कर देती है। क्योंकि योगा हमारे आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी, आपको हर वे में आपको एक्टिव रखता है, आपके पूरा दिन का जो साइकिल है ना वो मतलब एक तरीके से बूस्ट कर देता है। तो आप उसको सिर्फ चार आसना या पोस्चर्स को आप योगा नहीं बोलोगे, ये बेसिकली आपका जीने का तरीका है। क्योंकि योगा को आप रिस्ट्रिक्टेड किसी भी चीज में नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपके बॉडी माइंड और स्पिरिचुअलिटी सबको कनेक्ट करती है। तो आप सोचो कि मैं चार आसना करके बाहर जाके गंद खा रहा हूँ, रात को लेट नाइट पार्टीज में कुछ भी अपनी बॉडी में डाल रहे हो, तो आप उसको एज ए योगा प्रैक्टिस नहीं लोगे, फिर आप सिर्फ एक एक्सरसाइज के नजरिए से देख रहे हो। लेकिन अगर आपने योगा को अडेप्ट करा है ना तो वो आपका लाइफस्टाइल है, आपके सोचने का तरीका, आपके खाने का तरीका। जब आप किसी भी एक चीज में इन्वॉल्व होते हो तो आप अपने आप को उस चीज से ना अटैच कर लेते हो, फिर आपको खाते वक्त भी ध्यान रहता है, अच्छा नहीं कि मैंने ये नहीं खाना क्योंकि मैं योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये किसी पुश से नहीं होता, ये नेचुरली होता है, वो योगा अपने आप पुल करता है आपके अंदर से ये सब चीजों को ना, वो निकाल ही देता है। तो वो लाइफस्टाइल ही आपका, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज और समथिंग। तो आई थिंक ये लाइफस्टाइल आपका है और वो आपको बेटर रिजल्ट देता है जब आप उसको एज अ लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हो।
0: जी, थैंक यू सो मच राधिका जी। एंड जैसे कि आपने कहा कि योगा से ही होगा, यानी कि जब तक आप योगा करेंगे आपको किसी भी मेडिसिन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो माय डियर लिसनर्स, आज ही खुद को प्रायोरिटी बनाइए, ज्यादा नहीं तो 30 मिनट खुद के लिए निकालिए डेली, वर्कआउट कीजिए, एक हेल्दी डाइट लीजिए और प्रॉपर स्लीप। बस ये कॉम्बो है जिसका अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करते हैं ना तो आप एक परफेक्ट और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इसी के साथ बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ।
2: हो गया

0: जेल में खाना तो अच्छा होगा ना।
1: खाना छड़ पीने की सोच, बियर शर सब बंद पहन।
2: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग अब फैल रही है यार।
3: क्या आपको पता है कि आपके और दुर्घटना के बीच में बस थोड़ी सी लापरवाही का फर्क होता है, तो सावधानी से चलें और सुरक्षित पहुंचें।
4: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

बॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: स्टोर्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: शानदार सुरे के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ फिट है तो हिट है। लेकिन आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में है योगा एक्सपर्ट राधिका नागपाल जी। सो राधिका जी, अगर मैं बात करूँ योगा की, बहुत सारे लोग कहते हैं कि योगा करने के लिए ना बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो सिर्फ 10 से 15 मिनट का कौन सा ऐसा योगा रूटीन है जो डेली लाइफ में फॉलो किया जा सकता है, जिससे बहुत सारे डिफरेंसेस हमें अपनी हेल्थ में देखने को मिल सकते हैं?
1: ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है, एक टाइम पे अपने लिए और सबके लिए भी। मतलब अगर मैं उसको बोलूँ ना कि किसी के पास, पहली बात तो मैं ये बोलती हूँ कि आप जो बोलते हो कि आपके पास योगा के लिए टाइम नहीं है, दिस इज माई लाइन ऑलवेज, कि आज आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन जब आपका शरीर, आपका तबीयत खराब होगी ना, आप डॉक्टर्स के पास टाइम जाने के लिए निकालोगे, आप थेरेपीज के लिए टाइम निकालोगे, आपका पूरा घर इम्पैक्ट होगा, वो चीजें भी आप दूसरों से मैनेज करवाओगे। सो मेक श्योर कि आज आप अपने आप को 15-20 मिनट दे रहे हो, ताकि आपका घर कल को डिस्टर्ब नहीं हो। क्योंकि आपके जो माँ बाप हैं दुनिया में, अपने बच्चों के लाख चाचे ताए हो, लेकिन जो आज आप अपने बच्चों के लिए करते हो ना, वो कोई करके नहीं देता। और उसके बावजूद भी लगता है हेक्टिक स्केड्यूल में आपके पास टाइम नहीं है ना, हर किसी को मैं ये बोलूंगी जिसके पास 15 से 20 मिनट है ना, एक नॉर्मल स्ट्रेचिंग जो बॉडी ओपन अप करने के लिए होती है, वो करने के बाद सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार सीख लो, एंड योर लाइफ इज सॉर्टेड। मैं आज तक के रिकॉर्ड में पिछले 14 सालों, मतलब 2012 से लेके अभी तक, मेरे को कम टाइम है कि ज्यादा टाइम है ना, मतलब मुझे लगता है मेरे पास 15 मिनट है ना, तो मैं एक ही बार में खींच के 108 सूर्य नमस्कार निकाल देती हूँ। अगर मुझे लगता है मेरे पास प्रॉपर टाइम है, मैं उसको दो में डिवाइड कर देती हूँ, 54 करके, फिर भी मुझे लगता है और कम टाइम है, 27 आई विल डू, उसका हाफ उसका जी। तो कुछ नहीं होता ना आपसे, मैं कह रही हूँ आप जहां पर भी हो, कोई भी आसपास आपका इंस्टीट्यूट है, विदाउट ऑब्जर्वेशन किसी के मत सीखना, अपने आप ये गलती मत करना, बिकॉज आपको ये जॉइंट जर्क दे सकते हैं, आपकी बॉडी को सूट करता है कि नहीं करता है। मैं एक ये रैंडम सबके लिए बता रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम द पर्सन, आप प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा सीवियर सर्वाइकल आप नहीं कर सकते हो, आपकी हार्ट बीट बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती है, बीपी हिट करता है, तब आप नहीं कर सकते हो। देन यू गो डाउन, स्लो डाउन विद फ्यू मूवमेंट्स, आप कुछ कुछ एक्सरसाइजेस नॉर्मल बेसिक सीख सकते हो पहले। बट अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो, और स्पेशली टू द यंग गर्ल्स जिनका वेट बहुत ज्यादा है, उनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज अभी नहीं है लाइक जॉइंट्स टाइप के, गो फॉर सूर्य नमस्कार, हाईली रिकमेंडेशन है मेरी उस चीज के लिए, बस सूर्य नमस्कार सीख लो एंड योर लाइफ इज सॉर्टेड।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी, आज आपने एक मिथ को खत्म किया है, आपने बताया है कि योगा के लिए पूरे दिन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ 10 से 15 मिनट भी काफी है अगर आप ध्यान लगाकर उतनी ही डेडिकेशन के साथ इस समय में योगा करते हैं। जैसे कि आपने बताया, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है हमारी ब्रीदिंग। अगर हम अपनी ब्रीदिंग पर ही ध्यान दें एंड इसके साथ हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें, या फिर सूर्य नमस्कार, जैसे कि आपने बताया कि अगर फिटनेस का मंत्र जानना है ना, तो सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट एक्सरसाइज। सो माय डियर लिसनर्स, आज आपके लिए एक छोटी सी टिप हम लेकर आए हैं, इस टिप का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा अपनी लाइफ में, और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

फिट है तो हिट है शो लेकर फिर से लौट आई हूँ मैं। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे पर राधिका जी से। सो राधिका जी, अगर मैं बात करूँ आजकल के टाइम की, तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है वो है स्ट्रेस एंजाइटी। तो ये बताइए कि स्ट्रेस एंजाइटी और मेंटल वेलनेस के लिए कौन से सिंपल योगा प्रैक्टिसेस डेली हम सब अपने घर पर कर सकते हैं और जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए वाकई बेनिफिशियल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मुझे लगता है प्राणायाम से करें। दैन आप थोड़ा देखो, प्राणायाम को भी बहुत ज्यादा अगर आप फील करना चाहते हैं ना, मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बीइंग इनटू योगा फॉर दैट मच टाइम, जब आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो ना, चाहे वो 10 मिनट की है, उसके बाद जब आप स्टिल होकर ब्रीदिंग करते हो ना, आपको उसका फील ना पता चलती है आपकी बॉडी को, क्योंकि आपने बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट में डाला है और फिर स्लो डाउन करा है, तो वो बॉडी ना उस चीज को फील करती है। जब आप उसके लिए आप अनुलोम विलोम कर लो, अब अगर कभी भी आप बोलते भी हो किसी को योगा कर लो, अच्छा वो ऐसे करना है, नाक को इधर से सांस लेनी है सांस छोड़नी है, मैं कहती हूँ वो सांस लेना और सांस छोड़ना ना 5 मिनट जिस दिन बैठ के जिसने प्रैक्टिस कर लिया ना, उसको वो सांस छोड़ने और लेने की ना फील पता चल जाएगी कि वो आपको कैसे डिफरेंस देती है। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, दो इट्स अ फिजिकल थिंग, मेरे अपने बेटे को एडेनोइड सीवियर था, डॉक्टर्स ने बोला ऑपरेट करना ही पड़ेगा, साथ में उसको टॉन्सिल्स भी है, दैट इज नो अदर वे। माय मदर इज अ योगा टीचर, उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी उस दिन, मैं ऑपरेट कराने के लिए भी रेडी क्योंकि मेरा बच्चा उस चीज से बहुत सफर कर रहा था, उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि गुड़िया अगर आपका योगा आपके बच्चे के लिए काम नहीं आया ना, इट्स यूजलेस, आप दुनिया से हजारों भी कमा लेना, लेकिन अगर आपने अपना बच्चा ठीक नहीं करा ना, उससे हैविंग दैट नॉलेज इट्स यूजलेस। एंड इट एक्चुअली यू नो एक तरीके से मेरा दिमाग हिला दिया इस चीज ने कि कितनी बड़ी बात बोली है मेरी माँ ने। दैट डे मैंने उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करानी स्टार्ट करी विदाउट, अभी वो बहुत ज्यादा सूर्य नमस्कार और फिजिकल में, क्योंकि वो फुटबॉल वगैरह प्ले करता है तो वो फिजिकली कर लेता है, सिर्फ वो डेली स्कूल जाने से पहले 5 मिनट मैं उसको भ्रामरी प्राणायाम, ब्रीदिंग नॉर्मल अनुलोम विलोम, उसके साथ में ये कराती हूँ त्रिका, भस्त्रिका इज वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग, ठीक है। ये तीन प्रैक्टिस वो 5 मिनट पिछले 3 साल से कर रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, एडेनोइड्स और टॉन्सिल्स हिट करना तो आप छोड़ ही दो, टच वुड 3 साल से ना उसने कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लिए कोल्ड कफ और एलर्जी को क्योर करने के लिए। तो पहले आपकी वो जो ये चीजें ना आप फिजिकल लेवल पे क्योर होते, आप कभी भी ना एंजाइटी और उस पर डायरेक्ट नहीं जा सकते, एंजाइटी और ये चीजें ना पहले आपकी अगर बॉडी बैलेंस है वो स्वस्थ है ना, तब वो आपको स्टिल होके बैठने देगी, तब वो आपकी जो फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड है, जो मेडिटेशन आप बोलते हो, आपका शरीर परेशान है आप सीधा मेडिटेशन कर ही नहीं सकते, आप पहले अपनी बॉडी को उस लेवल तक लाते हो कि आप ब्रीदिंग को आपकी बॉडी समझ जा पाए। और ये ना तभी बोला योगा ना फिजिकल मेंटल में आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो ओवरऑल आपको क्योर करता ही है। आप रात को सोने से पहले अगर आपको फिर भी लगता है आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी है या

है कि मेडिटेशन के लिए आपको जो पसंद है वो एक्सरसाइज आप कीजिए और फिर देखिएगा स्ट्रेस, एंजाइटी, इवन बर्नआउट, ये सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। सो माय डियर लिसनर्स, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, तो बस एक काम कीजिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट कीजिए और बस डेली लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ फिट है तो हिट है। जहाँ आज मैं अकेली नहीं हूँ, स्टूडियो में मेरे साथ है योगा एक्सपर्ट राधिका जी। सो राधिका जी, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। बिगनर्स के लिए सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है और योगा शुरू करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिगनर्स के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि एक तो योगा, अगर आप पर्टिकुलर योगा के लिए आप जा रहे हो तो उसको ना बहुत ज्यादा वैसे माइंडसेट से ना जाएं जो आप जुम्बा क्लासेस और एरोबिक क्लासेस से यू नो एक्सपेक्ट करते हो। इट्स नॉट जस्ट फॉर फन क्लासेस। अगर आपको जेन्युइनली अपनी प्रॉब्लम्स, चाहे वो यंग जनरेशन है या बड़ी जनरेशन है, अगर आपको क्योर करना है ना, योगा से बेहतर कोई चीज है ही नहीं। अगेन मैं बोलूंगी, ये आपके पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, आपके बॉडी माइंड स्पिरिचुअलिटी सबको हिट करती है। कभी भी एक महीना ट्राई करके छोड़ना मत उसको, नो मैटर वो आपको कितनी भी बोरिंग लगे। मैं कह रही हूँ आप उसको 3-4 महीने सिर्फ ये सोच के जस्ट एक होता है टेस्ट कर दे कि देखती हूँ मैं क्या होता, उससे भी ट्राई कर लो आप। लेकिन गिव योरसेल्फ 3-4 मंथ, चाहे फिर वो आपका वेट लॉस हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, आपको लाइट फील करना है, आप अपने आप में पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। बट ये गलती कभी मत करना कि क्योंकि आपको सिर्फ बोरिंग लग रहा है और आपने उस चीज को छोड़ दिया। कोई जुम्बा, कोई भी एक्टिविटी आपको वो इम्पैक्ट नहीं दे सकती आपकी बॉडी पे जो आपको योगा देकर जाएगा।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी, और बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बनी रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

तभी याद है तुम कहा करते थे कि सफर शुरू होने से पहले तुम सफर के मालिक होते हो, मगर जब सफर शुरू होता है

0: वो सफर ही मालिक हो जाता है।
1: इस शानदार सी ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है फिट है तो हिट है, जहाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगा प्रोफेशनल राधिका जी। सो राधिका जी, आज आप योगा डे पर हमारे रेडियो महारानी के लिसनर्स तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगी कि किस तरह से वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें?
2: सो योगा डे पे मैं अपनी तरफ से जो अपनी ऑडियंस को मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ये मत सोचो कि योगा इज अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप कितने अच्छे फ्लेक्सिबल हो, कितने अच्छे पोस्चर्स कर पा रहे हो। इट्स नॉट अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स नॉट अबाउट आप कितना डीप जा रहे हो। इट्स जस्ट दैट आपको कंसिस्टेंट रहना है। वंस यू स्टार्ट इट, भागती हो इस दुनिया में जहां सिर्फ भाग रहे हो, कभी बच्चों के लिए, कभी पैसा कमाने के लिए, जस्ट स्लो डाउन अ लिटिल बिट। अपने लिए थोड़ा सा अपनी बॉडी मूवमेंट करो ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। 5 मिनट रुक के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो ताकि आपका माइंड शांत रहे, क्योंकि काम माइंड से आप हर चीज में बेटर परफॉर्म कर पाओगे। अपने बच्चों के साथ भी थोड़ा सा पेशेंटली बिहेव करोगे एंड देन आफ्टर दिस इट विल कनेक्ट यू टू स्पिरिचुअलिटी एज वेल, क्योंकि जब आपका मन शांत होगा ना तो आप उस सुप्रीम पावर को फील भी कर सकते हो। सो नेवर वेट फॉर अ परफेक्ट टाइम, नेवर वेट फॉर अ परफेक्ट प्लेस। जहां हो जैसे हो वहीं से शुरू कर लो, और जब शुरू कर लो तो थोड़े से कंसिस्टेंट रहना एंड इट विल गिव यू सो मच दैट यू विल लाइक यू विल हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो मेरी तरफ से योगा डे की बहुत बहुत बधाई एंड आई जस्ट एक्सपेक्ट कि मेरा ये मैसेज सब तक जाए और कोई भी एक भी लाइफ उस चीज से चेंज होती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच राधिका जी फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। और आज आपने योगा हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर बहुत सिंपल और यूजफुल बातें हमारे साथ शेयर की हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमारे लिसनर्स भी आज की कन्वर्सेशन से इंस्पायर होंगे और अपने डेली रूटीन में भले ही बहुत छोटे स्टेप के साथ योगा को जरूर इंक्लूड करेंगे। एंड थैंक यू सो मच राधिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो माय डियर लिसनर्स, याद रखिए फिट रहना सिर्फ एक गोल नहीं, एक हैबिट है। इसी के साथ मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अंजलि और शो लेकर आई थी फिट है तो हिट है। फिलहाल मेरा वक्त हो गया यहाँ से जाने का, लेकिन फिर मिलेंगे एक नई गेस्ट एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

save life. पर सेव वॉटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में. जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं.
5: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है.
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
6: म्यूजिक हैज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ कनेक्टिंग पीपल बियॉन्ड लैंग्वेज, बॉर्डर्स एंड जेनरेशंस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे ऑन वर्ल्ड म्यूजिक डे. नमस्कार, मैं हूँ गीत एंड यू ऑल आर लिसनिंग टू खास मुलाकात ऑन रेडियो महारानी. टुडे आई हैव प्रिविलेज ऑफ स्पीकिंग विद एन आर्टिस्ट हु इज कैरिंग फॉरवर्ड अ म्यूजिक लेगेसी दैट इज सेंचुरीज ओल्ड. शी बिलोंग्स टू द रिनाउंड उपाध्याय पखावज ट्रेडिशन ऑफ गया एंड बिहार एंड अ ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन. She has represented Indian classical music on prestigious platforms across the country and around the world. So it is a pleasure to welcome the Pakhavaj Queen, Mahima Upadhyay, to Radio Maharani. Mahima ji, it's a wonderful to have you with us. And my first question is, being the 15th generation of such as a renowned tradition, क्या कभी आपने उस legacy का pressure feel किया है, या फिर it has always been a source of inspiration for you?
7: Geet, the greatest challenge is maintaining the purity and essence of the tradition while staying relevant in a rapidly changing world. As a female Pakhavaj artist in a field traditionally dominated by men, I have also had to work hard to establish my identity. However, the guidance of my gurus and family has always inspired me to move forward with that dedication and confidence.
6: So yahan par waqt hai gaane ka, gaane ke baad fir se lautenge. Show hai khas mula.

0: आज मेरे पास पसीना है, डिहाइड्रेशन है, हीट वेव्स है, तुम्हारे पास क्या है?
1: मेरे पास नींबू पानी है।
2: बात करो।

0: वंस अगेन वेलकम बैक. शो है खास मुलाकात. मेरे साथ महिमा उपाध्याय जी हैं आज वर्ल्ड म्यूजिक डे के मौके पर. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पखावज इज ऑफन कॉल्ड द सोल ऑफ द्रुपद. आपके लिए पखावज सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है या इसके साथ एक इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपका जुड़ा हुआ है?
1: ग्रेट क्वेश्चन. फॉर मी द पखावज इज इटसेल्फ अ सोलो इंस्ट्रूमेंट. इट इज अ मीडियम ऑफ spiritual expression. So the relationship between Drupad and Pakhavaj is like that of the soul and the body. Its sound carries depth, strength, devotion and tradition. When I play the Pakhavaj, I feel connected to an ancient musical heritage that transcends words and speaks directly to the heart.

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचे। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: तब से।
1: इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है खास मुलाकात। मेरे साथ महिमा उपाध्याय जुड़ी हुई हैं आज वर्ल्ड म्यूजिक डे के मौके पर। मैम, मेरा अगला सवाल है, आपने अपने फैमिली गुरुज और सीनियर से बहुत कुछ सीखा है, इज देयर वन लेसन दैट हैज स्टेड विद यू थ्रू आउट योर जर्नी एंड स्टिल गाइड्स यू टूडे?
2: माई फादर, माई गुरु पंडित रविशंकर उपाध्याय जी, he has always taught me that humility is one of the greatest virtue an artist can possess, because he reminds me that learning never ends, no matter how much one achieves. But whenever I perform on stage, I carry that lesson with me and strive to present my art with that sincerity, honesty and respect for the tradition.

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: अगर आप जीमेल, आउटलुक या याहू मेल जैसे ईमेल प्रोवाइडर्स यूज करते हो तो सावधान रहो। स्कैमर्स का तो आसान है, बस ईमेल भेजा, आपने असली मानकर अपने डिटेल्स दे दिए और यूं ही पैसे गए। बट सस्पिशियस लिंक्स, अननोन सेंडर्स और अनकंफर्म नोटिसेस से दूर रहो।

0: इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है खास मुलाकात। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे। मेरे साथ महिमा उपाध्याय जुड़ी हुई हैं। सो मैम, बिफोर वी रैप अप वर्ल्ड म्यूजिक डे के स्पेशल ओकेजन पर, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू शेयर विद एस्पायरिंग म्यूजिशियंस एंड आवर लिसनर्स?
1: ऑन वर्ल्ड म्यूजिक डे आई वुड लाइक टू इनकरेज यंग म्यूजिशियंस टू बिलीव इन देमसेल्व्स फर्स्ट एंड एम्ब्रेस द डिसिप्लिन ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस एंड ऑल्सो visiting different venues to listen and watch the legendary musicians of Indian classical music program. So Indian classical music is a lifelong journey that requires patience and, you know, dedications and humility. So first, respect your gurus, stay connected to your cultural roots and approach music not merely as a profession but also as a path of learning, self-discovery and spiritual growth. It's very important. So the rewards may not always be immediate, but the fulfillment it brings is truly priceless. Believe me.
0: Thank you so much, ma'am, for joining us today and sharing your inspiring journey, thoughts and love for music with our listeners. On this World Music Day, your words remind us that music is not just an art form. It is a tradition, a discipline, and a beautiful way of connecting hearts across generations. The show hai Khaas Mulaqat, main hoon Geet, and signing off, thank you for turning in.

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: इंटरनेशनल योगा डे। योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो हमारे शरीर मन और आत्मा को एक साथ जोड़ती है। आज के दौर में जब स्ट्रेस एंग्जाइटी बिजी स्केड्यूल और हेल्थ कंसर्न्स लगातार बढ़ रहे हैं योगा हमें बैलेंस पॉजिटिविटी और इनर पीस की तरफ ले जाता है। इसी खास मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक विशेष मेहमान जो योगा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और हजारों लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं योगा के उन पहलुओं के बारे में जो हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ओके अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष योग विज्ञान एवं मानव कल्याण ट्रस्ट से। सर स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
5: धन्यवाद जी।
4: तो सर शुरुआत करने से पहले मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा कि आज की लाइफस्टाइल हम सबको पता है बहुत ज्यादा तेज हो गई है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, सबकी लाइफ में ये हो रहा है, तो आपके हिसाब से योगा सिर्फ एक चॉइस रहनी चाहिए या फिर जरूरत होनी चाहिए आज की डेट में?
5: देखिए जी, योगा हमेशा से जरूरत का हिस्सा रहा है।
4: ठीक है,
5: हम जैसे नहाते हैं, खाते हैं, नाश्ता करते हैं, इस तरह योगा को भी अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाए। योगा का मतलब क्या है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। योगा कोई एक्सरसाइज नहीं है।
4: ठीक है,
5: योगा का मतलब है जुड़ना।
4: ओके,
5: आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना या हमारा शरीर और मन वो आपस में इस तरह अंतरंग हो कि हमारा जो शरीर है वो हमारा साथ दे, मन हमारा साथ दे और वो जो गोल हम अचीव करना चाह रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में, वो हमें हर तरह से हमारे साथ रहे। मन कहीं है, शरीर कहीं है तो हम किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन योगा एकमात्र एक ऐसा साधन है जो हमारे शरीर मन और आत्मा को आपस में जोड़ के रखता है।
4: जी सर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आजकल सबकी लाइफ बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, लोग कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है योगा करने का, तो आपकी इस पर क्या राय है? मतलब टाइम होना चाहिए, निकालना चाहिए या फिर हम लोग अपने काम के साथ साथ भी योगा कर सकते हैं?
5: सर इसका सबसे बड़ा ये है कि सभी के पास 24 घंटे बने हुए हैं।
4: बिल्कुल,
5: लेकिन योगा का जो टाइम असली टाइम है ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अगर हम लेट आवर्स में सोएंगे, हम मोबाइल में लगे हुए हैं, हम टीवी देख रहे हैं, रात को लेट नाइट तक सो रहे हैं, अगर हम एक समय पे सोए और हम 5 बजे अगर ब्रह्म मुहूर्त में, जैसा कि हमारे योगी आचार्यों ने बताया, ऋषियों ने बताया कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अगर हम 5 बजे उठते हैं और 6:30, 6:30, 6 बजे तक भी योगा शुरू करके 7 बजे तक वाइंड अप कर दें तो आपका दिनचर्या में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी ऑफिस 9 बजे से पहले नहीं खुल रहा है। आप 7 बजे सो के उठने के बजाय अगर उसे 5:30 बजे सो के उठें, सिर्फ अपना सोने का टाइम थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको, लेकिन वो कम नहीं करना पड़ेगा, आपके काम करने की एफिशिएंसी इतनी बढ़ेगी योग करने के बाद कि आपको वो जो टाइम आप जिस काम को करने में 4 घंटे लगा रहे हैं, 3 घंटे लगा रहे हैं, वो आप 1 घंटा पहले भी खत्म कर सकते हैं।
4: ओके,
5: तो मेरा मानना यह है कि योगा के लिए आपको स्पेशल कुछ नहीं करना, एक बार सिस्टम का हिस्सा बनना है अपने। आपने अगर एक मन में एक संकल्प शक्ति बना ली कि जी मैंने योगा डेली करना है, तो आप उसके लिए टाइम आपको बिना किसी तकलीफ के निकलना शुरू हो जाएगा।
4: ओके, तो जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश कीजिए उठने की। आप लोग जितनी जल्दी उठोगे उतना ही आप लाइफ में चेंजेस होते हुए देखोगे। और सर इसी के साथ एक सवाल आता है मेरे मन में, वो सवाल ये है कि जितने भी बिगनर्स हैं जो कि योगा शुरू करना चाहते हैं और उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो उनको कैसे शुरू करना चाहिए?
5: सर इसके लिए हमारी, मैं जैसा ही आपने बताया कि मैं योग विज्ञान एवं मानव कल्याण ट्रस्ट से हूँ और मैं जिला प्रधान हूँ, मेरा फोन नंबर मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि अगर किसी का कोई, हमारी हर सेक्टर में क्लासेस चल रही हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई भी हम चार्जेज नहीं लेते, एक सिर्फ मैट लेके आए और वो क्लास में आ जाए और नियरेस्ट क्लास का जो भी जिस सेक्टर में रहता है नियरेस्ट क्लास का वो हमारे से हम एड्रेस वगैरह उन्हें दे देंगे, वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं। पहुँच के उन्हें कुछ नहीं करना, बस उन्हें तो फिर योग करना है जैसे डायरेक्शन जैसे मिलती है उन्हें।
4: तो सर आप एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए हमारे सारे लिसनर्स के साथ ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें और पता कर सकें कि उनकी सेक्टर पे नियरेस्ट।
5: देखिए जी मेरा मोबाइल नंबर 9810485964।
4: जी तो जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, अगर आपको ये नंबर याद नहीं हुआ है तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 9810485964। अगर अभी भी नंबर याद नहीं हुआ है तो आप लोग रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम हैंडल या फिर फेसबुक पे आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और योगा के बारे में और भी बातें जारी रहेगी, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में योगा विज्ञान एवं मानव कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: योगा की जब भी बात आती है तो लोग समझते हैं कि योगा सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे मिथ हैं जो हम सब अपने मन में धारणाएं बना के बैठे हैं कि योगा ऐसे होगा या योगा वैसे होगा, मगर मैं बोलना चाहूंगा कि योगा से ही होगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर ओके अग्रवाल जी, जो कि है जिला अध्यक्ष योग विज्ञान एवं मानव कल्याण ट्रस्ट के। सर, एक सिंपल सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जैसे योगा के बारे में बात करते हैं तो अपने दिन की दिनचर्या की शुरुआत कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू?
1: देखिए जी, अगर हम सुबह 5 बजे उठे हैं या जो भी अपना एक उठने का टाइम आपने निश्चित किया, उसके बाद आप गुनगुना पानी करके 2 गिलास 1.5 गिलास जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, आपने कभी भी पानी को खड़े होकर नहीं पीना है।
0: ओके।
1: हमेशा बैठ के पीना है। गुनगुने पानी लिया गिलास में, घूंट भरा, मुंह में चलाएं और सटकना है
0: जी।
1: आप जितने भी पशु पक्षी जीव जगत के जितने भी प्राणी हैं, अगर आप शेर को भी पानी पीते देखेंगे तो वो पहले जीभ को लगाता है फिर सटकता है। ऐसे जल्दी जल्दी फ्रिज से पानी निकाल के बोतल लिया और ठंडे पानी को हमने
0: जी
1: पी लिया, ये एक बहुत ही गलत तरीका है पानी पीने का।
0: ओके।
1: अगर आपने सुबह सबसे पहले 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी गुनगुना करके पीना है
0: जी,
1: बैठ के पीना है, घूंट भर भर के पीना है, ताकि मुंह की जितनी भी लार है वो आपके पेट में जाए, और वो जो लार है वो अल्कलाइन होती है बेसिकली नेचर में। पेट में जो एसिड बनता है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे बेस्ट वो है सिस्टम हमारा
0: जी।
1: सबसे पहले तो यही काम करना है, उसके बाद फिर फ्रेश होइए 2-3 एक्सरसाइज करके, ताकि पेट में जितने भी मल जमा हुआ है, जातीय दर्द जो जमे हैं, वो सारे बाहर निकले आपके
0: जी।
1: जब वो बाहर निकल जाएंगे आप में सुस्ती कम होगी और आपका जो चेहरे पे जो मुस्कान है और आलस है वो सब खत्म हो जाएगा,
0: एनर्जी बढ़ जाएगी,
1: एनर्जी बढ़ेगी आपकी। आप फिर पार्क में जाओ, अगर नहा के जा सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहा नहीं सकते टाइम नहीं है तो आप बिना नहा के चले जाएं और योग करें। योग करने के बाद जब आप घर पे आए तो कोई भी आप फ्रूट सुबह सिर्फ आपने एक फल फ्रूट लेना है स्टार्टिंग जो, क्योंकि विटामिन सी मॉर्निंग में आपको ज्यादा जरूरत है शरीर को, सुबह आपको वो फ्रूट से मिलेगा आपको।
0: okay.
1: आपने फ्रूट लिया, उसके कुछ देर के बाद आप नहा धोके और आपने जैसे तैयार हुआ तो ब्रेकफास्ट में आपने कोई भी तली हुई चीजें नहीं खानी है
0: जी।
1: क्योंकि ऑलरेडी हमारे शरीर में काफी एसिड बना होता है और अगर हम एसिडिक भोजन करेंगे तो वो एसिड को और बढ़ावा देगा, जिससे हमारे जोड़ों में दर्द और भी जितनी भी बीमारियां वो शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसलिए आपने कोशिश करना है कि आपने जूस पीना है, खीरे का रस लो, घी का रस लो, सफेद पेठे का रस लो, ये सारे अल्कलाइन फूड है।
0: ओके।
1: और उसके बाद 1 चपाती 2 चपाती जैसे भी आपने खानी है खाएं वो। फिर आपका लंच का टाइम आ गया, लंच के समय आपने अच्छा रहेगा कि आप एक गर्म पानी पहले गिलास पी लें, आधा घंटे के बाद फिर लंच करें। लंच में आप चोकर युक्त आटे की रोटी लें, साथ में सब्जियां जो भी आपने बनाई है उससे पहले थोड़ा सैलेड ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है। दोपहर में फिर उसके बाद आपका 3-4 बजे का टाइम आ गया कि आप चाय पीते हैं
0: जी।
1: चाय और कॉफ़ी, आज ये बड़ा मतलब ट्रेंड चल चुका है कि कॉफ़ी पी रहे हैं जी, हम चाय पी रहे हैं, लेकिन इससे एसिड कितना शरीर में बढ़ता है, ये सारे एसिडिक चीज़ें हैं
0: जी।
1: और जितने भी जोड़ों की समस्याएं हैं, जिसमें जोड़ के दर्द क्या चीज़ है, ये सब अगर हम बात करें, जोड़ों का दर्द हो गया जी, ये इसका समस्या क्या है कि जितना भी हम एसिड ले रहे हैं, इनटेक हमारा बहुत ज़्यादा एसिड है, हमारे शरीर में ऑलरेडी एसिड बन रहा है, हमें 70% अल्कलाइन फूड खाना चाहिए और 30% सिर्फ एसिडिक लेना चाहिए। एसिड हम ज़्यादा ले रहे हैं वो हमारे जोड़ों में जो कार्टेज होती है उसके इर्द गिर्द जमना शुरू हो जाता है एसिड, और वो उसे रोड कर देता है,
0: इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है।
1: तो जो कार्टेज हमारी एक बार घिसने लगी वो घिस गई, तो उसके बाद फिर हड्डी टूट हड्डी जब टच करते तो वो हड्डियों का दर्द है बेसिकली। तो इसलिए हमें एसिडिक भोजन कम करना है, अल्कलाइन फूड ज़्यादा लेना है। इसी तरह रात को सोने से पहले आपने 8 बजे तक अपना वाइंड अप कर देना है, सोने के और खाने के बीच में 2 घंटे का गैप रखना है ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए,
0: ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि जब हम लोग सो रहे होते हैं उस टाइम हमारा पेट,
1: वो हमारी जो पाचन तंत्र है वो स्लो हो जाता है, और स्लो होने की वजह से वो सड़ता है फिर खाना
0: जी, जी, जी।
1: सड़ गया तो वो होगा क्या कि वो गैस बनेगी तो वो जो हमारा लिक्विड है फ्लूड है जो जोड़ों में वो सूखने लगता है
0: जी जी जी। सर, इसी के साथ जैसे आपने खाने की बात करी, सवाल सिंपल सा है कि खाने के साथ अक्सर लोग कहते हैं कि हमें पानी चाहिए, तो क्या खाने के साथ पानी पीना चाहिए?
1: सर, खाने के साथ पानी जहर का काम करता है।

0: काम यह है कि जब भी हमने भोजन किया वो एसिड एकदम जलने लगता है और उस भोजन को पकाता है, वो पकाने के बाद रस बनता है उससे
1: जी।
0: लेकिन अगर हमने पानी पी लिया तो वो जो जठर अग्नि है वो एकदम स्लो हो जाएगी
1: जी।
0: इसी तरह जैसे गैस जल रही है कोई खाना पकाने के लिए या दूध गर्म करने के लिए और आप उसमें पानी डाल दें तो बुझ जाएगी वो गैस और होगा क्या, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ये क्योंकि पेट के अंदर है भोजन हमारा और वो पक भी नहीं रहा, पानी डाल लिया आपने, पानी पी लिया, तो क्या होगा, वो सड़ेगा पड़ा पड़ा
1: जी।
0: सड़ेगा तो उससे जितनी भी बीमारियां हमारे बीच में हार्ट अटैक की समस्या बनती है या जोड़ों में दर्द की समस्या बनती है, ये सारी उसी का मेन वजह है।
1: तो खाना खाने के कितनी देर बाद पानी,
0: तो खाना खाने के एक घंटे के बाद पानी पीना चाहिए और खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए।
1: ठीक है सर,
0: खाने के दौरान नहीं पीना चाहिए।
1: यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मेरा है कि अक्सर हम लोग इंडियन डाइट में जब देखते हैं तो हमारे यहाँ दाल बहुत बनती है, तो दाल में भी तो पानी है, तो उससे कोई असर नहीं पड़ता
0: सर? जैसे मॉर्निंग का टाइम है आपका
1: जी,
0: आप खाना खा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, उस समय आप जूस ले सकते हैं।
1: ओके,
0: जूस में भी पानी है
1: जी।
0: लेकिन पानी का अपना गुण जो है वो खत्म हो जाता है। दोपहर में हम जब खाना खा रहे हैं तो छाछ पिए हम
1: जी,
0: छाछ में भी पानी मिक्स करके पी सकते हैं हम
1: जी।
0: लेकिन खाली पानी का गुण अलग है, लेकिन जिस चीज में भी पानी मिक्स हो गया उसका गुण उसके हिसाब से हो गया। रात को दूध पिए आप,
1: ओके,
0: तो दूध में भी पानी होता है बेसिकली। तो पानी का गुण अलग से अलग है और उनके साथ अलग,
1: जब वो किसी चीज में मिल जाता है तो उसके गुण अलग हो जाते हैं। तो चलिए इसी के बारे में और योगा के बारे में और भी बातचीत होती रहेंगी, मगर थोड़ी देर बाद आप सभी के लिए गाना रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ओके अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष योग विज्ञान एवं मानव कल्याण ट्रस्ट।

0: जब भी योगा की बात आती है तो अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि यार ये तो हमसे नहीं होगा, और जितने भी यंगस्टर्स हैं वो अक्सर योगा को बोरिंग मानते हैं। मगर ये सारे मिथ आज हम तोड़ने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं मुझे, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ओके अग्रवाल जी, जो कि हैं जिला अध्यक्ष योग विज्ञान एवं मानव कल्याण ट्रस्ट से। तो सर, यहाँ पर एक सवाल आता है कि आजकल के जो यंग जनरेशन है वो कहते हैं कि योगा ना बोरिंग सा है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं?
1: देखिए जी, ये हमारे सिलेबस का योग हिस्सा होना चाहिए
0: जी।
1: सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे सही एज जो योग की है वो 12 साल है।
0: ओके।
1: कि 12 साल के बाद हमें योग स्टार्ट कर देना चाहिए, और 12 साल का बच्चा मतलब कि छठी या सातवीं में हुआ वो, तो उसमें कोशिश हमें करनी चाहिए, सरकार को चाहिए कि 6-7 क्लास में कोई योग का एक सब्जेक्ट उसमें इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, और ये जो पीटी होती है उनकी, या उसमें उसमें वीक में 1-2 दिन जरूर योगा डे रखना चाहिए ताकि योग करें। योग बहुत लाभकारी है
0: जी।
1: योग का कोई कंपैरिजन नहीं है। योग कम से कम खर्चे में, आपके खर्चा नहीं आ रहा है आपके उसके ऊपर। आप जिम कहीं भी जाएंगे तो जिम में आपने 2,000 रुपये दिए, 3,000 रुपये दिए, लेकिन योग में आपको कहीं भी एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। योग तो बेसिकली हम नेचर को, नेचर में जो ऊर्जा है और हमारे अंदर जो सोई हुई ऊर्जा है, उन दोनों को मिलाने का काम योग करता है
0: जी।
1: कि हमें फ्री में वो ऊर्जा मिल रही है जो हमारी सोई हुई है
0: जी।
1: और एक बार ऊर्जा बढ़ी, आज के बच्चे हैं अगर मान लीजिए वो पढ़ने लग रहे हैं और वो जिम में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है उससे, शरीर तो बिल्टअप हो रहा है उनका, लेकिन उसमें वो प्रोटीन भी ले रहे हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ले रहे हैं जो कि शरीर को नुकसान करती हैं। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं
0: जी।
1: मारपीट शुरू हो जाती है, रोड रेज कितनी बढ़ रही है हमारी
0: जी।
1: और समस्याएं हमारी उसकी वजह, क्योंकि मसल्स तो बने हैं लेकिन मन हमारा कंट्रोल में नहीं है
0: जी।
1: लेकिन योग एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसमें हमारा मन, आसन जो हम कराते हैं वो इसलिए कराते हैं कि हमारा शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो, हम हर तरह के आसन कर सकें, हमारे जोड़ों में भी जो विकार पैदा हो गए वो ठीक हो, और जैसे शरीर हमारा बैठने लग जाएगा, शरीर एक जगह स्टेबल होने लगेगा, हमारा मन भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो मन और शरीर को कंट्रोल करने के बाद ही हमारी आत्मा परमात्मा के जुड़ने का काम करेगी। और अगर हमने छोटी उम्र में शुरू कर दिया, जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें याददाश्त बढ़ेगी उनकी, उनमें इतने गुण, संकल्प शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम अच्छी चीज बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, बार बार हम समझ रहे हैं। योगा एक आध्यात्मिक रास्ता है जिसमें अच्छी चीज पढ़ाई जा रही है, अच्छी चीज बताई जा रही है, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बड़ों के आदर सत्कार करना चाहिए, तो बार बार जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी संकल्प शक्ति उसी तरह की बनेगी
0: जी।
1: उनकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि जब हमारे प्राणायाम है, प्राणायाम से जब सिर को ऑक्सीजन मिलेगा, बार बार मिल रहा है, और ऑक्सीजन मिलेगा साथ में ब्लड का सर्कुलेशन सिर की तरफ बढ़ेगा, तो उससे याददाश्त बढ़ेगी उनकी, तो उनकी जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी जागृत होती हैं योगा करने से। योगा करने के बाद बच्चे बहुत अच्छा, उनकी अगर याददाश्त बढ़ती है, उन्होंने एक टॉपिक एक दफा पढ़ा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो टाइम की सेविंग हुई।
0: बिल्कुल।
1: उस टाइम की सेविंग को आप और दूसरे काम में लगा सकते हो। लेकिन जिम करने के बाद सबसे पहले तो आप सोओगे, क्योंकि शरीर में इतनी थकावट पैदा हो जाती है। मैं कोई डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं योगा के फायदे बता रहा हूँ कि योग और जिम दोनों एक अलग अलग रास्ते हैं, योग का कोई कंपैरिजन नहीं। मेरा ये पर्सनल एडवाइस है, मैंने भी देखा है, मैं कर भी रहा हूँ, कि योगा करने से बच्चों का जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी, उनकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी, उनका जीवन जो समर्पित होना चाहिए बड़ों के लिए, जो अच्छी आदतें पढ़नी चाहिए वो भी सब बढ़ेंगी, मतलब सभी अच्छी आदतें, सभी दोषों से मुक्त हो जाएगा वो बच्चा जो योगा स्टार्टिंग करते हैं
0: जी। सर, इसी के साथ साथ जैसे आपने बोला कि लोग, बच्चों की जो पढ़ने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी, तो क्या फिजिकल फिटनेस के साथ साथ योगा मेंटल फिटनेस भी डेवलप करता है?
1: ये मेंटल, जो हमारा जो मन की शक्ति हम बता रहे हैं, ये मेंटल फिटनेस है बेसिकली। जितने भी प्राणायाम बने हुए हैं, हम अनुलोम विलोम करते हैं, हम लंबे गहरे सांस का अभ्यास करते हैं, हम कपाल भाती है, कपाल भाती का क्या मतलब है, कपाल भाती जो दिमाग की शुद्धि करना। दिमाग में जितने विकार हैं, जैसे हम टीवी देख रहे हैं, हम जिम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जिद्दी स्वभाव बन जाए, हम किसी का कहना ही नहीं मानते, हम इतना ज्यादा हर चीज के लिए अड़ियल हो गए हैं कि हम बड़ों की कोई सम्मान ही नहीं रहा। लेकिन जब योग करेंगे आप, योग करने के बाद आपके याददाश्त भी बढ़ेगी, आपकी आपके सिर के

0: रानी तुझे पता है कल पड़ोस वाले भैया का एक्सीडेंट हो गया।
1: अरे एक्सीडेंट पर कैसे हुआ?
0: बस क्या बताऊं, इस तपती धूप में बाइक लेके दोस्त के घर जा रहे थे, ना साथ में वाटर बॉटल और ऊपर से इतनी गर्मी कि उन्हें चक्कर आ गए और बैलेंस बिगड़ गया।
2: इस गर्मी टू व्हीलर चलाते वक्त अपना खास ध्यान रखिए। पीक हीट आवर्स में अननेसेसरी ट्रेवल अवॉइड करिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए और सेफ राइड करिए, क्योंकि घर पहुंचना जरूरी है।

0: अक्सर हम लोग अपने वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पाते और बिजी स्केड्यूल में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ और आज हम वर्ल्ड योगा डे के बारे में योगा के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ओके अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष योग विज्ञान एवं मानव कल्याण ट्रस्ट से। तो सर, एक सवाल यहाँ पर आता है कि जो लोग कहते हैं कि हमारा काम इतना ज्यादा है, 8 से 10 घंटे हम लोग चेयर पर बैठे रहते हैं, तो क्या ऐसा कोई योगा है जो कि वो लोग बैठे बैठे कर सकते हैं या फिर वो थोड़ी देर 5 मिनट के लिए उठ के कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू?
1: देखिए जी, मेरे पास कई बच्चे लोग आते हैं
0: जी
1: क्लास में और डिस्कस करते हैं जी मुझे सर्वाइकल हो गया जी, जी बैठे रहते हैं जी, मुड़ने का भी टाइम नहीं मिलता, और उनके रीढ़ की सारी समस्याएं जो होती हैं वो हो जाती हैं उनको, और एज भी कोई खास नहीं है कि 30 साल 28 साल 25 साल। जी। तो मैं सभी को एक ही चीज़ एडवाइज करता हूँ, अगर योगा में नहीं आ पा रहे हैं, टाइम नहीं है आपके पास, तो उस केस में आप हर एक घंटे के बाद आपको किस तरह की समस्याएं पैदा होंगी पहले तो मैं ये समझा दूं कि क्या क्या समस्याएं जनरली पैदा हो रही हैं जो बैठ बैठ के आगे झुक के कंप्यूटर पे काम करने लग रहे हैं। या तो सर्वाइकल की पेन शुरू हो जाएगी आपको, या कमर में दर्द होगा, लंबर रीजन में दर्द होगा, तीन तरह की समस्याएं जनरली देखी गई हैं। आप सर्वाइकल की जो समस्याएं अगर हम बात करें, तो जब आप झुक के पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपको हो जाता है, तो उसमें क्या है, गर्दन में दर्द हो गया, गर्दन में जकड़न पैदा होगी, चक्कर आने शुरू हो गया जी। तो ये सब समस्याएं पैदा होती है, तो उस केस में उसका रीज़न, थोड़ा साइंटिफिक रीज़न क्या है कि जो हमारी 7 गोटियाँ सर्वाइकल की होती हैं, रीढ़ में 33 गोटियाँ होती हैं टोटल जी। तो सर्वाइकल की जो 7 गोटियाँ हैं, 7 गोटियों में 2 गोटी के बीच में एक गद्दी होती है
0: जी।
1: जब आगे झुके रहोगे तो पीछे की जो गद्दी है उसमें खिंचाव पैदा होगा, खिंचाव पैदा होने से वो सूजन पैदा होगी और वो दर्द पैदा करेगी। तो उस केस में हमेशा थोड़ी देर, 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट के लिए गर्दन को थोड़ा पीछे कर लीजिए, आप थोड़ा हाथों को घुमा लीजिए, थोड़ा रोटेट करिए, तो 5 मिनट करके फिर आप काम शुरू करो, ना कि लगातार करो
0: जी।
1: तो आप अगर बीच बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक करके और छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे तो उस केस में ये समस्या पैदा नहीं होगी आपको।
0: तो जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स मुझे सुन रहे हैं, सब लोगों के लिए यही एडवाइस है कि आप हर एक घंटे में सिर्फ 5 मिनट के लिए उठिए, अपने हाथ पैरों को घुमाइए, इससे गर्दन को थोड़ा सा पीछे करिए। और सर, इसी के साथ साथ आजकल वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपको भी पता है कि इंसान आलस से भरता जा रहा है, क्योंकि घर पर बैठे हैं वो कहीं उठने को भी रेडी नहीं होते, वो आराम से अपने बेड पे लेट के लैपटॉप चलाते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
1: इसके लिए देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर आदमी को हेल्थ कॉन्शियस तो सभी को होना चाहिए। अगर वर्क फ्रॉम होम है, आप एक टेबल बनाइए, आप जो कुर्सी है वो भी आरामदायक नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल सीधे होके बैठना है, आपने कमर सीधी करके बैठना है, आपने आगे झुक के काम नहीं करना है, बेड पे लेट के नहीं काम करना है, उससे आपकी आंखें भी बैठ जाएंगी। और जैसा बताया गया अभी थोड़ी देर पहले कि आप 1 घंटे के बाद उठो, थोड़ा सा हिलो डुल्लो और उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, जो छोटी छोटी सर्वाइकल की एक्सरसाइज है, कमर दर्द की एक्सरसाइज है, उतना करो, फिर बैठ जाओ। और आपने बार बार खाने का, जैसे घर में बैठे रहते हैं जी, कभी ये खा लिया कभी ये खा लिया, वो बहुत ही हार्मफुल है बार बार खाना। आप अपना खाने का शेड्यूल बनाओ, उसके हिसाब से अपनी डाइट प्लान करो और खाओ, काम के साथ साथ थोड़ी एक्सरसाइज भी जी करते रहें।
0: तो काम के साथ साथ थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करते रहें। और सर, इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा मैं महिलाओं के बारे में बात करना चाहूँगा, तो महिलाओं के लिए योगा का सबसे बड़ा हेल्थ बेनिफिट क्या है आपके अकॉर्डिंग?
1: देखिए जी, योगा किस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए योग से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, योग बेस्ट है। जो डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं है, हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, ये हर महिला में सामान्य प्रॉब्लम देखी गई है। आप मोनोपोज का टाइम आएगा तो उसमें उनके सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं
0: जी।
1: और मोनोपोज के बाद और उनमें मोटापा बढ़ना, थायराइड की समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह की समस्याओं को देखते हुए योग एक परमानेंट उसका सलूशन है।
0: ओके।
1: तो महिलाओं को योग के साथ जरूर जुड़ना चाहिए और 35-40 साल के बाद तो जरूर जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे योग में कई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं
0: जी। तो जितने भी फीमेल्स हमें सुन रही हैं इस टाइम, कहीं से भी अगर आप सुन रहे हैं, तो आप लोगों को योगा अभी से शुरू करना चाहिए अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। और सर, इसी के साथ साथ एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान भी योगा करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो ये कितना सेफ है?
1: कोई भी लेडी अगर प्रेग्नेंट है सबसे पहले तो उसकी क्या स्टेज चल रही है वो चेक करना जरूरी है। दूसरा ये है कि कभी कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग हो, आगे झुकने का कोई है, पेट पे कोई भी दबाव नहीं आना चाहिए उनका। और प्राणायाम तो सेफ है हमेशा, प्राणायाम आप गहरे लंबे सांस ले रहे हैं, आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, ये तो किसी भी स्टेज में आप बैठ के कर सकते हैं। आपने कोई भी फास्ट जैसे कपाल भाती है जिसमें पेट पे जोर पड़ता है, या हमारा अग्निसार प्राणायाम है, ये नहीं करना है। ऐसे प्राणायाम भी कर रहे हैं जो सेफ है बिल्कुल।
0: तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सब लोग आज से ही योगा स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। गाइडेंस के लिए हमारे साथ ओके अग्रवाल जी, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर है 9810485964। अगर आपको ये नंबर याद नहीं हुआ है कोई इशू नहीं, आप लोग हमें रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कॉन्टैक्ट करके इनका नंबर हमसे ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ और भी बातें होंगी, मगर थोड़ी देर बाद आप सभी के लिए एक छोटा सा गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: रेडियो महारानी जी 9.6 पर मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ और इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर हम लोग बातें कर रहे हैं। एंड मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ओके अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष योग विज्ञान एवं मानव कल्याण ट्रस्ट से। तो सर स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड ताकि जितने भी मिथ हैं या फिर फैक्ट हैं सब कुछ सामने आ जाए। तो एक सवाल, योगा सिर्फ फ्लेक्सिबल लोग कर सकते हैं क्या? हाँ ना,
1: सभी के लिए जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी तो पैदा होगी होगी, साथ में मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी।
0: क्या योगा एक रिलीजियस प्रैक्टिस है?
1: नहीं, ऐसा नहीं है।
0: ओके, योगा से वेट लॉस नहीं होता ऐसा लोग कहते हैं?
1: योगा से वेट लॉस होगा
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आपके जितने भी सिस्टम, आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होगा। जो आपने खाया अगर उसका डाइजेशन कर लिया तो आपको कभी भी मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो ये योगा से सबसे बड़ा हेल्थ बेनिफिट है।
0: क्या योगा सिर्फ बुजुर्गों के लिए है?
1: ये बच्चों, मैंने अभी बताया आपको, 12 साल की उम्र से स्टार्ट कर देना चाहिए हमें। बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल है।
0: क्या योगा एक घंटा करना जरूरी है?
1: ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप 15-15 मिनट के 5, जैसे भी आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आप अपना एक टाइम प्रोग्राम बना लें। 15 मिनट में मुझे ये करना है, 15 मिनट में मुझे ये करना है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं।
0: सर सुबह योगा करना चाहिए या फिर शाम को?
1: मॉर्निंग में, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होता है इसलिए मॉर्निंग में करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन आप इसे शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे पहले खाना खाना जरूरी है।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ साथ सर आखिरी सवाल, एक योगा पोज जो हर इंसान को करना चाहिए?
1: सूर्य नमस्कार सभी को करना चाहिए। सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें 12 आसनों का संग्रह है और पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है।
0: जी सर, मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपकी योगा जर्नी कैसे शुरू हुई थी?
1: सर मेरी योगा जर्नी मेरी वाइफ से स्टार्ट हुई है। हमारे 28 सेक्टर में एक क्लास स्टार्ट हुई थी
0: जी।
1: तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि जी आपको योगा ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत भाग दौड़ की है मैंने अपनी लाइफ में, बिजनेस में और आगे काफ़ी बढ़े हैं। मैं डायबिटिक हो गया था
0: जी,
1: और जब मैंने देखा कि मैं इतनी भाग दौड़ दिन भर करता हूँ, मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया कि आप योगा ज्वाइन करो। मैंने तब योगा ज्वाइन किया, लेकिन मैंने देखा कुछ ही टाइम के बाद मेरी बिल्कुल लाइफ बदल गई है। मैं कभी कहीं भी स्टेज पे नहीं बोल पाता था, आज मैं हर जगह बोल लेता हूँ। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है, शांत जीवन हो गया है। मेहनत जितनी मर्जी करें लेकिन शाम तक मैं नहीं थकता। मैं बिजनेस चला रहा हूँ, बिजनेस में अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता मॉर्निंग में, हम आजकल जैसे मैंने फरीदाबाद में भी जोड़ों के दर्द पे एक शिविर लगाए हुए हैं, अभी 37 सेक्टर में चल रहा है हमारा शिविर, तो उसमें भी हम अपना टाइम पूरा लगा रहे हैं। तो बिजनेस के साथ साथ मैं योगा में अपना जो 2 घंटे 1.5 घंटा मॉर्निंग में अवेलेबल है मेरे पास, मैं वो पूरा योगा को दे रहा हूँ।
0: जी सर, इसी के साथ साथ इंटरनेशनल योगा डे पर हमारे लिसनर्स के लिए एक मैसेज?
1: सर मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि योग को जीवन का हिस्सा बना लें। जीवन का आधार है, एक अच्छे जीवन का आधार है। मैं ये बोलूँगा कि आपने अगर योग को अपने जीवन में धार ले आए अपने जीवन में, तो आपको किसी तरह का रोग नहीं होगा। आपने पूरी जीवन खूब कमाया, खूब पैसा, धन दौलत, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ लिया, लेकिन वो अंत में अगर आप रोगी होगे तो उस जीवन को कैसे भोग सकते हो आप? अगर आपने योगा के साथ अपने जीवन को साथ साथ मेहनत की प्लस योगा भी किया, तो योगा के साथ अच्छा जीवन आपको मिलेगा, सुखदायक जीवन मिलेगा, और आपने जो कमाया उसे आप अंत तक भोग सकते हैं। अगर आपने वो कमा के डॉक्टरों को दे दिया या आपने अपने डिफरेंट जगह लगा दिया तो वो वेस्टेज है। तो मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि योग के लिए एक अपने अंदर एक संकल्प शक्ति बनाएं कि हमने आज से योगा स्टार्ट करना है बस।
0: तो ये चीज़ आप लोगों को भी अपनी लाइफ में करनी है। अगर आपको लाइफ में सिर्फ अपनी एक आदत ऐड करनी है जो फिजिकल हेल्थ, मेंटल पीस और पॉजिटिविटी तीनों दे, तो वो सिर्फ योगा से ही होगा,
1: मिल सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू वेरी मच, सभी लिसनर्स का धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद तभी दूंगा जब सभी योग के साथ जुड़ जाएंगे।
0: बिल्कुल, एंड सभी लिसनर्स को थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ जुड़े। और रेडियो महारानी 89.6 की तरफ से आप सभी को योगा डे की, विश्व योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी के साथ साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
2: कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुतु और रंगों की बरखा है, खुशबू की।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियां लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आप सबने हमारे इस कार्यक्रम में अंगदान, उतक दान और देहदान से जुड़े लोगों के अनुभवों को सुना है तथा इन विषयों से जुड़े डॉक्टर्स के द्वारा दी गई जानकारी ली है। हमारे देश में उतक दान की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग आई डोनेशन और स्किन डोनेशन के बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो उतक दान से जुड़ी जानकारी देंगे, तो सुनते रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: एक बार फिर आप सभी का ऑर्गन इंडिया के खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत है। आज हमारे साथ ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हैं और वो बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से, जो हमें स्किन डोनेशन से जुड़ी खास जानकारी देंगे। तो चलिए उनके पास चलकर बात करते हैं।
1: धन्यवाद पायल। दोस्तों, हम हमेशा आपसे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बात करते हैं और उनके विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम खास तौर पे स्किन यानी कि त्वचा के प्रत्यारोपण के बारे में लेके आए हैं। दोस्तों, हमने अपने पहले के कई कार्यक्रमों में टिश्यू डोनेशन यानी कि ऊतक दान के बारे में बताया है और स्किन डोनेशन भी एक तरह का ऊतक दान ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी, जो कि बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक प्लास्टिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हैं और भोपाल शहर के जाने माने विशेषज्ञों में इनकी गिनती होती है। डॉक्टर राठौर, मैं सभी दर्शकों और ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ बांट सकूं और ऑर्गन इंडिया के इस ऑर्गन डोनेशन अभियान का हिस्सा बन सकूं, मुझे बहुत खुशी है।
1: डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि स्किन डोनेशन क्या होता है, स्किन ट्रांसप्लांट या ग्राफ्टिंग किस तरह के मरीजों के काम में आती है।
2: हाँ देखिए, जिस तरह आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, उसी तरह स्किन ट्रांसप्लांट होता है। स्किन ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी और व्यक्ति की स्किन को यदि मरीज में दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है तो उस चीज को हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो एक अलग है। स्किन ग्राफ्टिंग में पेशेंट की ही स्किन पेशेंट के घाव भरने के लिए लगाई जाती है और स्किन ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन को पेशेंट में लगाया जाता है तो उसे हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। स्किन ट्रांसप्लांट बहुत ही कारगर मेथड है, स्पेशली बर्न वाले पेशेंट्स में, जिनमें जो है अधिक डिग्री का और अधिक मात्रा में बर्न होता है। जैसे कि आप समझिए कि यदि किसी को 60-70% का बर्न है तो उसके पास इतनी अवेलेबल स्किन नहीं है कि हम उस घाव को जो कि उस बर्न के बाद हुआ है उसको स्किन से भर पाए, तो उन कंडीशंस में हमें स्किन डोनर्स की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत एक्सटेंसिव ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी जो है स्किन डोनर की हमें जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि एसिड विक्टिम्स जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी एक्सटेंसिव बर्न होता है, उसमें भी स्किन डोनेशन की बात होती है। यदि आप आंकड़ों की बात करें तो साल भर में लगभग 10 लाख लोग जलते हैं और कम से कम 3-4 लाख लोगों को स्किन डोनेशन से बहुत हेल्प मिलती है और इनको होने वाले संक्रमण के खतरे और मृत्यु का जो खतरा है उसे स्किन डोनेशन के माध्यम से टाला जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि स्किन डोनेशन किस तरह से किया जाता है।
2: देखिए, स्किन डोनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइव डोनर और आफ्टर डेथ दोनों तरीके से स्किन डोनेट किया जा सकता है। लाइव डोनर का मतलब है कि कोई भी जिंदा आदमी, चाहे वो उस पेशेंट का रिश्तेदार हो या फिर कोई दोस्त हो या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो स्किन डोनेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, कोई भी 18 साल का व्यक्ति जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है स्किन को डोनेट कर सकता है। दूसरी बात आती है कि किस किस तरह से हम और कहां कहां से स्किन ले सकते हैं। जनरली हम बॉडी के हिडन पार्ट मतलब छुपे हुए भागों से स्किन लेते हैं, जैसे कि थाइज हो गई या फिर बटक्स वाले रीजन हो गए, ताकि आपको स्किन हार्वेस्ट करने के बाद भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो डिफॉर्मिटी है वो आपके कपड़ों में ढकी हुई रहती है। कोई बहुत मेजर विकृति इसमें नहीं बनती है क्योंकि इसमें स्किन का सुपरफिशियल जो पार्ट है वो लिया जाता है। स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस का आधा भाग लिया जाता है, तो वो नीचे जो थाइस पे आपके घाव बनता है वो अपने आप 21 डेज में ऑटोमेटिकली हील अप हो जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ विद इन 6 आवर्स जो है हम स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। स्किन को हार्वेस्ट हम दोनों लेग से करते हैं, दोनों अपर लिम्स मतलब ऊपर के दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया पे ड्रेसिंग कर दी जाती है, तो आपको बॉडी भी बहुत ज्यादा म्यूटिलेटेड कंडीशंस में नहीं दिखती है, ताकि आपके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो भी अफेक्ट नहीं होंगे।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और थोड़ी ही देर में हम वापस आके अपनी इस बात को कंटिन्यू करेंगे।

वॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम बात कर रहे हैं भोपाल शहर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील राठौर जी से। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम जिंदा रहते हुए और मरने के बाद दोनों तरह से स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो आपने बताया कि स्किन में जो दो लेयर्स होती हैं उसमें से सिर्फ हम ऊपरी लेयर का इस्तेमाल करते हैं, सुपरफिशियल लेयर लेते हैं। तो जब हम जिंदा रहते हुए अगर अपने और स्किन को डोनेट करते हैं जहां से हम स्किन ले रहे हैं, तो उस पार्ट पे जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो चीजें नहीं दिखती क्या?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्किन है उसको ऊपरी लेयर लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी जो है, स्किन जो है वो बॉडी का आउटर कवरेज है, तो स्किन की ऊपरी जब हम लेयर लेते हैं तो उसमें अंदर का कोई भी मांसपेशी या ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता और स्किन एज ए बॉडी कवर यूज किया जाता है या बॉडी कवर यूज होता है। इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन यदि आप स्कारिंग और डिफॉर्मिटी की बात करें कि वो गंदा दिखेगा, सुपरफिशियल लेयर लेने की वजह से वहां पे कोई सिग्निफिकेंट स्कार भी नहीं आता है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हम बॉडी के जो है हिडन पार्ट से लेते हैं, तो आपको इस बारे में कि कोई शारीरिक कमजोरी होगी, कोई मेजर डिफॉर्मिटी होगी या कोई बहुत भद्दा सा स्कार आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम मरने के बाद भी अपनी स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो मरने के बाद हम कितनी देर के अंदर, आपने बताया कि 6 घंटे के अंदर हम स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो उन 6 घंटों में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, अगर ऐसी कोई एडवाइस आप देना चाहें?
2: स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें इवन मरने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा कुछ एडिशनल सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कोई भी स्पेशल प्रिकॉशन आपको रखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि जिस पेशेंट की आप स्किन हार्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर जो डोनर आपके पास अवेलेबल हो वो किसी भी तरह से कुछ इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, कोई स्किन का इन्फेक्शन, कोई स्किन का ट्यूमर या फिर कोई स्किन की गंभीर बीमारी उस पेशेंट को ना हो। यदि उस पेशेंट को इस तरह का कोई भी बीमारी नहीं है तो 6 घंटे के अंदर हम किन्हीं भी कंडीशंस में स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट स्पेशल प्रिकॉशन।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर जिसको हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनसे हमारा ब्लड ग्रुप या टिश्यू मैच होना जरूरी है, HLA मैच होना जरूरी है, तभी हम अपना कोई ऑर्गन रेसिपिएंट को दे सकते हैं, तो क्या स्किन डोनेशन के टाइम पर भी ब्लड ग्रुप का मैच होना या टिश्यू मैच का होना बहुत जरूरी है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। स्किन ट्रांसप्लांट या स्किन डोनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यही है कि स्किन डोनेशन के लिए किसी भी तरह का टिश्यू मैच या HLA मैचिंग करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल

0: तक स्टोर कर सकते हैं। इवन नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 21 डेज के लिए जो है स्किन को स्टोर कर सकते हैं। तो स्किन डोनेशन में ये जरूरी नहीं कि जब आप डोनेट करने जा रहे हैं या आपका पेशेंट स्किन को डोनेट करने जा रहा है तो इमीडिएट रिसिपिएंट की नीड हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस स्किन को 5 साल तक किसी भी और मरीज के लिए यूज किया जा सकता है, इमीडिएट रिसिपिएंट की इसमें नीड नहीं।
1: डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर से, और कुछ ही समय में हम वापस आएंगे और अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे।
2: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार है। मैं हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। सर, जब हम लोगों से इस बारे में बात करते हैं स्किन डोनेशन के बारे में, तो हमारे सामने इससे जुड़े कई गलत तथ्य और भ्रांतियां सामने आती हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक विशेषज्ञ के तौर पर आप इनके बारे में सही जानकारी हमारे श्रोताओं को बताएं। सबसे पहला जो मिथ आता है, वो सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन डोनेट करने पे हमारी बॉडी या हमारी उस बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट विक्षिप्त हो जाता है, म्यूटिलेटेड हो जाता है, तो क्या ये सही है?
2: देखिए, ये मिथ जो है, ये भ्रम जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्किन डोनेशन में जो स्किन ली जाती है उसकी ऊपरी परत ली जाती है, उसको परत लेने के बाद जो शरीर का जो घाव रहता है वो 2 से 3 हफ्ते में बॉडी उसको अपने आप हील कर लेती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, हल्का फुल्का निशान जरूर रह सकता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जनरली स्किन डोनेशन के टाइम हम ट्राई करते हैं कि बॉडी के हिडन पार्ट से स्किन ली जाए, जैसे आपके थाइस के पीछे का एस्पेक्ट जो आपके कपड़ों के बाहर जो है जनरली दिखाई नहीं देता, और स्किन अकेले लेने की वजह से उनके अंदर के जो मांसपेशियां या फिर जो ऑर्गन्स हैं उनमें किसी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होता। तो आपका ये कहना कि बॉडी म्यूटिलेटेड हो जाती है या फिर कोई शारीरिक कमजोरी डेवलप होगी, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है। इस तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती।
1: जी, एक दूसरा भ्रम भी है जो अंग भंग को लेकर है कि हमारी रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफी इसके आड़े आते हैं। जैसे कि हिंदू मिथोलॉजी में ये कहा जाता है कि अंग भंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप जैसे दुनिया में आए थे आप वैसे ही दुनिया से जाने चाहिए, अदरवाइज आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये अंग भंग का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आप इसके बारे में।
2: देखिए, स्किन डोनेशन मैं ये चीज अच्छी है कि किसी भी तरह का कोई भी अंग भंग जो है आपको मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम जो है वो सिर्फ स्किन का जो है हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में जो है ड्रेसिंग कर दी जाती है। तो किसी भी तरह का जैसा हाथ या पैर का कटना, उस तरह का कटना जो है स्किन डोनेशन में नहीं किया जाता है, कोई भी हाथ या पैर नहीं निकाला जाता है। मृत शरीर के बॉडी पार्ट्स सारे अटैच होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स के ही जो हिस्से रहते हैं उनसे स्किन की ऊपरी लेयर निकाल दी जाती है। तो आपका ये कहना कि स्किन डोनेशन के बाद जो आपको बॉडी मिलेगी किसी तरह का उसमें अंग भंग रहेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी किसी भी तरह का बॉडी म्यूटिलेशन या अंग भंग आपके मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा।
1: एक और भ्रांति है कि अगर मेरी स्किन पर कोई टैटू है या स्टिकर है तो मैं स्किन डोनेट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं।
2: नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके स्किन पर टैटू है या फिर कोई मार्क है तो आप स्किन डोनेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपके शरीर पर टैटू हो या नहीं हो, किसी भी पार्ट की बॉडी की स्किन ली जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि उस टैटू वाले पार्ट की यदि स्किन को लेंगे तो सामने वाले जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें भी वो टैटू ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दें और बाकी जो नॉर्मल स्किन है वहां से स्किन हार्वेस्ट की जाती है। हाँ, ये यदि है कि आपके होल बॉडी पे आपने टैटू करवा के रखा है फिर भी और कोई डोनर अवेलेबल नहीं है, तो लाइफ सेविंग सिचुएशन में हम उस टैटू वाले व्यक्ति की स्किन भी एज ए डोनेशन ले सकते।
1: जी, और जब हम कोई स्किन लेते हैं और जब हम उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो रिसिपिएंट होता है उसके बॉडी पर वही स्किन मौजूद रहती है या फिर सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज की जाती है?
2: ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। स्किन ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रांसप्लांट में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो स्किन है, दूसरे पेशेंट की जो स्किन ली जाती है वो एक टेम्पररी कवर प्रोवाइड करती है। शुरुआती दौर में 4 से 5 दिन में जो घाव है उसके ऊपर स्किन अटैच हो जाती है, उस अटैच होने की वजह से उस घाव को वो कवर कर देती है, और उस दौरान का जो संक्रमण है और बॉडी के जो पोषक तत्व उस घाव से बह रहे हैं वो रुक जाते हैं, उसके रुकने की वजह से जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो जाता है और मरीज की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन 25 से 30 दिन बाद, लगभग 1 महीने के बाद, धीरे धीरे करके वो स्किन जो है वो झड़ने लगती है, लेकिन जो घाव है वो सिकुड़ने लगते हैं, पेशेंट रिकवर करने लगता है, और पर्टिकुलर घाव यदि उस स्किन के झड़ने के बाद जो बचते हैं उन पे जो स्किन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है, और उस कम रिक्वायरमेंट को हम जो पेशेंट की अवेलेबल स्किन है उस स्किन से कवर कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी बायोलॉजिकल कवर है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो ये है कि ये एक बेस्ट बायोलॉजिकल कवर है। किसी भी ड्रेसिंग या किसी भी दवाई से अच्छा है कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का एक पार्ट यदि उस घाव पे रखा जाता है तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक नेचुरल वे में कन्वर्ट हो जाता है और मरीज के बचने की संभावना है, स्पेशली एक्सटेंसिव बर्न जो बहुत ज्यादा जले हुए रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े ट्रॉमा वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें उनकी जान को बचाने में ये तरीका बहुत कारगर है।
1: डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार सुना है कि फेस ट्रांसप्लांट भी इस दुनिया में हुआ है, तो इस तरह की कोई चीज में भी ये चीज काम आती है स्किन डोनेशन?
2: नहीं, स्किन डोनेशन और फेस ट्रांसप्लांट दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। स्किन डोनेशन में हम स्किन की एक पतली लेयर को जो है मृत शरीर या किसी जिंदा आदमी से जले हुए मरीज में लगाते हैं उसकी जान को बचाने के लिए। फेस ट्रांसप्लांट टोटली डिफरेंट है, उसमें किसी मृत शरीर के 6 घंटे के अंदर जो है उसके पूरी चेहरे और गर्दन के स्किन को छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के साथ निकाला जाता है,
1: पूरी मोटाई के साथ
2: निकाला जाता है और उसमें रक्त की नलियां होती हैं जिनको हम दूसरे पेशेंट में, स्पेशली बर्न विक्टिम्स जो रहते हैं जिनमें एक्सटेंसिव बर्न है, जिनमें कोई और प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हैं फेस को सुधारने के लिए, तो उन कंडीशंस में उस पूरी मोटी स्किन को जो है पूरे फेस के स्किन को दूसरे पेशेंट के फेस पे लगाया जाता है और छोटी छोटी रक्त नलिकाओं को जोड़ा जाता है, तो जो उनका जो नेचुरल ब्लड है वो ब्लड जो है उस ट्रांसप्लांटेड स्किन में सप्लाई होता है और ऑलमोस्ट नेचुरल एक्सेप्टेबल लुक देता है। आजकल एडवांस प्लास्टिक सर्जरी के इस दौर में फेस ट्रांसप्लांट भी जो है वो एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, स्पेशली बर्न विक्टिम्स और ज्यादा जले हुए मरीजों में जिनमें कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो जाता है। लगभग काफी कुछ फेस ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले 5 से 10 साल में इस जो विधा है उसमें गति आएगी।
1: बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि किन किन परिस्थितियों में हम स्किन डोनेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जी, स्किन डोनर को सिलेक्शन करने के कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। सबसे पहला रहता है इन्फेक्शन। ये आपको एश्योर होना चाहिए कि जिस पेशेंट को या जिस मृत शरीर को आप एज ए डोनर यूज कर रहे हैं यानी कि जो डोनेट करने के लिए रेडी है उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस का कोई इन्फेक्शन ना, कोई स्किन का कैंसर ना हो, कोई स्किन की और इन्फेक्शियस गंभीर बीमारी ना हो, कोई और बॉडी में बहुत सीवियर इन्फेक्शन ना रहा हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उस पेशेंट को ना रही हो। यदि ये सारी चीजें उस पेशेंट्स में नहीं होती हैं या पेशेंट या किसी व्यक्ति में जो लाइव डोनर है तो उसके स्किन हम जरूर डोनेट करवा के एक जो है पेशेंट में ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी हमने स्किन डोनेशन से जुड़ी हुई जानकारी और तथ्य डॉक्टर साहब के माध्यम से जाने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन डोनेशन के माध्यम से नई जिंदगी मिली है। कल अगर आपको किसी भी समय ये लगता है कि हमें भी स्किन डोनेट करनी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाके प्लेज फॉर्म यानी कि संकल्प पत्र भर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए हमें हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील को धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी तरफ से और आपके मंगल भविष्य की भी हम कामना करेंगे और ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।
2: नमस्कार,
1: धन्यवाद।
3: तो ये थी आज की खास बात। मैं ऑर्गन इंडिया और उनकी टीम की प्रयासों की बहुत ज्यादा सराहना करती हूँ कि वो जनता के भविष्य और उनकी सेहत के लिए इतनी जटिल जानकारी जुटा के लाते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे इन प्रयासों से बहुत से मरीजों को और उनके परिवारों को फायदा हो रहा होगा, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल रहा होगा। दोस्तों, अब आपसे इजाजत लेते हैं और जल्द वापस आएंगे नई जानकारियों के साथ, नई कहानियों के साथ। आप सभी हमेशा सलामत रहें।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: हेलो हाय, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके शो लेकर आ गई हूँ खास मुलाकात। और आज वर्ल्ड म्यूजिक डे के खास मौके पर हमारे साथ दो ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बहुत ही खूबसूरत लेगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ हैं श्री नील रंजन मुखर्जी जी, जो एक रेनाउंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है और हवाइन गिटार प्लेयर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: बहुत धन्यवाद आपका।
4: जी, हमारे साथ हैं अधिराज चौधरी, एक टैलेंटेड यंग सितार प्लेयर जो पंडित देबू चौधरी जी की म्यूजिक लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद
4: जी। और मैं अपने लिसनर्स को बता देती हूँ कि अधिराज जी जो हैं उनके गुरु हैं नील रंजन मुखर्जी जी। तो आज ये गुरु शिष्य आ गए हैं हमारे स्टूडियो में, तो बहुत सारी बातें करेंगे इनसे। तो सबसे पहला सवाल सर आपसे है मेरा, नील रंजन मुखर्जी जी, आपने पंडित देबू चौधरी जी से सीखा है, आपके गुरु रहे हैं और आज आप उनके ग्रैंडसन अधिराज को सिखा रहे हैं। बहुत कम लोगों को एक लेगेसी को इतने करीब से देखने का मौका मिलता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो कैसा फील होता है आपको?
5: ये तो मतलब ऐसा है जैसे एक सपने का साकार हो जाना
4: जी,
5: क्योंकि मैंने पंडित देबू चौधरी जी से 26 साल सीखा। 95 में मैं उनका शागिर्द बना
4: जी,
5: और 2021 तक जब तक वो रहे तब तक मैं उनका शागिर्द बना रहा। अभी भी मैं सीखता हूँ उनसे
4: जी,
5: उनके सिखाए हुए लेसन्स को रिपीट कर करके, याद कर करके मैं अभी भी सीखता हूँ
4: जी।
5: तो एक बहुत लंबा एक रिश्ता रहा और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं ये पब्लिक फोरम में कहना चाहता हूँ कि गुरुजी अपने जाने से पहले उन्होंने मुझसे गुरु दक्षिणा मांगी थी और उस गुरु दक्षिणा में उन्होंने ये कहा था कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो मेरे ग्रैंडसन को सिर्फ तुम सिखाओगे
4: जी।
5: और ये तुम्हारा गुरु दक्षिणा होगा, क्योंकि गुरुजी ने कभी किसी स्टूडेंट से कभी पैसे नहीं लिए सिखाने के लिए
4: जी, जी।
5: कभी वो नहीं लेते थे, कभी कोई फीस नहीं लिया। तो जब 26 साल हो गए हमें हमारे रिश्ते को, और शायद उनको ये आभास था कि कुछ ऐसा होने वाला है, उस पेंडेमिक में गुरुजी भी हमें छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस लिया था एज गुरुदक्षिणा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं उनकी उनके ग्रैंडसन को और पंडित प्रतीक चौधरी जी जो अधिराज के फादर रहे, बहुत रिनाउंड सितारिस्ट रहे, अनफॉर्चुनेटली उनको भी हमें खोना पड़ा
4: जी
5: पेंडेमिक में, तो इनके फैमिली का और इनके डायरेक्ट लीनियज जो है उनको मैं सिखा पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जो भी मैंने गुरुजी से सीखा है आज तक, मैं बस वही अधिराज को पास ऑन करता हूँ। और सिर्फ अधिराज ही नहीं
4: जी,
5: मेरे पास और भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जो किसी म्यूजिक बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं
4: जी,
5: और बहुत अच्छा बजा भी रहे हैं, उनमें से कई तो रेडियो आर्टिस्ट भी हैं। तो ये एक मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, वैसे मैं समझता हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा, उन्होंने गुरु दक्षिणा में इतनी बड़ी बात मुझसे कह दी
4: जी।
5: तो अभी भी मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है
4: जी,
5: जब तक मैं रहूंगा तब तक ये कंटिन्यू रहेगा।
4: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो बातें इतनी खूबसूरत होंगी क्योंकि आज है वर्ल्ड म्यूजिक डे, लेकिन अभी वक्त है खूबसूरत से गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: तो आज रेडियो महारानी पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे. मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद है. सर, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी. अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि 26 साल का ही बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता रहा है आपका पंडित देबू चौधरी जी के साथ, तो उस समय की जो गुरु शिष्य परंपरा थी और आज के समय जो ये गुरु शिष्य परंपरा है, दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है आप?
1: देखिए, मैं बाहर से बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस अभी नहीं दिखा. मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करता हूँ. जैसा मैं अपने गुरु के घर पे रह के सीखा, मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे पास रह के सीखते हैं
0: जी,
1: और बहुत दूर दूर से आते हैं.
0: हाँ जी.
1: कोई हरियाणा से, कहीं किसी जगह से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, बंगाल से, तो काफी दूर दूर से आते हैं लोग मेरे पास सीखने, और वो सीख भी रहे, घर पे रह के ही सीखते हैं. तो ये जो एक परंपरा मैंने जो देखा है बचपन से, क्योंकि जब मैं गुरुजी के पास आया था 95 में, आई वॉज 13 years old, मैंने अपना एज भी बता दिया
0: जी.
1: तो उस समय मैं भी छोटा था
0: जी. जी.
1: तो एक बचपन से एक एक एज में आना, पूरा मेरा गुरु के पास ही बीता वो टाइम. ये बच्चे भी मेरे पास बहुत छोटे छोटे आए थे
0: जी.
1: अब तो सब बड़े हो गए, सब परफॉर्म करने लगे हैं
0: जी.
1: लेकिन हमारा, मैंने कम से कम ये ट्रेडिशन ये मेंटेन रखा है कि जिस तरीके से मैंने मेरे गुरु के पास सीखा है, गुरु के पास रह के सीखा है, मेरे स्टूडेंट्स भी वैसे ही सीखे मेरे पास
0: जी.
1: और लेकिन हालांकि सुनने को अब मिलता है ऐसे कि स्टूडेंट्स सीरियस नहीं है या वो गुरु के साथ इतने अटैच नहीं हो पाते हैं आज के जनरेशन के, ये मैंने सुना है. बट फिर से मैं कहूंगा कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ बहुत अटैच्ड हैं और मैं उनके साथ बहुत अटैच्ड हूँ
0: जी.
1: तो मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता. मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरे ट्रेडिशन में या मेरे गुरु की लेगेसी, जो गुरु जी ने मुझे विश्वास करके मेरे हाथ में डाला है
0: जी,
1: वो बहुत अच्छे से चल रहा है
0: जी. क्या बात है. तो गाना सुन लेते हैं. यहाँ पर गाने के बाद फिर से लौटेंगे. शो है खास मुलाकात और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे.

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है खास मुलाकात। आज है वर्ल्ड म्यूजिक डे और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं नील रंजन मुखर्जी जी, जो कि एक हवाइन गिटार आर्टिस्ट हैं, और मेरे साथ अधिराज भी हैं जो कि एक सितारिस्ट हैं। आज दोनों से बहुत सारी बातें चल रही हैं क्योंकि दोनों गुरु शिष्य भी हैं। इनफैक्ट अधिराज पर आते हैं। अधिराज, एक फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो कब ये महसूस हुआ आपको कि अब मुझे इस लेगेसी को और आगे लेकर जाना है, और आपने सितार ही क्यों चूज किया, ये सवाल मेरा है।
1: तो मुझे जब मेरे दादाजी ने सिखाना शुरू करा
0: जी,
1: मेरी यंग एज थी जब मैं 6 साल का था, तब से ही उन्होंने मुझे ट्रेडिशन के बारे में बताया, म्यूजिक के बारे में सिखाया, मुझे सितार में रुचि जागी। मेरे पिताजी और दादाजी सितार वादक थे, तो इसीलिए मैं सितार की फील्ड में ही आया। उन्होंने मुझे सितार ही सिखाना शुरू करा
0: जी।
1: और मुझे म्यूजिक में बहुत रुचि थी और मुझे घराने के बारे में बताया, तो मुझे उसी एक यंग एज से मुझे ये पता लग गया था कि मुझे इस ट्रेडिशन को आगे लेके जाना है
0: जी,
1: और मुझे अच्छा करना है इसमें। तो मैंने सितार इसलिए चूज किया क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर और फादर ने मुझे शुरुआत ही एक म्यूजिकल माहौल में रखा था, एंड उसके बाद से मैंने म्यूजिक सुना है पूरे घर में। उनके स्टूडेंट्स आते थे, वो क्लासेस लेते थे। मैं बहुत छोटा था जब मैं 3-4 साल की उम्र से ही मैं म्यूजिक क्लासेस में बैठता था उनके। मुझे म्यूजिक वहां से बहुत पसंद आने लगा।
0: अच्छा, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे म्यूजिक के अलावा कहीं और जाना चाहिए, किसी और फील्ड में ट्राई करना चाहिए, ऐसा कभी पर्सनली फील हुआ आपको?
1: ऐसा मुझे कभी पर्सनली फील नहीं हुआ। मुझे था कि मुझे म्यूजिक ही करना चाहिए क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है।
0: क्या बात है, ये और भी खूबसूरत बात है कि जब आप एक ऐसी लेगेसी में होते हैं और आपका इंटरेस्ट भी फिर उसी चीज में होता है, तो डेफिनेटली वो और ज्यादा जो टैलेंट है आपका निखर कर सामने आता है। एक और सवाल है आपसे, जब आपका सरनेम और फैमिली बैकग्राउंड पहले से ही लोगों की एक्सपेक्टेशंस को तय कर देता है, तो एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाना कितना ज्यादा मुश्किल लगता है आपको?
1: जी, ऐसे मैंने ज्यादा सोचा तो नहीं है इस बार में इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने के बारे में
0: जी।
1: बस यही मैं सोचता हूँ कि सबकी तरह बस मुझे भी रियाज करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले उसे लेना है अच्छे से, और अच्छे से बस प्रैक्टिस करते रहना है और लेगेसी को आगे बढ़ाते जाना है।
0: क्या बात
1: बस है? मेरा यही मानना है, बाकी मैंने ज्यादा इस बारे में सोचा नहीं है।
0: आपने रियाज की बात कर ली है अभी, तो हम रियाज पर बात करते हैं। कितना रियाज होता है, कितने टाइम आप इस रियाज को देते हैं अपने पूरे स्केड्यूल में?
1: जी, मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है रियाज का। जब मेरे पास अभी मेरा 12th खत्म हुआ, उसके बाद मैं रियाज को ज्यादा टाइम दे पा रहा हूँ। जब मेरा स्कूल था तब मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, तब लगभग 1 घंटा ही दे पा रहा था। अभी मैंने टाइम बढ़ाना शुरू करा है रियाज में, तो अभी मैं रियाज में और टाइम डिवोट करना चाहूंगा।
0: जी जी, तो मैनेजेबल है दोनों, स्टडी और आपका रियाज साथ में?
1: जी बिल्कुल मैनेजेबल है दोनों के लिए। अलग अलग टाइम अगर आप डिवाइड कर देते हैं, स्टडी के लिए अलग टाइम और रियाज के लिए अलग टाइम, तो आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे दोनों को।
0: जी जी, बहुत लोग मानते हैं कि अगर आप किसी प्रतिष्ठित म्यूजिकल फैमिली से आते हैं तो आपकी जर्नी ना बहुत आसान होगी क्योंकि सब कुछ मिल गया है आपको, तो क्या मानते हैं आप इस चीज को लेकर?
1: जी, मेरा ये मानना है कि आसान तो कोई भी चीज नहीं होती। हाँ। जैसे कि जैसे जर्नी की बात हुई, क्योंकि नाम हमें अपना खुद ही बनाना होता है। फैमिली को ऐसे कभी कभी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और हाँ। आपको अच्छे गुरुओं से सीखने का मौका मिलता है जो आपके फैमिली में है, फैमिली बैकग्राउंड ही है म्यूजिक का।
0: हाँ।
1: पर आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी खुद ही करनी पड़ेगी, और उसी हिसाब से फिर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जितना आप अच्छा करेंगे, जितना रियाज करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जितना आप रियाज करेंगे और फोकस करेंगे अपने गोल्स पे, उतना ही अच्छा है।
0: जी, तो आज हमारे साथ आपके गुरु भी मौजूद हैं, नील रंजन मुखर्जी जी। अच्छा, इस पूरी ओवरऑल जर्नी में जब आप इनके साथ आए, और अब तक कोई ऐसी बात जो आपने अब तक सर से नहीं कही हो लेकिन आपके दिल में रहती हो, तो आज अगर कहना चाहें तो वो क्या होगी? बहुत अच्छा मौका है आपके पास।
1: मैंने सर को बहुत बताया हुआ है मैंने वैसे कि, हाँ। कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे सर से सीखने का मौका भी मिल रहा है। जैसा उन्होंने शुरुआत में कहा कि मेरे ग्रैंडफादर ने उन्हीं को कहा था कि उनके जाने के बाद वो मुझे सिखाए, तो मुझे इनके लिए मेरा सौभाग्य है कि मुझे इनसे सीखने का मौका मिल रहा है। तो सर बहुत अच्छा सिखाते अपने हर स्टूडेंट को, मुझे इनके काफी सारे स्टूडेंट सर ने कहा अच्छा कर रहे हैं, तो सर बहुत अच्छे गुरु है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे सर के विसिनिटी रहने का मौका मिला, और मैं जब चाहूं मैं सर के पास चला जाता हूं सीखने के लिए। उसके लिए सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा।
2: बेसिकली देखिए क्या होता है कि जब हम गुरु शिष्य का जब हमारा जो कनेक्शन जो है
0: जी,
2: जब मैं अधिराज को उस नजरिए से देखता हूं तो सिर्फ मेरे लिए एक स्टूडेंट है। और आप यकीन करिए कि मैं अधिराज को ऐसा स्पेशल कुछ नहीं सिखाता जो मैं बाकी स्टूडेंट्स को नहीं सिखाता
0: जी।
2: सबके लेसन सेम होते हैं, जो लेसन मैंने गुरुजी से जैसे सीखा है मैं वैसे ही पास ऑन कर देता हूँ। अब ये सब अपने अपनी एबिलिटी के हिसाब से वो अपना प्रेजेंट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन मेरे सिखाने में कभी ये ऐसा कुछ नहीं होता कि अधिराज मेरा मतलब वो जैसे मेरा भतीजा है
0: जी।
2: मेरे बेटे जैसा है तो उसको अलग से सिखाऊं और बाकियों को नहीं सिखाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं करता भी नहीं
0: जी।
2: लेकिन जब मैं अपार्ट फ्रॉम द टीचर जब मैं अधिराज के साथ पर्सनली मिलता हूं तो मेरे लिए अभी भी वही छोटा सा अधिराज है जब मैंने उसको पहली बार देखा था
0: जी जी।
2: तो उतना ही प्यार, उतना ही लाड़, उतना ही सब कुछ होता है। लेकिन जब टीचिंग की बात होती है, अधिराज को भी पता है आई एम वेरी पर्टिकुलर, और अधिराज भी बहुत अपने काम में बहुत पर्टिकुलर है
0: जी।
2: अपने काम को समझता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। और अभी मैंने भी अधिराज को कई बार कहा है कि अभी इतना प्रेशर नहीं लेना है कि घराना संभालना है, ये सब बहुत बाद में आता है।
0: बिल्कुल,
2: आपको सबसे पहले ये करना है कि अपने आप को तैयार करना है
0: जी।
2: अच्छा बजाना है, अच्छा सीखना है और अच्छे लोगों के संगत में रहना, ये आपका पहला फर्ज है अभी
0: जी।
2: घराना, ट्रेडिशन, फैमिली लिनियज, ये अपने आप होता रहता है
0: जी।
2: मेरे गुरु जब आए थे दिल्ली, पंडित देबू चौधरी जी, उनका कोई फैमिली लिनियज नहीं था, म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था
0: जी।
2: वो अपने घर में पहले इंसान थे जो बजाए
0: जी।
2: इवन मेरा कोई फैमिली लिनियज नहीं था
0: जी।
2: मेरे मामा जी सितार बजाते थे बट ही वॉज नॉट प्रोफेशनल आर्टिस्ट, तो मेरा ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं था कि उनकी वजह से मैं म्यूजिक में आ गया। और कुछ चीजें हमें ये भी विश्वास करना चाहिए कि कुछ चीजें डेस्टिनी होती है।
0: एग्जैक्टली,
2: जैसे आपने अभी कहा कि अगर म्यूजिक के अलावा कुछ और करना होता नहीं करना होता, बिकॉज मैंने मुझे ऐसा लगा कि जब अधिराज का जब जन्म हुआ उसके बाद से, इनफैक्ट जन्म से पहले भी
0: जी,
2: अगर हम हमारे मिथोलॉजी को अगर हम सुनते हैं, अभिमन्यु की बात सुनते हैं, जो भी करते कि माँ के गर्भ में सुनना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो अगर ऐसा भी कुछ होता होगा तो अधिराज ने तो तब से भी सुना है मैं। और वो जो उसका जब जन्म हुआ
0: जी,
2: तो उसके लिए कुछ नया नहीं था कि ये क्या है, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। वो इसी में पला बड़ा, तो उसके लिए चूज करना बहुत इजी था, जो हमारे लिए या मेरे गुरु पंडित देबू चौधरी जी के लिए इतना आसान नहीं था।
0: हाँ जी,
2: इसके लिए बहुत आसान था। वो सिर्फ इसको एक सुविधा मिली इस घर में जन्म होने के, बाकी सारा काम आपको अपने से ही करना है, मेहनत उतना ही करना है, चाहे आपके फैमिली बैकग्राउंड हो या नहीं हो, और आपको हर दिन मेहनत करना है
0: जी,
2: क्योंकि आपका हर परफॉर्मेंस एक नया परफॉर्मेंस, एक नया एग्जामिनेशन है।
0: एग्जैक्टली, वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है खास मुलाकात और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे।

0: एक बार फिर से स्वागत है, शो है खास मुलाकात। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे। सर, यहाँ पर आपकी वोकल ट्रेनिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि आपसे बात हुई कि आपकी वोकल ट्रेनिंग भी अभी है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे।
1: जी, मैं वोकल ट्रेनिंग मेरे गुरु पंडित अनूप जलोटा जी, मैं उनसे वोकल की ट्रेनिंग लेता हूँ
0: जी।
1: और इसका एक रीजन और ये है कि जो हवाइन गिटार है उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो वायलिन शैली है उसमें वोकल्स की बहुत उम्मीद है।
0: ओके।
1: क्योंकि स्लाइड, उसमें हम स्लाइड करते हैं एक स्टील बार से, एक मेटल बार होता है
0: जी,
1: उससे क्या होता है उसका सस्टेनिटी बहुत ज्यादा है हवाइन गिटार का। और जितना आप सस्टेन कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट में, आप वोकल्स के उतने करीब रहेंगे
0: जी।
1: क्योंकि आप वोकल में आपकी जब तक सांस है आप सस्टेन कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट में इतना पॉसिबिलिटी नहीं है, इतना स्कोप नहीं है, बिकॉज उसमें एक सर्टेन टाइम के बाद आपका स्ट्रोक का जो वाइब्रेशन है वो खत्म होना शुरू होता है, फिर आपको दूसरा स्ट्रोक करना होता है
0: जी।
1: उसमें भी हम रास्ता निकालते हैं, एक बीच का रास्ता निकलता है जिसमें कुछ तंत्र की बातें होती है, कुछ गाने की बातें होती है, दोनों मिला के इंस्ट्रूमेंट में भी एक रास्ता। देखिए, वोकल्स के अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी जो बजाते हैं वो वही बजाते हैं जो उन्होंने, जो वो गुनगुनाते हैं अंदर, भले ही हम प्रोफेशनली गाना ना गाए स्टेज पे, लेकिन जितने भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं वो सब लोग गाते हैं
0: जी।
1: क्योंकि गाना आपको जरूरी है, आप जो गुनगुनाएंगे अपने अंदर, या जब हम जैसे सिखाने की बात हो रही थी, जब मैं सिखाता भी हूँ तो मैं कभी बजा के नहीं सिखाता अधिराज को या किसी स्टूडेंट्स को, उस समय गा के ही सिखाता हूँ।
0: ओके।
1: मैं गाता हूँ, ये लोग बजाते हैं
0: जी,
1: क्योंकि दैट्स द प्योरेस्ट फॉर्म एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गा के जितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा बजा के नहीं होगा, क्योंकि बजाने में एक और बात आती है टेक्निकलिटी की। अगर मैं बजाऊंगा तो गिटार के अलग टेक्निक्स हैं, उसके सस्टेनिटी का कंट्रोल अलग है, सितार के सस्टेनिटी का कंट्रोल अलग है, उसके टेक्निक्स अलग है। तो मैं अगर सब चीज अगर मैं चाहूँ जैसे गिटार में बज रहा है वैसा ही सितार में बजे, ये पॉसिबल नहीं है। जितनी चीजें सितार में बज रही है वही गिटार में बजे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो गाना एक ऐसा माध्यम है कि मैं वो सब लोग फॉलो कर सकते हैं।
0: हाँ जी।
1: तो इसलिए मैंने चूज किया, और आई एम अगेन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इतने अच्छे अच्छे गुरुओं का साथ मिला
0: जी,
1: पंडित देवू चौधरी जी और पंडित अनूप जलोटा जी, ऐसे गुरुओं का मतलब मुझे सानिध्य मिला
0: जी।
1: तो इस वजह से आज थोड़ा बहुत जो भी हुआ है इन लोगों का ही आशीर्वाद है
0: जी। तो यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे, शो है खास मुलाकात।

0: फिर से स्वागत है शो है खास मुलाकात। मेरे साथ आज स्टूडियो में बने हुए हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे के मौके पर नील रंजन मुखर्जी जी, जो कि एक हवाइन गिटार आर्टिस्ट हैं। मेरे साथ अधिराज भी हैं, जो कि एक सितारिस्ट हैं। सर, जैसे कि हर जेनरेशन आज के टाइम में क्लासिकल म्यूजिक के साथ डेफिनेटली कनेक्ट कर रही है, लोग सुन भी रहे हैं, इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी सुन रहे हैं, लेकिन आज के वक्त में भी मेंटल प्रेशर लोगों पर आ गया है, मेंटल हेल्थ लोगों की ख़राब है, लोग एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, तो म्यूज़िक उन लोगों को कितना हील करता है? आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे पर मैं ये बात ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी।
1: देखिए, म्यूज़िक हील करता ये प्रूवन है, ये साइंस भी कहता है। और मेरे गुरु का एक रिकॉर्डिंग है, कुछ 70s में ये रिकॉर्ड हुआ था लंदन में किसी एक म्यूजिक कंपनी का
0: जी,
1: और पंडित देवू चौधरी जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने उसमें राग मारू बिहाग बजाया था
0: जी,
1: एक राग है राग मारू बिहाग, शाम का राग है, उन्होंने ये बजाया था। और आई थिंक शायद कुछ करीब 8-10 साल पहले ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आया था कि लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कुछ और यूनिवर्सिटीज के मतलब प्रोफेसर्स एंड डॉक्टर्स, इन्होंने मिलकर ये रिसर्च किया कि उन्होंने जब हार्ट ऑपरेशन किया तो उन्होंने पंडित देवू चौधरी जी का बजाय राग मारू बिहाग का वर्जन यूज किया ड्यूरिंग द ऑपरेशन।
0: ओके,
1: तो ये न्यूज जब हमें मिला और उन दिनों हमारे घर में न्यूज पेपर्स आते थे
0: जी,
1: तो हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि अब तो ये मतलब ऑन पेपर आ गया क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं।
0: हाँ जी।
1: देन आप ये भी आपने सुना होगा कि दो एक साथ दो फल के पेड़ एक ही टाइम पे लगाया गया, एक के साथ म्यूजिक लगाया गया, एक को सिर्फ खाली रखा गया, म्यूजिक वाला पेड़ ज्यादा फल देने लगा, उसका ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ
0: जी।
1: तो ये सब तो प्रूवन है, ये साइंस है।
0: हाँ।
1: और तो हमारा हर नोट हर स्वर किसी ना किसी पर्टिकुलर एक हमारे बॉडी का जो सिस्टम है किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को हिट जरूर करता है
0: जी।
1: सबके अलग अलग है, कोमल स्वर है तो आपके बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट को हिट करता है, अगर तीव्र स्वर है तो उसको किसी और पार्ट को हिट करता है, और इससे जरूर बेनिफिट होता है
0: जी।
1: और देखिए सबसे बड़ी बात, आप किसी शास्त्रीय संगीत के किसी भी कलाकार से आप मिले या उसके जो भी प्रैक्टिशनर है उनसे आप मिले, तो आपको सबसे पहला चीज आपको जरूर नोटिस आप करेंगी कि सब हम इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, सबके अलग अलग डिफरेंसेस हैं, बट एक चीज बहुत कॉमन है, दे ऑल आर काम।
0: ओके,
1: दे ऑल आर काम, ये आप नोटिस जरूर,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये कॉमन फैक्टर है। वो कामनेस कहाँ से आता है? बिकॉज हमारा जो म्यूजिक सिस्टम है जिस तरीके से उसको बनाया गया हमारे महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो सीनियर आर्टिस्टों ने जिस तरीके से सोचा म्यूजिक को लेके, उनके नोट्स को लेके, रागों को लेके
0: जी,
1: वो बहुत इफेक्ट करता है। और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो म्यूजिक के थ्रू ठीक होते हैं। अभी मैंने सुना बंगाल में भी अभी 1-2 साल पहले पेंडेमिक टाइम की बात है, डॉक्टर एन राजम का बजाया हुआ वायलिन किसी एक कोमा पेशेंट को सुनाया गया जिसकी बचने की उम्मीद जीरो।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है खास मुलाकात, मैं गीत आपके साथ बनी हुई हूँ। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे।
1: बहुत सीरियसली और पॉजिटिवली लेना चाहिए
0: जी। एक और सवाल है सर आपसे, लेगेसी को आगे बढ़ाने और लेगेसी के बोझ के बीच एक बहुत पतली सी रेखा होती है, आपके हिसाब से किसी आर्टिस्ट को उस बैलेंस को किस तरीके से मेंटेन रखना चाहिए?
1: आई थिंक ये अधिराज ज्यादा,
0: अधिराज आपसे जानेंगे फिर ये बात
2: जी। तो बैलेंस के लिए बस यही अपने माइंड में रखना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आप जो कर रहे हैं, आप अगर अच्छा कर रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, आप अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप वैसा ही करते जाइए। आपको लेगेसी का बोझ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेगेसी क्वेश्चन जैसे आपने पूछा कि उसका लीनियज और उसका बैलेंस, एक लीनियज का बैलेंस होने के लिए आपको बस उसका बोझ लेना नहीं और आपको सोचना नहीं, जैसे सर ने पहले भी कहा था, ये सोचना नहीं कि घराने को कैसे आगे बढ़ाना है, बस अभी सोचना है कि आप बस अच्छा बजाते जाओ, अच्छा प्रैक्टिस करते जाओ घर पे
0: जी।
2: और उसके बाद जब परफॉर्मेंसेस हो तब उसमें अच्छा करो, बस फिलहाल यही करो, अच्छे लोगों के साथ रहो
0: जी,
2: अच्छे लोगों के साथ बातचीत करो, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली ये चीज आ जाती है, उसके बाद आप बोझ नहीं लेते हो घराने का, लीनियज का
0: जी।
2: यही बात है
0: जी। आपके और भी गुरु हैं, उनके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी यहाँ
2: जी। मेरे और भी गुरु हैं, अभी मैं करेंटली सीखता हूँ श्री नीलरंजन मुखर्जी सर, जो आज मेरे साथ यही मौजूद है
0: जी,
2: और पंडित नीलाद्री कुमार जी, जो बहुत वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन है सितार में, और विदुषी अनुपम महाजन जी।
0: जी
2: सबका स्टाइल अलग है। नील सर हवान गिटार आर्टिस्ट है, उनका स्टाइल अलग है, और वो मुझे जैसे उनका गा के सिखाते ज्यादातर
0: जी,
2: और पंडित नीलाद्री कुमार जी मुझे सिखाते, उनका स्टाइल अलग है, वो सितार में उनका भी, उनका स्टाइल काफी अलग है, उनका घराना भी अलग है। विदुषी अनुपम महाजन जी हमारे ही घराने से है, उनका स्टाइल हमारे घराने का स्टाइल जैसा है, हमारे घराने के स्टाइल जैसा है, सिमिलर है। तो सबके स्टाइल यूनिक और अलग होते हैं, सब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के।
0: ओके, जैसे आपने कहा कि सबके स्टाइल अलग होते हैं, लेकिन आपको सब सिखा रहे हैं, तो क्या उन सबके स्टाइल आपके स्टाइल में भी आएंगे या आप उनसे बिल्कुल डिफरेंट प्ले करते हैं?
2: जी, जैसे कि जो भी कोई शिष्य अपने गुरुजी से सीखता है तो उनका स्टाइल थोड़ा थोड़ा आ ही जाता है, जैसे कि तो सबका स्टाइल मेरे स्टाइल में है थोड़ा, पर मेरा, मैं कोशिश करता हूँ अलग अलग स्टाइल बनाने का भी। फिलहाल तो स्टाइल के बारे में मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, बस सोचना है कि कैसे भी करके कुछ सुर में बजा लूँ, कुछ अच्छे से बजे, बस यही सोच रहा हूँ। स्टाइल अपने आप जब मैच्योरिटी आ जाती है तो कोई हम डेवलप कर लेते हैं स्टाइल मैच्योरिटी के साथ साथ, अभी स्टाइल के बारे में भी ज्यादा सोचते नहीं है कि किसका स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, खुद का बनाना चाहिए, पर जब मैच्योरिटी आती है तब ये रियलाइजेशन होती है कि मेरा स्टाइल कैसा है और मेरा किससे ज्यादा मिलता है और मेरा यूनिक है या कैसा है।
0: स्टेज परफॉर्मेंस की बात कर लें यहाँ पर
2: जी।
0: जब आप स्टेज पर होते हैं, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है मेरा कि कितनी प्रैक्टिस

0: करते हैं उसके लिए, जब आपकी कोई परफॉर्मेंस होने वाली होती है तो कितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है उसकी?
1: परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस उतनी ही होती है जितनी रोज रोज, वैसे कोई अलग बात नहीं है कि कोई परफॉर्मेंस के लिए अलग प्रैक्टिस करनी होती है, बस रोज बेसिक चीजों की प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है। पर मेरा एक रिचुअल है कि जब मेरा जिस दिन परफॉर्मेंस होता है उस दिन मैं फ्रेश रहने के लिए उस दिन मैं प्रैक्टिस उस दिन मैं रियाज नहीं करता हूँ ताकि मैं फ्रेश रहूँ उस दिन के लिए, क्योंकि फिर वो फ्रेशनेस चली जाती है एक बार मैंने बजा लिया दिन में। तो यही मेरा रिचुअल है कि उस दिन नहीं करता हूँ।
0: अच्छा, जब आप स्टेज पर होते हैं बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे आपको, बहुत तालियां बजती होंगी डेफिनेटली, तो अब तक कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको याद रहा हो, लगता हो कि ये मुझे अब तक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है?
1: जी मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मैं जब भी स्टेज पे रहता हूँ ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बेस्ट लगता है, पर मुझे बहुत लोगों ने कहा है। तो मैं एकदम स्टेज पे मेरा फेस और मेरा स्टाइल मेरे डैड की तरह लगता है, एकदम पिताजी की तरह, पंडित प्रतीक चौधरी जी की तरह एकदम मेरा स्टाइल लगता है।
0: जी, जी।
1: ये मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगता है क्योंकि मेरा फेस भी उनसे थोड़ा मैच करता है, तो ये मुझे बहुत पसंद है कॉम्प्लीमेंट।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो अभी गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है खास मुलाकात, गाना

0: फिर से स्वागत है, शो है खास मुलाकात। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि अधिराज की कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ही खूबसूरत लगती हो अपने मतलब आपके लिए सारे स्टूडेंट इक्वल हैं डेफिनेटली, लेकिन अधिराज की ऐसी कोई बात जो अधिराज को बिल्कुल अलग बनाती हो।
1: देखिए, अधिराज की जो बात सबसे अच्छी है वो है ये 24/7 म्यूजिक में रहता है
0: जी,
1: इनोसेंट बहुत है मतलब
0: जी
1: अच्छा
0: जी,
1: अच्छे मतलब स्टूडेंट कह सकते हैं आप
0: जी, जी,
1: अच्छा स्टूडेंट है
0: जी,
1: और डेडिकेटली सीखता है, इसको सीखने की इच्छा बहुत है।
0: हाँ जी,
1: ये मैं बहुत अच्छा मुझे लगता है जब भी अधिराज मेरे पास आता है, कभी अचानक से रात को 10 बजे कॉल आ गया।
0: हाँ जी,
1: कि मैं आ जाऊँ आपके पास सितार लेके आ जाओ।
0: हाँ जी,
1: तो ये जो है कि 24/7। और एक चीज देखिए, जब हम रियाज करते हैं, रियाज सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पे नहीं होता, आपको माइंड का भी रियाज करना होता है।
0: हाँ जी जी,
1: हमेशा इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे ऐसे रियाज नहीं होते, कभी कभी आपको उसके बारे में सोचना भी पड़ता है। क्योंकि हमारा जो राग सिस्टम है, जो हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो राग सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है। तो आपको सिर्फ बजाते रहने से नहीं होगा, आपको उसके बारे में सोचना भी पड़ेगा
0: जी।
1: देन ताल भी है, ताल को भी आपके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके डिविजन्स को बारे में सोचना पड़ेगा, राग को कैसे आप राग में कैसे जाएं, राग को कैसे आप उसकी हम लोग कहते हैं उसका भरत करें, भरत करें मतलब उसको कैसे एस्टेब्लिश करें, उस राग को कैसे एलोबरेट करें, क्योंकि आपके पास तो लिमिटेड स्पेस है
0: जी, जी।
1: जैसे ही आपने राग का नाम ले लिया तो आपके पास एक लिमिटेड स्पेस है, एक पर्टिकुलर एक सर्टेन ग्रामर है, आपको उसी के बीच में रह के आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुरानी ट्रेडिशन है।
0: हाँ जी,
1: आप किसी राग का नाम लेते हैं और फिर कोई और राग में चले गए तो आपको गलत कहा जाएगा, फिर आपको एकदम स्ट्रिक्टली उस राग को ही फॉलो करना होता है
0: जी।
1: आप बॉलीवुड सॉन्ग बजाइए, आप गजल बजाइए, भजन बजाइए, जो भी लाइक क्लासिकल की बात होती है, उसमें आपको राग को इतना मतलब एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना होता।
0: हाँ जी,
1: उसमें आप लिबर्टी ले सकते हैं, उसमें आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आपने कह दिया राग या ताल, तो फिर उस ताल का अपना एक ग्रामर है, राग का अपना एक ग्रामर है, तो उसके लिए सिर्फ बजाते रहना जरूरी नहीं, आपको सोचना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो अधिराज में ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सोचता जरूर है, ये 24/7 म्यूजिक में रहता है
0: जी,
1: और हमेशा मतलब ईगर।
0: हाँ जी,
1: मुझे अब क्या करना है।
0: हाँ जी,
1: अब क्या करना है, नेक्स्ट परफॉर्मेंस में क्या करना है। सुनता भी है, जब मैं इसका परफॉर्मेंस से सुन के आता हूँ तो मेरा ऐसा कुछ नेचर भी नहीं है, और अधिराज भी इसमें सहमत जरूर होगा कि मैं टोकता भी हूँ कि ये गलत था
0: जी,
1: ये मत करना अगली बार, ये गलत था, ये राग का ये फ्रेज गलत था। ठीक है, परफॉर्मेंस है, हो गया, होता भी है, हम आज भी गलत करते हैं और गलती हो जाती है, ह्यूमन बीइंग्स
0: जी,
1: मतलब लेकिन उसको बताना कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था,
0: हाँ
1: कर लिया, अगली बार मत करना, तो उसके लिए अगली बार तैयार रहता है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी
0: जी जी। यहाँ पर वक्त है खूबसूरत से ट्रैक का, इस ट्रैक के बाद फिर से लौटेंगे, शो है खास मुलाकात।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छट के शो है खास मुलाकात। मैं गीत आपके साथ हूँ और आज वर्ल्ड म्यूजिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नील रंजन मुखर्जी जी जो कि एक हवाइन गिटार प्लेयर हैं, मेरे साथ अधिराज हैं जो कि एक सितारिस्ट हैं। दोनों के साथ बहुत सारी खूबसूरत बातें चल रही हैं। अधिराज आपसे एक सवाल है, कहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं हमारी एक मंजिल जरूर तय होती है उसके लिए कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो अधिराज कहाँ तक पहुँचना चाहता है ये मैं जरूर जानूंगी।
1: जी मेरी कोई ऐसी फिक्स्ड मंजिल तो नहीं है, पर मेरा ये है कि मुझे आगे बस अपने ट्रेडिशन को आगे लेके जाना है कि ताकि मैं सबको अपने ट्रेडिशन के बारे में बता पाऊँ, वर्ल्ड लेवल पर अपना सितार प्रस्तुत कर पाऊँ और बस घराने को आगे बढ़ाऊँ अच्छे से, और अच्छे से करता जाऊँ जो मैं कर रहा हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करता जाऊँ। तो यही मेरा गोल है, कोई एक फिक्स टारगेट नहीं है, कोई फिक्स गोल नहीं है, बस जो करता हूँ वो अच्छे से करता जाऊँ।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो मैं कर रहा हूँ उसे बस अच्छे से करूं। बहुत ही खूबसूरत हमारी कॉन्वर्जेशन चल रही है लेकिन अभी साइनिंग ऑफ का वक्त आ गया है। लेकिन जाते जाते आप दोनों से ही कि सवाल मेरा रहेगा, वर्ल्ड म्यूजिक डे जैसे रेडियो महारानी सेलिब्रेट कर रहा है तो सर आप हमारे लिसनर्स को, हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, जिनको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, जो म्यूजिक में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आज आपका?
2: सिर्फ एक ही मैसेज, आप म्यूजिक करिए और आपको मेरे तरफ से आपको जो भी हेल्प चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, मैं हमेशा तैयार हूँ।
0: जी
2: मुझे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आजकल सोशल मीडिया है, सब कुछ है, आप मुझे कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। आप जरूर करिए, या किसी भी गुरु के पास, आप किसी भी शहर में हो, किसी भी शहर में आप ये सुन रहे हो रेडियो महारानी का ये शो
0: जी,
2: तो आप वहाँ अच्छे गुरु को ढूंढिए
0: जी,
2: उनके पास जाइए।
0: हाँ।
2: म्यूजिक जरूर सीखिए क्योंकि म्यूजिक आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा देगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है।
0: जी क्या बात है, अधिराज आपके पास भी आते हैं, आपसे भी यही सवाल है।
1: तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे सर ने कहा कि आपको म्यूजिक करने के लिए कोई अच्छा गुरु ढूंढना चाहिए, आप जितने अच्छे गुरु से, आप कोई भी गुरु से सीखेंगे, बस आपको अगर म्यूजिक करना है तो आपको एक गुरु चाहिए और आपको म्यूजिक सुनना भी चाहिए। जैसे हमने पहले कहा कि आप जितना म्यूजिक सुनेंगे आप और म्यूजिक में घुसते चले जाएंगे और आपको और म्यूजिक की डेप्थ पता चलेगी
0: जी।
1: तो आप जितना सुने उतना अच्छा है, और जितना इस फील्ड में आप रहे और जितना आप सीखे उतना अच्छा है।
0: क्या बात, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अधिराज, आप दोनों यहाँ पर आए और इतनी खूबसूरत बातें हमारे लिसनर्स तक पहुँचाई।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू भी रेडियो महारानी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमने बुलाया मुझे और अधिराज को
0: जी,
2: और ये हमारे लिए बहुत एक खुशनुमा टाइम रहा
0: जी। अमेजिंग, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और लिसनर्स आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का जेमोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बात है कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ को पेड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है।
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं इस ट्रैफिक के शोर में।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का खुले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें,

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

एक छोटा सा हरा पत्ता जो सिर्फ जुबान पर नहीं इतिहास पर भी रखा गया, जो दरबार से गली तक पहुंचा और आज भी जिंदा है। मैं बात कर रही हूँ पान की। वो कहा है कि जुबान पर रखा पान सिर्फ स्वाद नहीं देता, ये पहले लोगों को और फिर कहानियों को जोड़

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज कल्चर कारवा की कहानी हमें लेकर जा रही है पान के इतिहास की तरफ। पान सिर्फ चबाने की चीज नहीं होती, ये वो रस्म है जहां बात शुरू भी होती है और खत्म भी। पान की बात की जाए तो पान की सबसे पुरानी जड़ी हमें हिस्ट्री से मिलती है। कहा जाता है पान कोई नया फैशन नहीं, इसकी जड़ें भारत के इतिहास में 4000 से 5000 साल पीछे जाती हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में पान का जिक्र मिलता है। चरक संहिता भी ये बताती है कि पान आज का नहीं, ये तो सदियों पुराना है। शायद इसलिए पान को कहा गया डाइजेशन सुधारने वाला या फिर माउथ क्लींजर, साथ ही माइंड बूस्टर। और अगर थोड़ा पीछे और जाएं तो रामायण और महाभारत में पान का जिक्र तंबुल के नाम से मिलता है। मतलब जब हम पान खा रहे होते हैं तो हम सिर्फ टेस्ट नहीं इतिहास चबा रहे होते हैं। और अगर पान की बात की जाए तो पान का इतिहास राजघराने से मिलता है। कहा जाता है मुगल काल में पान सिर्फ खाने की चीज नहीं था, ये स्टेटस सिंबल बन चुका था। फिर चाहे बेगमों के लिए अलग पान की बात की जाए या फिर बादशाह के लिए एक अलग पान, चांदी के चूना दानी, सोना चढ़ा हुआ पान दान और पान बनाने के लिए अलग से ट्रेंड लोग आते थे। वो कहा है कि दरबार में बात से पहले पान आता था, क्योंकि जुबान में मिठास हो तो फैसले भी नर्म हो जाते हैं। मुगल दौर में तो पान का इतिहास देख लिया, लेकिन पान का सफर भारत में कैसे शुरू हुआ इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कल्चर कारवा लेकर एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं आप सभी के पास रेडियो महारानी 89.6 FM पर। आज कहानी सुन रही है पान की। ये कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं, आज के इंडिया की भी है। मुगल एरा में पान का कनेक्शन तो देख लिया, अब बात करते हैं पान का भारत में सफर कैसे शुरू हुआ। कहा जाता है कि हर शहर ने पान को अपनी बोली सिखा दी। फिर बात की जाए बनारस की तो मीठा पान गुलकंद सौंफ वाला, शादी और संस्कारों में हिस्सा लेने वाला पान।
1: खई के पान बनारस वाला।
0: फिर बात की जाए कलकत्ता की जहां फेमस है फायर पान। थोड़ी ही दूर यूपी बिहार वाला पान। जहां बात की जाए सादा पान, रोजमर्रा की आदत है लोगों की। इतना ही नहीं, बात की जाए अपने हैदराबाद की तो कहा जाता है जर्दा पान, यानी कि मुगल टच वाला पान। वो कहा है कि इंडिया में पान सिर्फ खाया नहीं जाता, निभाया भी जाता है। आखिर इतनी तारीफ के बाद भी आप पूछ रहे हैं कि पान में क्या खास है, तो बात करते हैं आज कल्चर कारवा में पान की खासियत की। पान के पत्ते में नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। कहा जाता है ये डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, साथ ही सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ाता है, और इतना ही नहीं माउथ फ्रेश रखता है। लेकिन फिर भी याद रखने की बात ये है कि जर्दा मिलाने के बाद ये सेहतमंद पान भी हानिकारक हो जाता है। देखा कितना इंटरेस्टिंग सफर रहा इंडिया में पान का। और इतना ही नहीं, मुगल एरा से इंडिया के सफर तक पान ने अपनी एक जगह बना ली, और आज पान और इश्क का एक अलग कनेक्शन देखने को मिलता है। इस कनेक्शन को जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ बात कर रहे हैं आज पान और इश्क के कनेक्शन की। कहा जाता है पुराने जमाने में पान सिर्फ स्वाद नहीं था, ये इश्क का इशारा होता था। लड़के पान भेजे, लड़के एक्सेप्ट करें तो बात पक्की मानी जाती थी। वो कहा है कि पान के पत्ते पर लिखी थी मोहब्बत और जवाब हाथों से मिल जाता था, ना जुबान की जरूरत थी ना इशारों की, ये पान अपना काम पूरा कर जाता था।

का सिर्फ इतिहास ही नहीं, पान का सफर भी बहुत खूबसूरत रहा। पान की अगर बात की जाए तो पान ने हर कल्चर में अपनी एक अहमियत बना ली। कहा जाता है पान इन पॉप कल्चर अपने आप में बड़ा फेमस है। फिर चाहे बात हो, बॉलीवुड ने पान को स्टाइल और स्वैग बना दिया। वो कहा है कि खाई के पान बनारस वाला।

एक कल्चरल अनाउंसमेंट था। और इतना ही नहीं, अगर इसके पीछे की ट्रिविया की बात की जाए तो कहा जाता है इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बीटल लीफ प्रोड्यूसर है। और साथ ही बात की जाए बनारसी पान की, तो बनारसी पान को GI टैग मिल चुका है। और इतना ही नहीं, पान की तारीफ में साउथ ईस्ट एशिया में पान भारत के ट्रेडर्स ले गए, इसीलिए शायद पान को पहले मेडिसिन माना जाता था। वो कहा जाता है कि पान आज भी इश्क फरमाता है। पान से जुड़ी हुई और भी बातें जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

कल्चर कारवा का आज का सफर हमें ले आया पान के इतिहास की तरफ। वो कहा है कि हर पान की दुकान पर सिर्फ पान नहीं मिलता, वहाँ मिलती है शहर की गॉसिप, पुरानी कहानियाँ और थोड़ा सा वक्त। अब बात करें पान की दुकान की। कहा जाता है पान की दुकान छोटी भले ही होती है, पर वहाँ पूरा शहर मिल जाता है। फिर चाहे बात की जाए पॉलिटिक्स की, प्यार की, गिले शिकवे की और थोड़ी सी जिंदगी की। वो कहा है कि पान की दुकान पर वक्त रुक जाता है और लोग खुद को थोड़ा सा

आज कल्चर कारवा के सफर में हमने बात की पान की कहानी के बारे में, पान के इतिहास के बारे में, पान के स्वाद के बारे में। तो मुझे दीजिए इजाजत, समय हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ, एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

तो कभी कोई फिल्म अपनी कहानी से दिल में जगह बना लेती है, और जब बात हो आयुष्मान खुराना की तो उनकी फिल्में सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करती बल्कि हर बार कुछ नया सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं।

0: पलक और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और आज का सफर है आयुष्मान खुराना स्पेशल, जहां हम उनकी फिल्मों के कुछ मजेदार और अनसुने किस्से जानेंगे और साथ ही सुनेंगे उन फिल्मों के यादगार गाने। तो चलिए शुरू करते हैं उस फिल्म से जिसने आयुष्मान खुराना को बॉलीवुड का नया चेहरा बना दिया, और उस मूवी का नाम है विक्की डोनर।
1: मुझे कोई अफेयर नहीं करना है तुम्हारे साथ।
2: तो फिर डेट पे क्यों आई?
1: ऐसे आई
3: कोठे उत्ते बैके अखियां मिलांदे, ना जाना हमें तू कभी छोड़।
0: कभी कभी एक फिल्म सिर्फ हिट ही नहीं होती बल्कि किसी एक्टर की पूरी जिंदगी बदल देती है, और आयुष्मान के लिए विक्की डोनर बिल्कुल वैसी ही फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म से आयुष्मान ने अपना बॉलीवुड एक्टिंग डेब्यू किया था। और पहली ही फिल्म में उन्होंने ऐसा इम्प्रेशन छोड़ा कि ऑडियंस ने उन्हें दिल से एक्सेप्ट कर लिया। वैसे जब कोई डेब्यू फिल्म इतनी पसंद की जाए तो अवार्ड्स भी पीछे नहीं रहते। इस फिल्म को 60th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का नेशनल अवार्ड मिला था, यानी कि ऑडियंस को फिल्म पसंद आई ही, साथ ही क्रिटिक्स ने भी इसे खुले दिल से अप्रिशिएट किया था। और जब बात हो इस फिल्म की तो एक गाना सबसे पहले याद आता है, पानी दा रंग। लेकिन इस गाने को खास बनाने वाली बात यह है कि इसे सिर्फ आयुष्मान ने गाया ही नहीं था बल्कि अपने दोस्त के साथ मिलकर कंपोज भी किया था, और इसी गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर भी मिला। मतलब पहली फिल्म में एक्टिंग भी हिट और सिंगिंग भी सुपर हिट। वैसे इस फिल्म में एक वेडिंग सीन है जिसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग कहानी छुपी हुई है। वो ये है कि मेकर्स ने बजट बचाने के लिए एक रियल वेडिंग वेन्यू का सेटअप यूज किया था। शादी खत्म होने के बाद वही डेकोरेशन और अरेंजमेंट्स यूज करके पूरा सीन शूट किया गया, और हैरानी की बात ये है कि पूरा वेडिंग सीक्वेंस सिर्फ एक रात में शूट कर लिया गया। यानी कि हम मिडिल क्लास लोग ही कंजूसी नहीं दिखाते, इस फिल्म में मेकर्स ने भी पूरी कंजूसी दिखाई। अब इतना सब सुनने के बाद लगता है कि इस फिल्म में क्रिएटिविटी सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, कैमरा के बैक साइड भी थी। और एक और खास बात इस मूवी की ये है कि ये फिल्म एक्टर जॉन अब्राहम की पहली प्रोडक्शन फिल्म थी, यानी जिस फिल्म ने आयुष्मान को एक्टर के रूप में लॉन्च किया उसी फिल्म ने जॉन अब्राहम को प्रोड्यूसर के रूप में एक नई पहचान दी। तो जब इस मूवी की इतनी बात हो ही गई है तो सुनते हैं इस मूवी से वो गाना जो आज भी शाम के वक्त दिल को एक अलग ही सुकून दे देता है। और अगर आप इस वक्त किसी को याद कर रहे हो तो ये गाना आपके दिल तक जरूर पहुंचेगा। गाने का नाम है पानी दा रंग, और इस गाने के बाद बताऊंगी आपको ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें प्यार भी है, 90s वाली सिंप्लिसिटी भी है, और एक ऐसा गाना भी है जिसे सुनते ही शादी वाला मूड ऑन हो जाता है। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, तब तक के लिए ये गाना आपके लिए।

मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ। जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, होड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
1: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं पलक आपके साथ। अब बात करते हैं आयुष्मान खुराना की एक और यादगार फिल्म की, जिसका नाम है दम लगा के हाइशा।
1: तू जरा पागल, तूने मुझको है चुना।
0: कभी कभी कुछ कहानियां अपने वक्त से पहले लिख दी जाती हैं और फिर सालों बाद दुनिया उन्हें समझने के लिए तैयार होती है। दम लगा के हाइशा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। इस फिल्म की स्क्रिप्ट 2007 में लिख ली गई थी, लेकिन ऑडियंस तक पहुंचने में लगभग 8 साल लग गए। इसको हम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कह सकते हैं, जो कि ऑडियंस और फिल्म के बीच देखा गया। इस फिल्म में संध्या का करेक्टर जितना रियल लगा, उतनी ही इंटरेस्टिंग उसकी कास्टिंग स्टोरी भी है। और वो ये है कि भूमि पेडनेकर को इस रोल के लिए लगभग 15 किलो वेट गेन करना पड़ा था। यहाँ हम सब वेट लूज करने की बात करते हैं और इनको वेट गेन करना पड़ा। और ये किसी एक्टिंग स्कूल से नहीं आई थी, बल्कि यशराज फिल्म में असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करती थी। जरा सोचिए, जो लड़की दूसरे एक्टर्स के ऑडिशन लेती थी, एक दिन खुद कैमरा के सामने आई और सबका दिल जीत लिया। और जब मेकर्स ने उन्हें एक्टर्स को सीन समझाते हुए देखा, तभी इन सब ने डिसाइड कर लिया था कि हमारी संध्या हमें मिल चुकी है। वैसे तुम्हें इस मूवी का दर्द करारा गाना पसंद है तो उसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है। वो ये है कि इस गाने ने 17 साल बाद अनु मलिक, कुमार सानू और साधना सरगम को फिर से एक साथ ला दिया था। मतलब गाना सुनते ही लगता है जैसे 90s ने एक बार फिर अटेंडेंस लगा दी हो। और लिरिक्स लिखने वाले वरुण ग्रोवर सिर्फ लिरिसिस्ट ही नहीं, IIT ग्रेजुएट, कॉमेडी राइटर और स्टैंड अप कॉमेडियन भी रह चुके हैं। यानी टैलेंट भी फुल कॉम्बो पैक था। एक और इंटरेस्टिंग बात है इस मूवी की, वो ये है कि दर्द करारा गाना अनु मलिक के ही पुराने गाने तेरे चेहरे पे से इंस्पायर माना जाता है। अब जरा देखिए, कुछ चीजें पुरानी जरूर होती हैं, लेकिन उनका चार्म कभी पुराना नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जैसे 90s के शादी वाले डांस स्टेप्स। तो इस मूवी की मैंने और तुमने इतनी बातें कर ही ली हैं, तो अब सुनते हैं वो गाना जिसे सुनते ही लगता है कि शादी में किसी चाचा जी ने कोट उतार कर डांस फ्लोर पर आग लगा दी है। और अगर आपके पैर भी ऑटोमेटिकली थिरकने लगें, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। सुनते हैं दर्द करारा गाना, और इस गाने के बाद बताऊंगी एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसकी हीरोइन सोसाइटी के रूल्स से ज्यादा अपने दिल की सुनती थी। और उसकी कहानी में मोहब्बत भी थी, दोस्ती भी थी, और एक छोटे शहर की बड़ी सी दुनिया भी। किस मूवी में थी ये हीरोइन बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

0: 89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। अब बात करते हैं बरेली की बर्फी की।
1: आपके कहने का मतलब यह है कि आप बरेली की बर्फी हैं?
2: टिट्टो,
1: पर ये कैसे हो सकता है?
2: वही तो हम जानना चाहते हैं।
0: अच्छा, हर छोटे छोटे शहर में ना एक ऐसी लड़की जरूर होती है जो दुनिया के बनाए रूल्स से थोड़ा अलग चलती है। और बरेली की बर्फी की बिट्टी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। स्कूटर चलाती थी, अपने डिसीजंस खुद लेती थी और लोग क्या कहेंगे इससे ज्यादा ये सोचती थी कि मुझे क्या करना है। और शायद इसीलिए ऑडियंस को बिट्टी इतनी पसंद आई। वैसे तुमको जानकर ये हैरानी होगी कि बिट्टी का करेक्टर सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था। डायरेक्टर अश्वनी अय्यर तिवारी ने इस करेक्टर को अपनी रियल लाइफ से इंस्पायर होकर लिखा था। उनका बचपन भी एक छोटे शहर में गुजरा और उन्होंने वही इमोशंस और एक्सपीरियंसेस बिट्टी के करेक्टर में डाल दिए। अब जब करेक्टर इतना पर्सनल हो तो उसके लिए एक्टर्स भी परफेक्ट होने चाहिए ना। और डायरेक्टर की पहली पसंद थे आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव, यानी चिराग और प्रीतम के रोल्स में शुरू से ही उन्हीं दोनों को देखा गया था। और यार सच कहूँ तो फिल्म देखने के बाद लगता है कि मेकर्स का डिसीजन बिल्कुल सही था। वैसे फिल्म का नाम बरेली था लेकिन उसकी गलियां और माहौल अलाहाबाद की यादों से इंस्पायर था। डायरेक्टर ने अपने बचपन की मेमोरीज को फिल्म में पिरो दिया, मतलब लोकेशन एक शहर की थी और एहसास दूसरे शहर के। और अगर तुमको कृति का करेक्टर इतना नेचुरल लगा तो उसके पीछे भी काफी मेहनत थी। वो ये थी कि कृति ने इस रोल के लिए स्कूटर चलाना और स्मोकिंग दोनों सीखा। स्मोकिंग करना भी एक कला है, ये मुझे इस मूवी से पता लगा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ये चीजें नहीं की थी। अब एक्टिंग का असली मजा भी तभी आता है ना जब एक्टर करेक्टर को जीने लगे। और अगर इस फिल्म के गाने की बात की जाए तो उन्होंने तो अलग ही जादू कर दिया था। म्यूजिक कंपोजर तनिष्क बख्शी ने पूरा साउंड ट्रैक सिर्फ 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया था और उसी साउंड ट्रैक का एक गाना आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में अपनी जगह बनाए हुआ है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी को याद करते वक्त गाने सुनते हैं और फिर वही गाना सुनने के बाद रोने लगते हैं? क्योंकि मेरी आधी गानों की प्लेलिस्ट तो लोगों की यादों से ही जुड़ी हुई है। अगर ऐसा है तो अगला गाना आपके लिए ही है। आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए नज्म नज्म के एहसास को। और इस गाने के बाद बताऊंगी आपको ऐसी फिल्म के बारे में जहां सिंपल से टेलीफोन को भी सुपरस्टार बना दिया था। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। तब तक के लिए ये गाना आपके लिए।

0: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए गधा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
2: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।
3: हम आप तक पहुँचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम है रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं पलक आपके साथ। अब बात करते हैं आज की आखिरी फिल्म की, जिसका नाम है ड्रीम गर्ल।
1: हेलो, कौन बोल रहा?
2: मैं पूजा बोल रही हूँ।
1: पूजा, कितना सुंदर नाम जी आपका, और आवाज कितनी मीठी है आपकी।
0: अच्छा, कभी आपके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आई है और आपने सोचा हो कि ये कौन है? बस ड्रीम गर्ल की पूरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ फोन के दूसरे तरफ थी पूजा और आधा शहर उसकी आवाज का दीवाना था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस मूवी की ये है कि फिल्म में जो फीमेल वॉइस तुम लोगों ने सुनी, उसके लिए किसी डबिंग आर्टिस्ट का यूज नहीं किया गया था। पूजा की पूरी आवाज खुद आयुष्मान खुराना ने दी थी, मतलब एक्टिंग भी, डायलॉग्स भी और आवाज का जादू भी। और सच कहूँ, इतनी कन्विंसिंग वॉइस थी ना कि कई लोगों को यकीन ही नहीं हुआ था कि आयुष्मान खुराना की ये आवाज हो सकती है। वैसे ड्रीम गर्ल से आयुष्मान का एक और कनेक्शन भी था, वो ये था कि इस फिल्म में उन्होंने फिर से अनु कपूर के साथ काम किया।

और ये जोड़ी विकी डोनर के बाद दोबारा स्क्रीन पर नजर आई। और जब भी ये दोनों साथ आते हैं ना, तो एंटरटेनमेंट का मीटर थोड़ा और ऊपर चला जाता है। अब फिल्म का टाइटल ड्रीम गर्ल था, लेकिन शुरुआत में इसका नाम कुछ और सोचा गया था। मेकर्स पहले इसका टाइटल गुगली रखना चाहते थे, लेकिन बाद में ड्रीम गर्ल नाम फाइनल हुआ। और सच कहूँ तो आज ये नाम ही परफेक्ट लगता है। वैसे ड्रीम गर्ल नाम सुनते ही एक और नाम याद आता है, हेमा मालिनी जी का। और फिल्म में भी इसका एक मजेदार रेफरेंस दिया गया था। वो ये था कि अनु कपूर अपने पर्स में हेमा मालिनी की फोटो रखते हैं और उन्हें अपनी ड्रीम गर्ल बताते हैं, यानी ओरिजिनल ड्रीम गर्ल को भी एक प्यारा सा ट्रिब्यूट दिया गया। और एक और छोटा सा कनेक्शन है, वो ये है कि आयुष्मान फिल्म में वही बुलेट चलाते नजर आए हैं जो उनके दोस्त स्माइली की थी। और फैंस ने नोटिस किया कि बधाई हो में भी वो इसी बुलेट पर नजर आए थे। मतलब कुछ चीजें लकी चार्म बन ही जाती हैं, जैसे कि कोई नंबर, कोई कलर और यहाँ पे बुलेट। तो ड्रीम गर्ल की इतनी बातें हो ही गई हैं, अब सुनते हैं वो गाना जिसे सुनते ही लगता है लैंडलाइन मोबाइल और रिचार्ज वाले भी इमोशनल हो जाएंगे। और अगर गाना सुनते वक्त आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए तो समझ लीजिए पूजा का मैजिक आज भी काम कर रहा है। गाने का नाम है दिल का टेलीफोन। आज म्यूजिकल डायरीज में हमने आयुष्मान खुराना के सफर के कुछ खूबसूरत पन्ने खोले, विकी डोनर की शुरुआत से दम लगा के हईशा के जज्बात तक, बरेली की बर्फी की मिठास से और ड्रीम गर्ल के मजेदार टेलीफोन कनेक्शन तक। एक बात जो आयुष्मान खुराना को अलग बनाती है वो ये है कि उनकी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती बल्कि हर बार एक नया नजरिया भी दे जाती हैं। मैं हूं पलक और आप सुन रहे थे म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। फिर मुलाकात होगी एक नए एक्टर, नए गाने और नए फिल्मी किस्सों के साथ। तब तक अपनी यादों की प्लेलिस्ट को संभाल कर रखिए, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो हमेशा दिल में बजते रहते हैं। बाय बाय।

0: मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
1: बाबा, बाबा।
0: अरे मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
2: और आगे
0: याद रखिए, हेलमेट पहनने वालों का कभी चलान नहीं कटता।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
4: शुरू हो जा।
5: हाँ तो अर्ज किया है?
4: अर्ज
5: अभी करते हैं, सुनो।
4: इरशाद,
5: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
4: वाह वाह वाह वाह।
5: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
4: तुम अभी इसी लायक।
5: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, OTP सब दे दूंगा।
4: अच्छा,
5: बस मेरी शायरी सुन लो।
4: फिर
5: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
4: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
5: अरे

0: यहाँ गानों में है अपनी वाली बात और कहानियों में है जिंदगी का एहसास। हमें जो भी सुने यही बोले ये हुई ना बात। हम है आपका अपना रेडियो, रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
1: गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए कलेशी हूँ,
2: यार निया सुन।
3: हाँ सिया बोल।
2: यार मैंने पूछा कैसे हो, उसने बोला बढ़िया, ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, और जब मिलने के लिए बोलो तो कहता है टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। जिस लड़की को जानता तक नहीं है उसकी फोटो पे भी लाइक कर देता है, और जब पूछो तो बोलता है बेबी बस फ्रेंड है, और पता है रील्स पे रिप्लाई ना करके रिएक्ट करके छोड़ देता है, और जब मैं कंप्लेन करूं तो मुझे कलेशी कह देता है।
3: सही कह रही है, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कलेशी कहते हैं।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: आज की सेफ्टी टिप्स सुन लो, वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर 1, जियो टैग मत लगाओ, क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई शादी.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स, उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो, पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन ऑरा माइनस हो जाएगा।
2: हो या गांव की गलियां, यहां हर बात में है अपनापन, हर आवाज में है कहानी, क्योंकि ये है रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: चलना ओ सनम।
1: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
2: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
1: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
3: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
1: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
3: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
1: समझ जाऊं, ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: कभी कभी ना ऐसा लगता है कि जो बातें हम नॉर्मल जिंदगी में कह नहीं पाते वो किसी नज्म में निकल जाती हैं, किसी कविता में सांस लेने लगती हैं। और शायद इसीलिए हर पोइट सिर्फ लिखता नहीं है बल्कि अपना एक हिस्सा छोड़ जाता है अल्फाजों में। तो आज हम आज दिल शायराना में आपको ऐसे ही पोइट और पोइट्रेस से मुलाकात आपकी कराने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरिता जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत शुक्रिया
0: जी। अजय अज्ञात जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गीत जी।
0: जी, तो हम सबसे पहले सवाल पर आते हैं। तो सवाल मेरा यही है कि कविता लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, आर्ट का एक सबसे खूबसूरत रूप माना जाता है कविता। तो कविता आपने क्यों चुना, ये आपकी जरूरत थी या ये जो इमोशंस थे वो बचपन से ही पनप गए थे? सरिता जैन जी, आपसे सवाल है ये।
1: बिल्कुल गीत जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जरूरत नहीं होती, ये अंदर ही होता है
0: जी।
1: वो मतलब आपके अंदर ही पनपता है।
0: हाँ जी।
1: इसकी पहली शर्त है कविता की संवेदनशीलता। आप कितने संवेदनशील हैं चीजों को लेकर, आप बचपन से ही होते हैं। कई बच्चे आपने देखे होंगे, मतलब हर चीज को बहुत नजदीकी से महसूस करते हैं, जैसे फूल पत्ती है सभी देख रहे हैं, लेकिन वो उनको बहुत अलग तरीके से देखते हैं, प्रकृति को अलग तरीके से देखते हैं, लोगों को अलग तरीके से, वो उनको अलग बनाता है औरों से। तो कहीं ना कहीं कविता का जन्म होता है हमारे अंदर।
0: जी जी सर, आपसे भी यही सवाल है, कविता लिखना आपने कब शुरू किया, क्या थॉट आया ऐसे मन में कि अब तो मुझे लिखना शुरू करना चाहिए?
2: गीत जी, मेरा ये एक्सपीरियंस है और ये मानना है कि बच्चा जब टीन एज में होता है तो उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है, डेवलप होती है उसकी बुद्धि। तो उसी समय पढ़ाई के साथ साथ उसकी कहीं ना कहीं और रुचि भी रहती है
0: जी।
2: चाहे वो खेल कूद में जाए, चाहे वो पेंटर बने, चाहे वो सिंगिंग करे, चाहे वो राइटर बने, तो कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई हॉबी उस टाइम में डेवलप होती है
0: जी।
2: तो ये टीनेज में ही 9वीं-10वीं कक्षा में मेरे को भी ऐसा लगा कि कुछ, जब मैं सुनता था पढ़ता था, रेडियो भी काफी सुनता रहा मैं, उस टाइम में टीवी इतना नहीं होता था
0: जी।
2: लेकिन रेडियो का बहुत बड़ा फैन रहा मैं, तो उसमें गाने सुनना, कविताएं उसमें आती थी या जो भी लिटरेरी प्रोग्राम्स आते थे उनमें इंटरेस्ट था। और धीरे धीरे वो इंटरेस्ट जो है शायद मेरी भी एक हॉबी बन गया
0: जी। आपका जो ये पेन नेम है अज्ञात, ये आपने कहां से इंस्पायर्ड होके चूज किया?
2: जहां तक मुझे याद आ रहा है कि उस दौर में जब 9वीं-10वीं में रहा टीनेज में
0: जी,
2: तो अखबार हम लोग पढ़ते थे, तो उसमें अखबार में कहीं कहीं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी लोकोक्ति, कुछ कहावतें आती थी और जिनके आगे किसी का अज्ञात लिखा रहता था।
0: अच्छा जी।
2: तो मुझे जहाँ तक याद है मुझे लगा कि कभी अगर मुझे पेन नेम रखना पड़ा तो ये अज्ञात ही रखूंगा,
0: पहले से ही डिसाइडेड
2: ऐसा लगा।
0: हाँ जी।
2: और फिर वो जुड़ गया नाम के साथ। और दूसरी बात ये भी है कि मैं लाइमलाइट में बहुत ज्यादा नहीं रहना पसंद करता हूँ, मेरा स्वभाव भी ऐसा है कि मैं अपना काम गुपचुप करता रहता हूँ, तो वो अजय अज्ञात नाम पड़ गया।
0: ओके हाँ जी, बातें बहुत खूबसूरत चल रही हैं, लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है आज दिल शायराना, मैं आपके साथ गीत हूँ। मैम आपसे एक सवाल है। एक समय था जब मुंशी प्रेमचंद जी जैसे जो कवि थे वो समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे थे, इस तरीके की कविताएं लिख रहे थे। तो क्या लगता है जो आजकल कविताएं लिखी जा रही हैं, क्या ये भी समाज को आईना दिखा रही हैं या लोग ज्यादा उसी पर श्रृंगार पर ज्यादा एम्फसाइज करते हैं?
1: नहीं ऐसा नहीं है, ये अपना अपना एक क्या कहें उसे हम, एक अपना वो चुनते हैं लोग
0: जी,
1: अपने मतलब अपना इंटरेस्ट किस चीज में है उनको। अब जैसे मान लो कोई एक श्रृंगार का कवि है, वो श्रृंगार के लिए सोचेगा लिखेगा कि उसकी रुचि उसमें श्रृंगार में। लेकिन एक कवि है वो वीरस का भी कवि है हमारे यहाँ, हास्य की कवि भी है। ऐसे ही हालात हाजरा को कह रहे हैं, हालात हाजरा क्या है, जो आज के दौर की बातें हैं, उसके भी कवि हैं, उसके भी शायर हैं, वो उन्हीं के लिए रचना लिखते हैं। और जैसे मैं हूँ, मैं तो हर विषय को चुनती हूँ। मैंने जहाँ श्रृंगार लिखा वहाँ से भी लिखा, फिर वहाँ पर मैंने हालात हाजरा को भी लिखा
0: जी,
1: जो आज के दौर के मुद्दे उठाए
0: जी, जी, जी।
1: तो ये तो कवि की अपनी चॉइस है कि वो किस तरह से सोचता है। और हमारे यहाँ जो हमारा जीवन है वो हर तरह से गुजरता है, हमें श्रृंगार भी चाहिए, हमें हास्य भी चाहिए, हमें वीरस भी चाहिए देश के लिए।
0: Exactly.
1: और हमको जो आज की स्थितियां हैं, परिस्थितियां, उन पे कहने के लिए भी कलम चाहिए, अपनी आवाज भी उठाने के लिए एक आवाज चाहिए बुलंद।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए ये जीवन के सब रंग हैं, हम किसी भी रंग को फीका नहीं कह सकते भाई वो हास्य लिख रहा है तो बेकार है, या वो श्रृंगार लिख रहा है तो बेकार है, या फिर वो हालत हाजरा लिख रहा है, वीरस लिख रहा है। हर चीज हमारे जीवन की जरूरत है, तो जो भी कलम उठा रहा है, जो भी लिख रहा है, मेरे ख्याल से वो सब हमारी जरूरतें हैं, हमारे समाज की, हमारे जीवन की
0: जी।
1: तो हर रंग खूबसूरत है अपनी जगह
0: जी। सर एक सवाल आपसे है, हर पोइट के जो शब्द होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, तो आपके नजरिए से अल्फाज किस चीज से पैदा होते हैं, ऑब्जर्वेशन से या अपने खुद के पर्सनल इमोशन से वो पैदा होते हैं?
2: गीत जी, मेरा तो ऐसा मानना है कि आदमी, कोई भी व्यक्ति कितना पढ़ता है, कितना सुनता है, कितना गुनता है, उससे उसकी वकबलरी बनती है। शब्द जो हैं हमारे आसपास बिखरे हुए हैं
0: जी।
2: जितना हम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, किसी के पास बैठते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो यही एक माध्यम है। और जितना ज्यादा हमारी वकबलरी होगी, जितने ज्यादा शब्द ज्ञान होगा, तभी हम उसका अच्छे से प्रयोग कर सकेंगे। और रही बात ये लिखने की, जैसे आप कह रहे थे कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से काम कर रही है
0: जी,
2: ये एक उम्र होती है और एक मानसिक स्थिति होती है
0: जी।
2: उम्र के साथ साथ आदमी थोड़ा गंभीर होता चला जाता है
0: जी,
2: और उसकी चॉइस भी डिपेंड करती है, उसका पालन पोषण कहाँ हुआ है, किन परिस्थितियों में, उसके आसपास उसके मित्र लोग कैसे हैं, कैसे माहौल में वो रहता है, ये सब बातें उसको गंभीर बनाती हैं या उसको हंसी मजाक लिखने के लिए मजबूर करती हैं या प्रेम रस के लिए मजबूर करती हैं। तो ये परिस्थिति और एक उम्र, इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। और आज के जो युवा लोग हैं वो कह तो बहुत कुछ रहे हैं। और मैं ये भी एक बात रखना चाहता हूँ कि हम जब कवि शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मैं अपने आप को कवि नहीं मानता।
0: हाँ जी,
2: कवि बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है कवि की। इसको ईश्वर के बाद दूसरा किसी को माना गया है तो कवि को माना गया है। जो सृजन करता है ये मामूली बात नहीं है। तो हम ठीक है, एक काव्य प्रेमी हो सकते हैं, अच्छे श्रोता हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को मैं इस काबिल नहीं समझता कि मेरे को कोई कवि या शायर कहे। तो ये जितना भी इसमें सीखो, जितना हम इसमें गहन इसको सीखने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर डीप थॉट करेंगे, तब हमारे पास शब्द होंगे, तभी हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को लेखन में उतार सकेंगे, कविता कह सकेंगे। और ये तो विधाएं हैं, कोई गीत कहेगा, कोई कविता कहेगा, कोई गजल कहेगा, कोई कहानी कहेगा, कोई नॉवल भी कहेगा, तो ये सब विधाएं तभी आएंगी जब उसके पास शब्द ज्ञान होगा
0: जी।
2: और आजकल के बच्चे सीखने में कम और कहने में ज्यादा
0: वायरल, इनफेक्ट वायरल होने में ज्यादा,
2: उनको सिर्फ ये है कि बस मैंने जो कुछ कहना है वो सही है या गलत है नहीं मालूम। इवन कई बार जो है विधाओं के नाम भी लिख देते हैं कि मैंने ये गीत लिखा है, मैंने ये गजल कही है, लेकिन उनसे अगर ये पूछा जाए कि इसका ग्रामर क्या है, क्या वो सही उस पे मापदंड के ऊपर है, तो उन्हें नहीं पता होता गीत के क्या मापदंड हैं, गजल का क्या मापदंड है। तो मेरा ये अनुरोध है और ये सलाह है लोगों को कि हमें उसको सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए, तब हम उस कविता का कोई नाम दें
0: जी।
2: और बाकी कविताएं जो हैं वो छंदबद्ध होती है तो मन को प्रिय लगती है, गाने गेयता होती है तो मन को प्रिय लगती है, चाहे कोई भी विधा हो। तो बस यही है
0: जी। बातें बहुत खूबसूरत चल रही हैं, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छट के शो है आज दिल शायराना। मैं आपके साथ गीत हूँ।
1: मैम आपसे एक सवाल है, स्टेज पोएट्री का एक अलग ही प्रेशर होता है, चाहे वो ओपन माइक हो या आपकी काव्य गोष्ठी हो, तो जहाँ लोग सिर्फ सुनते नहीं है बल्कि रिएक्ट भी करते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि जो ये स्टेज की एक्सपेक्टेशंस है वो आपकी क्रिएटिविटी को अफेक्ट करती है?
2: हाँ करती है। जैसे हम एक नशिस्त में बैठे हैं, काव्य गोष्ठी में बैठे हैं, वहाँ हम अलग तरह की पोएट्री पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ सुनने वाले जो प्रबुद्ध लोग हैं सब ज्ञाता हैं
1: जी,
2: क्योंकि जाएंगे वही जो अच्छे जानकार होंगे। जब हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ प्रबुद्ध नहीं है, जो श्रोता है वो इतना ज्यादा जानकार नहीं है
1: जी।
2: उनको तो सिर्फ वो सुनना है जो उन्हें अच्छा लगे, जो वो समझ पाए। अगर हम वहाँ पर गुड़ उर्दू में बोलने लगेंगे जाकर तो नहीं समझेंगे
1: एग्जैक्टली,
2: है ना। हमको उनके लिए एक इजी लैंग्वेज, जो आम बोलचाल की भाषा है, उस तरह की लैंग्वेज में हमें पोएट्री करनी पड़ेगी, नहीं तो समझेंगे।
1: आई थिंक आपके जो इमोशंस है वो उतने लेवल की नहीं निकल पाती होंगी जो आपने सोचकर जो लिखी थी वो कविता।
2: हाँ वो समझेंगे नहीं ना उन बातों को। हाँ आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं, जैसे एक नशिस्त में गोष्ठियां बैठे हैं, वहाँ बड़े लोग बैठे हैं, जानकार हैं, उन्हें पता है ग्रामर क्या है, क्या उर्दू है और क्या उसका लेखन है। अच्छा आम आदमी को नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम ये छंदबद्ध है या फ्री है, ये मुक्तक फ्री है, वो तो सिर्फ ये जानता है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पर एंजॉय करने आया हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लगना चाहिए या मुझे समझ आना चाहिए, तो उस हिसाब से वो पोएट्री वहाँ बदल जाती है। और अगर हम वही की काव्य गोष्ठी में बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, तो वहाँ अलग तरह की होती है। तो जैसे जैसे जगह होती है उसको उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है, उसी हिसाब से आपको कुछ लेखन भी उस हिसाब से करना पड़ता है। मतलब ये जरूरत है, जो स्टेज पे जाएगा उसकी जरूरत है ये, मतलब यही सच्चाई। अगर हम वहां जाकर आप ऐसी पोएट्री पढ़ देंगे जो लोगों को समझ नहीं आएगी, चुप हो जाएंगे, तो कुछ खामोश या फिर हूट भी कर देते हैं कई बार
1: जी, जी।
2: क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी
1: जी जी जी। सर इसी से एक मिलता जुलता सवाल है, बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन कनेक्ट वही हर कोई नहीं कर पाता, जैसे कि अभी मैम ने कहा, तो आपके अकॉर्डिंग एक अच्छी कविता की पहचान क्या है?
3: देखिए मेरे अनुसार अच्छी कविता वह है जिसमें सरल भाषा हो, संप्रेषणीय हो
1: जी,
3: और आम व्यक्ति से जुड़ी हुई उसके अंदर भाव हो,
1: हाँ जी,
3: उसकी समस्याएं हो या कोई ना कोई ऐसी चीज हो जो समाज को दिशा दिखाए।
1: हाँ जी,
3: लिखने का कोई मोटिव होना चाहिए, पर्पज होना चाहिए
1: जी जी।
3: सिर्फ किसी को हंसाने के लिए या मनोरंजन करने के लिए वह एक सीमित होना चाहिए, उसके लिए हर आदमी उस तरह से करेगा या जैसा हम परोसने लग जाएंगे लोगों को, जैसे अभी मैडम ने भी कहा कि हम श्रोता कैसे हैं उसको देखकर अपनी कविता सुनाते हैं
1: जी।
3: लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि हम अपने श्रोता बना कैसे रहे हैं, हम उनको क्या फुहरता सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं
1: जी,
3: या हम उसमें उनको कुछ नैतिक शिक्षा दे रहे हैं
1: जी।
3: हमारे टाइम में विद्यालय में भी एक पीरियड हुआ करता था मोरल एजुकेशन का, आजकल वो स्कूल के सिलेबस से गायब है। तो जैसा हम बच्चों के अंदर डालेंगे संस्कार, युवा पीढ़ी में जैसी हम बातें करेंगे, जैसा माहौल कर देंगे, वैसे ही वो सीख जाएंगे। और हमें ये भी देखना है कि हमें उनकी रुचि किधर बनानी है,
1: हाँ जी।
3: हम हर चीज उनके अनुसार लिखें ये जरूरी नहीं है,
1: बिल्कुल
3: नहीं, तो आप कभी भी अपने काम के प्रति वफादार या गंभीर नहीं रह सकते
1: जी।
3: आपको सिर्फ ये देखना है कि किसी का मन खुश रखना है, वही एक नहीं होना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा मंचों पर कैसे वो संचालक जो हैं महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, दूसरों के साथ फुहरता से पेश आते हैं, आपस में खींचातानी चुटकुलेबाजी करते हैं मनोरंजन के लिए, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, मेरा ये मानना है। इसलिए मैं कहता हूँ कवि होना बड़ी बहुत बड़ी बात है,
1: जिम्मेदारी बड़ी बात है।
3: उनको आप कवि कहें शायर कहें, मुझे नहीं जचता कि वो न्याय कर पा रहे हैं उस शब्द के साथ
1: जी जी जी।
3: आप अपना धर्म छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि हमें पब्लिक को खुश करना है, मैं इसके हक में नहीं
1: जी जी जी।
3: जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं, जितने बड़े बड़े नाम हुए हैं, क्या वो इससे प्रसिद्ध हुए हैं कि उन्होंने वहाँ चुटकुले सुनाए थे? नहीं
1: जी,
3: उन्होंने समाज को बदला है, दिशा दी है, उनकी बातों को रखा है, बड़े गंभीरता से किया है और पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने उस विधा को निभाते हुए किया है।
1: Exactly.
3: जितने बड़े बड़े नाम है, जितने भी किताबें आप पढ़ेंगे या कॉलेज में स्कूलों में लगी हुई होती हैं कविताएं, तो वो हम जैसा परोसेंगे वैसे ही हम अपने श्रोताओं को या दर्शकों को तैयार करेंगे
1: जी। बिल्कुल,
0: बातें बहुत खूबसूरत चल रही हैं, लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है आज दिल शायराना, मैं आपके साथ गीत हूँ। अब आप दोनों से एक सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है, स्टेज की, ओपन माइक की, या काव्य गोष्ठी की तालियां, या एक कमरे में बैठी हुई अपने अपने खुद के लिए लिखी हुई कोई लाइन, क्या ज्यादा पसंद है मैम आपको?
1: नेचुरल, हर जो कवि है या शायर है जो कविता लिखता है करता है वो चाहता है कि कोई अच्छी गूढ़ बातें करे और अच्छे लोगों में करे, तो नेचुरल वो अपनी अच्छी कविताओं को कहीं अच्छे लोगों में सुनाता है।
0: हाँ जी।
1: मेरा मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ जाके फुवड़ता करें, ये बात मैंने नहीं कही थी। मैंने सिर्फ ये कहा था सरल शब्दों को इस्तेमाल किया जाए, बहुत ज्यादा गूढ़ शब्द चाहे वो हिंदी के हो चाहे वो उर्दू के हो, आम आदमी को जो समझ नहीं आ रहा उनका प्रयोग ना किया जाए।
0: जी जी।
1: मेरा अर्थ ये नहीं था वहां जाके चुटकुले सुनाए या फुवड़ता करे, मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया।
0: जी जी जी।
1: आप अगर सरल भाषा में लिख रहे हो तो फुवड़ता नहीं है
0: जी,
1: या गूढ़ भाषा लिखकर ही आप सोचे मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा भी नहीं है। मतलब जो आदमी समझ सके उन भाषाओं का इस्तेमाल करे। मैं भी इस बात के खिलाफ हूँ कि जो वो चुटकुलेबाजी करते हैं, और मैं तो ज्यादातर मुशायरे पढ़ती हूँ, वहाँ पर ये सब नहीं चलता है।
0: जी,
1: कभी सम्मेलनों में फिर भी चलता होगा, और मैंने तो कभी भी नहीं किया ये सब।
0: जी जी।
1: और बिना उसके करे भी, ये सब किए बिना भी मैं मंचों पर हूँ।
0: जी।
1: मेरा कोई आप वीडियो उठा के देख ले, मैंने ये सब कभी नहीं किया, और मैं लगातार मंचों पर।
0: कोई रचना जो आज आप हमारे लिसनर्स के सामने रखना चाहती हूँ, जो आपकी कोई भी खूबसूरत रचना है आज हम जरूर सुनेंगे।
1: मैं एक मतलब और एक शेर पढ़ना चाहती हूँ कि दिल का दरिया कटाव करता रहा, दिल का दरिया कटाव करता रहा, इश्क सीने में घाव करता रहा, और एक ताजिर से हो गया था इश्क व्यापारी से, एक ताजिर से हो गया था इश्क उम्र भर मोल भाव करता।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
1: और ऐसे ही कि सांस की जब तक हिस्सेदारी रहती है, जंग हमारी खुद से जारी रहती है, इश्क अगर एक बार किसी से हो जाए मरते दम तक ये बीमारी रहती है।
0: क्या बात है।
1: तेरी आंखें बेशक तेरी आंखें हैं, तेरी आंखें बेशक तेरी आंखें हैं, लेकिन इनमें शक्ल हमारी रहती है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा। सर आपके पास आते हैं, आपकी कोई खूबसूरत रचना जो आज आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहें, हम जरूर सुनेंगे।

0: देखिए गीत जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मेरे से पहले के लोगों ने ना कहा हो
1: जी।
0: और ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास कि अगर मैंने नहीं सुनाया तो किसी का नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो मेरे भाव हैं, जिस तरह से मैं कलमबद्ध करता हूँ, कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ।
1: बिल्कुल सर।
0: कि एक दिन मेहनत तुम्हारी रंग लाएगी, एक दिन मेहनत तुम्हारी रंग लाएगी, कामयाबी की डगर तुमको दिखाएगी। मुश्किलों से जूझने का हौसला रखिए, मुश्किलों से जूझने का हौसला रखिए, जिंदगी ता जिंदगी फिर मुस्कुराएगी।
1: क्या बात है।
0: और बालिका के भ्रूण को मत कोख में मारो, बालिका के भ्रूण को मत कोख में मारो, एक दिन घर को यही जन्नत बनाएगी।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया।
0: कुछ पंक्तियां और रखता हूँ कि चुभेंगे खार तो रस्तों पे चलना छोड़ दोगे क्या, खार माने कांटे, कि चुभेंगे खार तो रस्ते पे चलना छोड़ दोगे क्या, कहो मंजिल को पाने का इरादा छोड़ दोगे क्या।
1: बहुत बढ़िया।
0: और हमें भी जानिबे मंजिल इसी रस्ते से जाना है, हमें भी जानिबे मंजिल इसी रस्ते से जाना है, हमारे वास्ते थोड़ा सा रास्ता छोड़ दोगे क्या।
1: क्या बात है।
0: हमारे वास्ते थोड़ा सा रास्ता छोड़ दोगे क्या, हजारों हादसे होते हैं रोजाना ही सड़कों पर, हजारों हादसे होते हैं रोजाना ही सड़कों पर, इसी डर से भला घर से निकलना छोड़ दोगे क्या।
1: बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। बातें बहुत खूबसूरत चल रही हैं, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है आज दिल शायराना, मैं आपके साथ गीत हूँ। आप लोगों से बात करके बहुत मजा आया है। अब वक्त है हमारे शो को यहाँ समाप्त करने का, तो जाते जाते आप लोगों से एक मैसेज के थ्रू जो है मैं बात करना चाहूंगी। हमारे जो यंग पोइट्स हैं या पोइटेस हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगी, वो किस तरीके का कॉन्टेंट यूज कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या उनको आप बताना चाहेंगी?
1: मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो वो कोई भी विधा अपनाते हैं, वो गजल है, गीत है, मुक्तक है, उसका थोड़ा व्याकरण वो पढ़ लें या सीख लें, चाहे वो उस्ताद बनाए चाहे वो खुद सीखें। एक तो छंदबद्ध रचना होनी चाहिए, ये पहली शर्त है हमारे यहाँ आपकी कवि या शायर बनने की, कि छंदबद्ध हो, कोई भी रचना हो उसका ज्ञान उन्हें प्राप्त करना चाहिए। और कहते हैं मुताला, जिसे हम बोलते हैं, जिसे कहते हैं पढ़ना, वो उन्हें पढ़ना चाहिए, बड़े बड़े जो कवि हुए हैं, शायर हुए हैं, फिर कुछ लिखने की सोचनी चाहिए। हम जितना सुनते हैं, जितना पढ़ते हैं, उतना अच्छा लिख सकते हैं
0: जी।
1: उसके लिए हमें बड़ों को सुनना पड़ेगा।
0: Exactly.
1: आज खास बात क्या है, आप मंच पे जाओ, हमारे जूनियर्स बैठे रहते हैं, वो अपना आप सबसे पहले वही पढ़ते हैं, क्योंकि सीनियर्स का बाद में पढ़ना होता है, वो पहले पढ़ेंगे, उतर के चले जाएंगे कि हमें क्या करना है इन्हें सुनकर, जैसे वो बेवकूफ है, तुम सब समझ चुके हो। तो ये बात सबको बुरी लगती है, फिर उनके लिए नुकसानदेह है, उनका क्या है, उनको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनको उनको सुनना चाहिए। जो अध्यक्ष है हमारे, जो सदर है, उनको नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो लास्ट में पढ़ेंगे, तो कहाँ इतना इंतजार करती है जनरेशन, सोचती है बस हमने पढ़ लिया, अब उधर के चल पड़ो, अध्यक्ष तो बोलता रहेगा जो बोलेगा
0: जी, जी।
1: तो ये गलत है। उनको पहले तो ये चीज सीखनी चाहिए, अदब। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज अदब सिखाई जाती है, कि कैसे बड़ों के साथ उठना है, बैठना है। पहले जब आपको अदब ही नहीं आएगा बैठने का बड़ों के साथ, तो आप सीखेंगे क्या
0: जी?
1: तो वो थोड़े अदब होते हैं स्टेज के, वो आपको अपनाने चाहिए, कि स्टेज पे कोई पढ़ रहा है तो आप बातें ना करें, मोबाइल ना देखें, उसे सुने, बच्चे आजकल के पीछे बातें ही करते रहते हैं सही ना। तो ये सब चीजें आप सीखेंगे तो फिर ये तो बात की बात है, आप क्या लिख रहे हैं।
0: Exactly.
1: पहले तो आप अदब सीखिए
0: जी, जी।
1: फिर आप लिखना सीखिए, फिर आप पढ़िए। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही अच्छा नहीं लिख रहे, वो अच्छा लिख रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करती, मुझे अच्छा लगता है उनका लेखन, लेकिन उनको थोड़ी सी ना अदब की कमी है, और एक पढ़ने की कमी है, एक समझने की, सुनने की कमी, सबसे दिक्कत वो है उनके साथ दिक्कत। बाकी ठीक है, पढ़ते रहे, हम भी नए थे कभी, वो भी नए हैं, वो भी समझ जाएंगे एक टाइम के बाद
0: जी। जी सर, आपके पास आते हैं, आपका क्या मैसेज है हमारे लिसनर्स के लिए?
2: यही कहना चाहूंगा कि जिनकी भी रुचि लेखन में है या कविता लिखने में है, तो पहले उनको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, अच्छा पाठक बनना पड़ेगा। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे, उतना ही उनके लिए लाभकारी होगा। आप अगर 10 पेज पढ़ेंगे तब जाके आप कहीं 10 शब्द लिख पाएंगे
0: जी।
2: तो ये सबको देखना है और अपनी दिशा, अपनी रुचि के अनुसार उनको अपनी दिशा तय करनी है कि किस विधा में वो लिखना चाहते हैं
0: जी।
2: किसी के थोपे हुए पर नहीं, अपनी इच्छा से वो को चुने और उसमें जितना हो सके उतनी गहराई तक जाएं
0: जी।
2: इस साहित्य का तो वो समुन्दर है कि जितना तह में जाओगे उतना ही कम है
0: जी।
2: इसमें जितना डूबोगे उतना उभरोगे, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है
0: जी। जी थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पर आए और इतनी सारी बातें हमारी लिस्ट तक पहुँचाई, थैंक यू सो मच सर,
2: बहुत बहुत धन्यवाद
0: आपका जी। और लिसनर्स, आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: मम्मा मम्मा आपको गर्मी लगती है क्या?
1: बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुबह से 3 बार नहा चुकी हूँ, फिर भी वही हाल है मेरा।
0: तो फिर मम्मा बाहर जो डॉगी है और जो छत पे जो बर्ड्स आते हैं उन्हें भी तो लगती होगी ना मम्मा?
1: शायद मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है मुझसे?
0: मम्मा जब आप इतनी गर्मी से परेशान हो तो सोचो, वो बेजुबान तो बता भी नहीं पाते उन्हें कितनी गर्मी से दिक्कत होती है, तो मम्मा हम उनके लिए पानी तो रख सकते हैं ना।
2: कभी कभी इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात हमें किसी किताब से नहीं, एक छोटे बच्चे की मासूमियत से सीखने को मिलती है। इस तपती गर्मी में एक छोटा सा बोल पानी का किसी बेजुबान की प्यास ही नहीं उसकी जान भी बचा सकता है। तो इस गर्मी घर के बाहर जानवरों के लिए और बेल्कनी या टेरिस में बर्ड्स के लिए थोड़ा सा पानी जरूर रखिए।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके। सपना हूँ मैं आपके साथ और ले आई हूँ आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, क्योंकि बातें तो होती ही रहती हैं जब मिल बैठते हैं तीन यार, आप मैं और आज का हमारा बॉलीवुड स्टार। वैसे आज मैं जिस स्टार की बात कर रही हूँ उनके लिए तो अपना फेवरेट किरदार पाना जैसे चौधरी का चांद हो गया था, क्योंकि झूठ बोलकर जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आए तो इन्हें बहुत सारे कैरेक्टर्स निभाने का मौका मिला और एक मुकाम तो ऐसा आया जब इन्हें लगा कि बस अब मेरी यही इमेज हिंदी सिनेमा में फिक्स हो चुकी है, इससे हटकर मैं कोई भी किरदार नहीं निभा पाऊंगा। लेकिन अंदर एक जीर तो थी कुछ नया और स्टाइल करके दिखाने की, पर इनकी इच्छा पूरी हुई अपने फिल्मी करियर के 20 साल बाद। जी हाँ, हम लोग अक्सर ये कहकर हार मान जाते हैं कि इतना वक्त हो गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर मुझे मेरी फेवरेट चीज नहीं मिल पा रही है या वो चीज जो मैं कर सकती हूँ मैं नहीं कर पा रही हूँ। सोचिए, इन्होंने 20 साल इंतजार किया अपने उस सपने को पूरा होते देखने के लिए। आज किसकी बात कर रही हूँ जरूर बताऊंगी आपको, लेकिन हाँ, ये कैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर रहे जिन्होंने पूरी फिल्म का भार अपने कंधों पर ले रखा था, ये मजबूत कंधे किसके थे अभी नहीं बताऊंगी। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए इन ट्रैक्स को, वापस आकर एक बार फिर से स्वागत करूंगी आप सभी का एक मजबूत किरदार के साथ।

0: save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: चलिए उस दौर में जहाँ शर्मिला की अदाएं,
2: चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा.
3: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया.
1: हेलन के ठुमके और मधुबाला की सुंदरता के चर्चे थे हर जुबान पर. तो सुनिए ऐसे ही किस्से सुनहरी दौर की सपना के साथ. रात बाकी, बात बाकी है.

परिणीता फिल्म से एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत कैसी पहेली है जिंदगानी, सुनिधि चौहान की आवाज में इस गीत को आप सभी एंजॉय कर रहे थे। और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। सपना बनी हुई हूँ मैं आपके साथ और आज बात करने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत की जिनकी जिंदगी भी किसी पहेली से कम नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 10th क्लास के बाद ही ये घर से ऑलमोस्ट भाग गए थे। क्या थी ये स्टोरी आपको बताऊंगी, फिलहाल नाम बता देती हूँ मैं आज के कलाकार का। और ये थे हमारे अपने असित सेन साहब, जिनका जन्म 13th मई 1917 को गोरखपुर में हुआ। और क्योंकि इनके पिताजी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाया करते थे, ग्रामोफोन और रेडियो का काम किया करते थे, तो असित को बिल्कुल भी पसंद नहीं था अपने पिताजी की उस दुकान पर बैठना। तभी इन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से भागने का कोई उपाय बनाया जाए। और तभी इन्हें पता चला कि इनकी दादी जी प्लान कर रही हैं इनको शादी के बंधन में बांधने का। तो इन्होंने तो मौका लगते ही एक चौका लगाया और अपने पिताजी से कहा कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता जाना चाहता हूँ, और तुरंत ही ये कोलकाता के लिए निकल गए। पर क्या आप जानते हैं, ये पढ़ाई का तो सिर्फ बहाना था, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई नहीं करनी थी बल्कि फिल्म मेकिंग करनी थी। पर इनके लिए तो कुछ बड़ा इंतजार कर रहा था और ये था फिल्म मेकिंग का चस्का, जिसके चलते इन्होंने झूठ बोला कि ये पढ़ना चाहते हैं और कोलकाता आए थे। पर यहाँ पर एज अ प्रोफेशन इन्हें फिल्म मेकिंग तो नहीं मिली, लेकिन हाँ इन्होंने अपनी इनिशियल स्टेज को फोटोग्राफी के नाम कर दिया। बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे इसलिए इन्होंने इसी चीज को एक्सेल करना ठान लिया, और देखते ही देखते इनका काम काफी अच्छा चल पड़ा। साथ ही इन्होंने थिएटर भी ज्वाइन किया ताकि फिल्म मेकिंग के गुण सीख लें। पर कहते हैं ना, होता तो वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, तो इनके लिए कुछ और ही मंजूर था ऊपर वाले को। क्या करने आए थे और क्या कर रहे थे और आगे क्या होना बाकी था, ये सभी बातें हम करते रहेंगे। फिलहाल सोना जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया, गाने की बात कर रही हूँ। ओ मेरे सोना रे सोना, ओरिजिनली इसे गाया था आशा भोसले जी ने और इसे पिक्चराइज किया गया था आशा पारेख जी

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: सरिया सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म फुकरे। और एक बार फिर से इसी गीत के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। रात बाकी बात बाकी में सपना बनी हुई हूँ मैं आपके साथ। और आज हम रात बाकी बात बाकी में असित सेन साहब की बात कर रहे हैं, जो कि ये कहकर भागे थे कोलकाता कि मैं तो पढ़ाई करना चाहता हूँ, पर यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई ना करके नितिन बोस साहब के साथ फिल्म मेकिंग सीखने का प्लान बनाया। और साथ ही इन्होंने कोलकाता का न्यू थिएटर ज्वाइन किया ताकि एक्टिंग की बारीकियों को समझ पाए। पर होता तो वही है जो मंजूर है खुदा होता है। तो भाई साहब, जहां पर ये कमान पकड़ रहे थे एक्टिंग पर, वहीं इन्हें एक बार फिर से बुलावा आया इनकी जन्मभूमि गोरखपुर से, क्योंकि इनके पिताजी के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनकी रिटायरमेंट पार्टी को शूट करने के लिए इन्हें बुलाया गया। और यहां आकर जब इन्होंने इस पूरे इवेंट को कवर किया तो हर कोई इनकी फोटोग्राफी का कायल हो गया। इतना ज्यादा इन्हें प्रेज किया गया कि थक कर इन्होंने 1932 में गोरखपुर में ही अपना एक फोटोग्राफी स्टूडियो स्टार्ट कर लिया। स्टूडियो बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और फाइनली सबको ये लगने लगा था कि चलिए अब तो ये प्रोफेशनली सेटल हो चुके हैं गोरखपुर में। पर यहाँ पर वक्त आ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, और क्योंकि फोटोग्राफी का सारा सामान इंग्लैंड से आता है इसलिए इन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। और इस बार इन्होंने रुख किया मुंबई का, और यहाँ पर इन्हें एक फिल्म मेकिंग कंपनी में स्टिल फोटोग्राफी का काम भी मिल गया। पर तभी इनके घर से एक बुलावा आया, क्योंकि इनके दो फैमिली मेंबर्स बहुत ही सीरियस थे और उन दोनों को खो देने का गम कुछ इस तरह इन पर भारी पड़ा कि ये पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए और गोरखपुर में कई सालों तक वो इसी गम में रहे। पर वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद एक सवेरा आता है, तो इनकी जिंदगी का सवेरा भी हुआ। और इस बार इन्होंने अपने आप को रिवाइव करने के लिए कोलकाता को चुना, और यहाँ आकर इनके साथ जो हुआ वो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या हुआ था बताऊंगी आपको, पर उससे पहले हम बुला लेते हैं ऋषि कपूर साहब को, जो आपको अपने दिल की कहानी चीख चीख कर सुनाना चाहते हैं।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी को दिल दिया?
2: किया।
1: मैंने भी दिया।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: इंसानियत सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, हर जीव के लिए है। क्या कभी सोचा है कि जो पंछी आपकी छत पर आते हैं वे सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी उम्मीद से आते हैं। गर्मी उनके लिए भी उतनी ही कठिन है जितनी हमारे लिए। एक छोटी सी कोशिश, एक मटका या एक बोल पानी भर कर रखिए, शायद आपकी एक कटोरी पानी से किसी की प्यास बुझ सके।
2: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
3: सुन भाई सुरेंद्र।
4: हाँ भाई सुरेंद्र।
3: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
4: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: जिनकी मुस्कान ने लाखों दिल जीते, पर उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे किस्से जो किसी ने ना सुने, तो सुनिए रात बाकी बात बाकी में सपना के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। वैसे जितना दर्द इस गाने में है उतना ही दर्द कुछ लोगों की जिंदगी में भी होता है, पर जब हम उन्हें बड़े पर्दे पर देखते हैं तो हम कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते कि इतनी स्ट्रगल भी उन्होंने कभी की होगी। फिलहाल स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, सपना हूँ मैं आपके साथ। और आज रात बाकी बात बाकी में हम असित सेन साहब की बात कर रहे हैं, जिन्होंने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कोलकाता जैसी सिटी को चुना और यहाँ आने के बाद एक दोस्त की मदद से उनकी मुलाकात एक्ट्रेस सुमित्रा मुखर्जी और उनके पति देव मुखर्जी से हुई और इन दोनों को उनका अंदाज कुछ इस तरह भाया कि वो उन्हें ले गए डायरेक्टर बिमल रॉय के पास, जो कि अपने लिए एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे और असित के रूप में उन्हें वो थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर मिल चुके थे और बिमल रॉय के साथ मिलकर उन्हें कई फिल्मों में असिस्ट किया, जिसमें परिणीता, बिरज बहू, देवदास, दो बीघा जमीन, ऐसी ना जाने कितनी फिल्मों के नाम शामिल हैं। अब चलिए, जब बात आ ही चुकी है देव बाबू की यानी कि दिलीप कुमार साहब की देवदास की, तो उसके बारे में बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी सारी बातें हैं उस फिल्म के बारे में करने के लिए कि मुझे लगता है कि पूरा एपिसोड तो हम ऐसे ही खत्म कर देंगे। फिलहाल थोड़े छोटे में इसको कवर करने की कोशिश करती हूँ। इस फिल्म की मेन कास्टिंग में आपने दिलीप कुमार, जो कि देवदास का रोल प्ले कर रहे थे, सुचित्रा सेन, जो पारो के रूप में नजर आई थी, और साथ ही वैजंती माला को देखा था चंद्रमुखी के रूप में। पर क्या आप जानते हैं कि पहले पारो का किरदार मीना कुमारी जी को ऑफर किया गया था। बिमल रॉय चाहते थे कि इस किरदार को सिर्फ मीना कुमारी ही करें, पर उनके हस्बैंड कमल अमरोही साहब ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी जो कि बिमल रॉय चाहकर भी पूरी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मीना कुमारी को इस फिल्म से बाहर करना पड़ा। दूसरा मेन रोल था चंद्रमुखी का, जिसके लिए बहुत सारी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया था पर सब ने इनकार कर दिया। ये एक्ट्रेसेस नरगिस, बीना रॉय और सुरैया थी, पर इन सब के ठुकरा दिए जाने के बाद ये कैरेक्टर पहुंचा वैजंती माला जी के पास, और क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने तुरंत इस रोल के लिए हाँ कर दिया, जिस रोल के लिए बाद में उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। पर क्या आप जानते हैं कि वैजंती माला वॉज दी फर्स्ट एक्ट्रेस जिन्होंने फिल्म फेयर को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर मेन कैरेक्टर जितना ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए उन्हें सपोर्टिंग एक्ट्रेस नहीं बल्कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलना चाहिए था। ये कहकर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस अवार्ड को, एंड फाइनली शी बिकेम दी फर्स्ट एवर एक्ट्रेस हु रिजेक्टेड फिल्म फेयर। और इस फिल्म का मेन कैरेक्टर हमारे देव बाबू, जिन्होंने तो हिस्ट्री रच दी। 1955 में आई फिल्म देवदास उनकी 27th हिट फिल्म थी बॉलीवुड में, 27वीं हिट फिल्म। OMG, शायद इसीलिए इन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। अच्छा, वैसे तो इस फिल्म के सारे गाने हिट थे, पर एक गाना ऐसा था जो कि इस फिल्म में नहीं डाला गया था। SD बर्मन साहब का तैयार किया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत था, जिसे फिल्म में तो जगह नहीं मिली, लेकिन हाँ 10 साल बाद देवानंद साहब की फिल्म गाइड में इस गीत को लिया गया और बन गया ये एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग। एंड दैट सॉन्ग वॉज पिया तो से नैना लागे रे। क्या बात है, कितनी सारी स्टोरीज होती है ना एक फिल्म के पीछे, कितने सारे फैक्ट्स होते हैं जिनसे हम शायद हमेशा के लिए अनजान रह जाते हैं। पर वापस चलते हैं अपने असित सेन साहब की ओर, जो कि फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पर एक फिल्म ने उनका पूरा प्रोफाइल ही बदल के रख दिया भाई, उन्हें बना दिया सपोर्टिंग एक्टर। कौन सी थी वो फिल्म जिससे उन्होंने एक्टिंग का डेब्यू किया था फिल्म इंडस्ट्री में, ये आपको जरूर बताऊंगी, और किसने दिया था ये रोल ये भी शेयर करूंगी। पर फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का।

0: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
1: A few moments later,
2: मेरे सब दिखाई दे रहा
0: है। बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: क्या आप जानते हैं, बच्चे की सेहत की शुरुआत माँ के गर्भ में ही हो जाती है। सही पोषण मतलब स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा। तो जुड़िए पोषण की पाठशाला में आरजे अंजलि के साथ, जहां हर शनिवार और रविवार सुबह 10 से 11 बजे बात होगी माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और सही पोषण पर, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे गायनी, न्यूट्रिशनिस्ट और योग गुरु, सिर्फ आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए।
4: तो सुनना ना भूलें पोषण की पाठशाला, सिर्फ और सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वेलकम बैक है जी रेडियो महारानी 89.6 पर। सपना हूँ मैं आपके साथ और आज रात बाकी बात बाकी में हम बातें कर रहे हैं असित सेन साहब की, जिनकी लाइफ को अगर हम ओवरऑल देखें तो काफी स्ट्रगल करना पड़ा है इन्हें। जहाँ पहले इन्होंने अपने आप को एज अ फोटोग्राफर अपने होम टाउन में सेट करने की कोशिश की और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ से इन्हें आना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके थे। वहीं कोलकाता आने के बाद इन्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं फिल्मी जगत में कुछ अपना करियर बना सकता हूँ। तभी इन्होंने बिमल रॉय साहब को असिस्ट करना शुरू किया। कई फिल्में उनके साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन्होंने डायरेक्ट की, पर वो आता है ना एक आपका सैचुरेशन पॉइंट जहाँ आपको ऐसा लगता है कि दैट्स इट, अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद से कुछ फिल्मों को डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो एज अ डायरेक्टर इन्होंने बहुत सारी फिल्मों को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, पर साथ ही साथ ये फिल्मों में छोटे मोटे कैरेक्टर्स भी कर रहे थे, जिसमें इन्हें 1945 में पहली बार हमराही फिल्म में देखा गया था। बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, इतना छोटा सा कि फिल्म में कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। 1949 में छोटा भाई फिल्म में एक छोटा कैरेक्टर, वो भी बहुत ही छोटा था पर हाँ विजिबल था, एक नौकर का किरदार इन्होंने निभाया और यहाँ से ये सबके नोटिस में आने लगे थे। और क्या आप जानते हैं कि ये वाला जो कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था, इसकी इंस्पिरेशन भी इन्होंने अपने घर में काम करने वाले एक सर्वेंट से ही ली थी। जिस तरीके से वो बोला करता था और जिस तरीके से वो सीरियस सिचुएशन को भी कॉमिक वे में प्रेजेंट करता था, एग्जैक्टली उसी से इंस्पायर्ड इन्होंने ये कैरेक्टर फिल्म छोटा भाई में प्ले किया था। पर 1962 में आई फिल्म 20 साल बाद में इनके कैरेक्टर को फाइनली लोगों ने प्रेज किया और इन्हें इनके अंदाज के लिए काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा, जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए एक टेंशन का टॉपिक भी बन गया था क्योंकि वर्सटाइल होना चाहते थे ये, पर इनकी एक कॉमिक इमेज इंडस्ट्री में फिक्स हो चुकी थी जो कि अब इनके लिए एक टेंशन का मुद्दा बन गया था। इसलिए इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को एक्टिंग से दूर करना शुरू किया और डायरेक्शन पे ज्यादा कंसंट्रेट किया। पर क्या वो डायरेक्शन में हिट हो पाए, ये बताऊंगी आपको, पर फिलहाल वक्त है कुछ ट्रैक्स का। एंजॉय करते हैं नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, दूल्हे का सहरा, सुहाना लगता है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: जीवन का असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ तपती जमीन है, लेकिन सोचिए कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भर कर किसी सुरक्षित जगह रख दो। छोटी सी मेहनत लेकिन किसी के लिए बड़ी राहत। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उनके लिए भी सोचिए जो

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जाके टंकी बंद कर।
1: पहले पर्दे का जादू वीडियो पर फिर लौटने आ रही है सपना लेकर अपना शो रात बाकी बात बाकी हर शनिवार और रविवार रात 8

0: रानी त्रिवेदी कुमार की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे जुल्मी सावरिया, और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर। रात बाकी बात बाकी में आज हम बातें कर रहे हैं असित सेन साहब की, जिन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे कैरेक्टर्स करना भी स्टार्ट कर दिया था अलोंग विद हिज डायरेक्शन। जहां इन्होंने एक जगह 1958 में चलती का नाम गाड़ी फिल्म में अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार मधुबाला जी के साथ काम किया, वहीं दूसरी ओर इन्होंने आनंद फिल्म में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी काम किया। सुजाता, 20 साल बाद, किताब, ऐसी ना जाने कितनी फिल्मों में ये दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि इनके कुछ कैरेक्टर्स तो इतने ज्यादा पसंद किए जाते थे कि उन पर फिल्में बनने लगी थी। जी हाँ, सही सुना आपने, उन पर फिल्में बनने लगी थी। जैसे कि इनका एक फिल्म का कैरेक्टर था जिसमें इन्होंने गोपी चंद जासूस का कैरेक्टर प्ले किया था। वो कैरेक्टर इतना हिलेरियस था कि फिल्म एक्टर राजेंद्र कुमार ने अपने भाई नरेश कुमार के साथ मिलकर उसी कॉन्सेप्ट पर एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम गोपी चंद ही रखा गया था। पर जैसा कि सब सोच रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसमें असित दूर दूर तक नजर नहीं आए। सिर्फ फिल्म इंस्पायर्ड थी उस कैरेक्टर से जो उन्होंने फिल्म में प्ले किया था। इसी बात को लेकर वो इतना ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि वो फिल्मों में रोल कर रहे थे, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी थी, और क्योंकि इनका कंपटीशन उस वक्त के बड़े बड़े कॉमेडियंस जैसे जॉनी वॉकर, महमूद असरानी, केस्टो मुखर्जी, जगदीप जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ था, तो इन्हें भी ऐसा लगता था कि ये वो मुकाम हासिल कर जाएंगे जो वो कर रहे थे। खैर, इनके अंदाज में जो मस्ती और जो चुलबुलापन था वो आपको सुनाती हूँ, पहले आप उसे एंजॉय कीजिए।
1: देश के बहुत बुरे दिन आ गए हैं। आज हमारे बीच पंडित जी नहीं है, नेता जी नहीं है, गांधी जी नहीं है, और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती।
0: इतना जबरदस्त टैलेंट होने के बाद भी आप सोच सकते हैं कि कोई निराश होकर एक्टिंग के करियर से दूर जाना चाहेगा। जी हाँ, असित सेन साहब जाना चाहते थे, और अब इन्होंने फिल्मों से एज एन एक्टर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया और दोबारा से फोकस किया अपने डायरेक्शन पर। यहाँ इन्होंने बहुत सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया, कुछ हिट हुई तो कुछ फ्लॉप भी। कौन कौन सी फिल्मों के लिए इन्हें अवार्ड मिले और कौन कौन सी फिल्में ऐसी थी जिन्हें इन्होंने पूरे दिल से बनाया पर वो कामयाबी नहीं हासिल कर पाई, इन सब के बारे में बातें करते रहेंगे। पर उससे पहले आपके दिलों का हाल जान लेते हैं।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून। ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
1: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।
2: सारा शहर मुझे 89.6 एफएम रेडियो महारानी के नाम से जानता है।
3: अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन?
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
0: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। एफएम 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, कहाँ ना प्यार है आपको हमसे और हमको आपसे। तभी तो हर रोज आपके लिए कुछ डिफरेंट सा लेकर आने की कोशिश रहती है हमारी। और आप भी हमें इतना प्यार करते हैं कि तुरंत 89.6 को ट्यून इन कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस अपने आज के स्टार की ओर, जो कि हैं असित सेन साहब, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ बिमल रॉय साहब। इनको असिस्ट करते करते इन्होंने कई सारी फिल्मों का एक्सपीरियंस लिया। क्योंकि ये बंगाली लैंग्वेज काफी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए इन्हें बंगाली स्क्रिप्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करने का भी काम दिया जाता था। अब ये वहां पर कुछ नॉवेल्स से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हुए कि इन्होंने बंगाली नॉवेल्स पर बेस्ड बहुत सारी फिल्में बनाई और बंगाली फिल्म्स के रीमेक भी हिंदी में बनाया करते थे। पर बिमल रॉय के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम करने के बाद सोली इन्होंने कुछ फिल्मों को डायरेक्ट भी किया, जिसमें सफर, बैराग, नाड़ी, ममता, अनोखी रात, खामोशी, ऐसी ना जाने कितनी फिल्मों का नाम शामिल है। कुछ फिल्में हिट हुई तो कुछ फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप भी हुई। हिट फिल्मों में सफर फिल्म का नाम शामिल है, जो कि 1970 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड दिया गया। पर 1982 और 3 में आई फिल्म वकील बाबू और मेहंदी जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि इनका एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन से भी दिल उतर गया और इन्होंने डायरेक्शन से अपने आप को धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया। ये अलग बात है कि ये फिल्मों को छोड़ रहे थे, पर फिल्में इन्हें नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि इन्हें अभी भी फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स का ऑफर मिल रहा था, जिनमें लोग अब इनके अंदाज को भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। वो जो स्लो वर्जन ऑफ डायलॉग डिलीवरी था इनका, दैट वाज अमेजिंग। और क्योंकि इन्होंने अब काफी ज्यादा वेट भी पुट ऑन कर लिया था, इसलिए लोग इनके थ्रू आउट इनकी प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा इंजॉय भी करने लगे थे। कभी फिल्मों में जासूस तो कभी वकील, तो कहीं पर ये एक पैम्पर करने वाले पापा के रूप में हमें नजर आ रहे थे। और इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक और भी नाम से जाना जाने लगा था, उस्ताद। ये सिंगल टेक रिएक्शन के उस्ताद थे। ये कहा जाता है कि जनरली ये अपने सारे कैरेक्टर्स को सिर्फ एक सिंगल टेक में ही डन कर दिया करते थे। पर वो कहते हैं ना कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कुछ गम छुपा होता है। इनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा था, जिसकी वजह से इनकी प्रोफेशनल लाइफ भी काफी ज्यादा इफेक्टेड थी। क्या चल रहा था ये आपको बताऊंगी, तब तक आप एंजॉय कीजिए रीमेक वर्जन ऑफ मंगड़ा।

0: पड़ता है।
1: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
2: यार एक बात बता, पानी पर GST लग गया है क्या?
3: अरे नहीं यार, पानी तो बिल्कुल फ्री है।
2: तो फिर भी कोई रख क्यों नहीं रहा?
3: अरे भाई, जब ना कोई टैक्स है ना कोई डिलीवरी चार्ज है, तो एक प्याला पानी रखने में कैसा एतराज है?
2: इससे पहले कि ये बेजुबान मोहल्ले का RTI दाखिल करें कि पानी गया कहाँ, उससे पहले एक बर्तन भर दीजिए और बेजुबानों की जान बचा लीजिए।

0: हर आवाज में कहानी, हर चेहरे में जमाना, रात बाकी बात बाकी में बिखरेगा फिर वही दौर पुराना।
1: आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है।
2: Oh yeah, it's the one that we're not seven, y'all.

क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है, ये बात हम कह सकते हैं हमारे असित सेन साहब के लिए, क्योंकि इनकी सूरत के ही तो सब कायल हो गए थे। इनकी डायलॉग डिलीवरी, इनकी अदाएं, ये कुछ इतनी स्वीट हुआ करती थी कि हर कोई इन्हें फिल्म में लेना भी चाहता था। अब गोपी चंद कैरेक्टर को ही देख लीजिए ना, इन पर तो पूरी फिल्म ही बन गई थी। ये अलग बात है कि ये इस फिल्म का हिस्सा नहीं थे, पर इनसे इंस्पायर्ड एक पूरी फिल्म बनी थी, ये छोटी बात तो नहीं है। जितना संघर्ष इन्होंने अपनी जिंदगी में देखा, किसी और की जिंदगी में होता तो शायद उनके चेहरे पर ये मुस्कुराहट ना होती, पर हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो गम छुपा होता है, उस गम को ओवरकम भी तो करना होता है। असित सेन परफेक्ट एग्जाम्पल थे इसी बात के। इन्होंने लाइफ में आई हर प्रॉब्लम को हंसते मुस्कुराते फेस किया, छोटी छोटी बातों से इंस्पिरेशन ली और उससे अपनी एक ऐसी इमेज बनाई इंडस्ट्री

में कि हसरानी और जगदीप जैसे कैरेक्टर्स को भी ये टक्कर देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में खड़े हो गए थे। खैर, जहां बात इनकी डायरेक्शन की थी तो वहां पर भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया। जब बात एक्टिंग की आई तो वहां पर भी इन्होंने झंडे गाड़ दिए भैया, क्योंकि पूरी 200 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने अपीयरेंस दिया है। वैसे जनरली हमने ये देखा है कि लाइफ में थोड़े से भी हर्डल्स हमारे सामने आते हैं तो वी प्रेफर टू क्विट, लेकिन असित ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उनकी लाइफ में भी बहुत सारे हर्डल्स आए, कुछ ऐसी दिक्कतें भी थी जिसकी वजह से इन्हें एक बार को लगा कि शायद मैं फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, वहीं गोरखपुर में अपने स्टूडियो में ही काम करता रह जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत में कुछ बड़ा करना लिखा है तो पहले ही उन छोटी छोटी चीजों को कीजिए जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही इन्होंने किया। फोटोग्राफी में इतना अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद ही तो इन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर और फिर एक कॉमेडियन बनने का मौका मिला। तो लाइफ में कोई भी काम हो वो छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, और वो काम कब सीढ़ी बनकर आपको आपके मुकाम तक पहुंचा दे इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसलिए जो भी काम मिले उसे दिल खोल के करना चाहिए। फिलहाल आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया और असित सेन साहब की इस जर्नी को हम सब ने थ्रू आउट डे एंजॉय किया। और इसी के साथ वक्त भी हो चला है मेरा आप सबसे विदा लेने का। जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और हाँ, गर्मी बहुत है तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पास हमेशा एक वाटर बॉटल जरूर रखें। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ टाटा बाय बाय सायोनारा, फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको नसीब होगा। छोड़े जा रही हूँ आपको कुछ खूब

0: गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए, डिलीवरी के बाद कौन सी चीज बच्चा पचा पाएगा। कंफ्यूज्ड हैं? पर अब नहीं, सुनिए पोषण की पाठशाला आरजे अंजलि के साथ, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, जो देंगे आपके सभी सवालों के सही और सेहतमंद जवाब।
1: जिंदगी में भी हर खुशी में भी लगती है एक कमी,
0: तो बिल्कुल भी सुनना मत भूलिए, हर शनिवार और रविवार सुबह 10 से 11 बजे पोषण की पाठशाला, क्योंकि हर माँ और बच्चे का अधिकार है सही पोषण और स्वस्थ जीवन।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
4: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला।

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
3: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
4: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
4: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
5: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
6: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज, अर्ज
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारो।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो। मुंह उठा के आगे बढ़ना था। अब मैं चली तुम बोलते रहो।

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
2: है फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूं।
1: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
3: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम.

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

हर को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है,
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक,
1: चुप रहो आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

सुंदर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

0: से तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

कॉज पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

नौकरानियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: जाना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: जरा थाम लो बार बार पूछो ना दिल से भी काम लो
1: काम तो बताओ
0: काम सीधा साधा है
1: बोलो बोलो
0: आज लेना एक वादा है
1: क्या
0: आजा आजा शादी का इरादा है शादी का इरादा है
1: शादी
0: का इरादा है
1: शादी ना बाबा ना
0: मगर क्यों
1: शादी तो बर्बादी है
0: क्या कहती हो
1: जाती आजादी है
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय
0: सुनो तो
1: ना
0: सुनो तो सुनो तो आप यहाँ आए इसलिए आपने बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए पहले जरा आप मुस्कुराइए पहले जरा आप

हरे हैं।

0: जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आप

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मुराया मारे गिल गुमराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े गुमराया मारे गिल गुमराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है, बोलो।
1: तौबा तुम्हें एक बात यही है।
0: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है, है।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: चल दे जो समझाए उसी की मची धूम जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: भेजा सरकार ने।
1: कहना था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: भटक जाता है, ज्ञान भूल जाता है। भक्ति का पथ ही है बस ऐसा पथ, जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: समस्त भागवत धर्मन ऊपर निकुंज माधुरी श्री युगल चंद जो विलास करत हैं, जिन यह समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे ते आप ते जाई अंतर परे निसंदेह। अब यहाँ रस के उपासक को, रसोपासक को, साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि सभी से ये चर्चा करनी उचित नहीं है। देवदास जी कह रहे हैं कि जिन यह रस समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे तो आपते जाए, यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके हृदय में जो रसानुभूति है वही समाप्त हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अंतर परे निस्संदेह, और समाप्त नहीं होगी तो कह रहे शिथिल तो अवश्य पड़ जाएगी। पूर्व भी आपसे चर्चा हुई इस विषय पर, भजन को छिपाना ही भजन को बचाना है, भजन का गोपन। और अनधिकारी के सामने तो बिल्कुल भी ना कहा जाए। अच्छा, बहुत लोग मैंने ऐसे देखा वो खींचतान कर सबको लगाने का यहां प्रयास करते हैं, पर ऐसा संभव होता नहीं है भाई। जीव का कल्याण केवल केवल केवल ईश्वर के अनुग्रह से होता है। आप और मैं यहां बैठे हैं, ये आपका मेरा प्रयास नहीं है, ये आप पर और मुझ पर प्रभु की कृपा है। ये प्रभु की कृपा के प्रसाद से आप और मैं यहां पर बैठे। ताते मौन होए रहनो बहुत भलो है। सब जगह प्रवचन उपदेश की आवश्यकता नहीं है, है ना। दुबदास जी कह रहे आवश्यकता से भी कम बोलने वाला वस्तुतः साधक है। डोंगरे जी महाराज तो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है, आवश्यकता पड़ने पर भी आवश्यकता से कम, कहते हैं जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है वो सदा मौन रहता है। समझिए, वो सदा मौन में ही है, वो वाणी का तप कर रहा है। ये वाणी का तप है, आपको खबर भी नहीं है आप अपनी कितनी शक्ति अनर्गल बोल कर गंवाते हैं। तो फिर कहते हैं विजाति सुमिल वो भलो नाही। विजाति माने जो आपके रस के अनुकूल ना हो। अच्छा, एक और बात यहां मैं छोटी सी है पर कहना चाहूंगा, ये अच्छा है या बुरा इस वाद और विवाद में भी मत पड़िए। किसी के लिए ये घोषणा भी मत करिए कि अच्छा है या बुरा, हमारे अनुकूल नहीं है, बस इतना पर्याप्त है। अच्छे और बुरे के प्रपंच में पड़ना भी ठीक नहीं है। जो आपके लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा होगा, होगा निश्चित रूप से होगा भाई। ऐसा ही रचा है रचने वाले ने संसार। जो आपके लिए बुरा है ना वो किसी के लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए अच्छा है वो किसी के लिए अरुचिकर होगा। तो मैं कहता हूं अच्छे और बुरे के इस वाद में भी मत पड़िए। दूरम उपाय है, जो आपके अनुकूल ना हो बस मौन होकर वहां से दूर हो जाइए। वो आपके लिए नहीं है, बस वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। और अनुपयोगी की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौन रहकर उससे दूरी बना लेना ये बुद्धिमानी है। मौन हो जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। बिन सजाती सुमिल बात ना चलावे। जब तक कोई अपने भाव के अनुकूल हृदय ना मिले तब तक चर्चा ना की जाए, इस रस की तो कदापि ना की जाए। सेवक जी महाराज कहते रसिकन सो प्रीतम कहे, रसिक हृदय के सन्मुख अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जैसो जाको भाव है तैसी सिद्धि होए, ताते औरन सो प्रयोजन नाही। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, जैसे जिसकी भावना है। कबीर सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत जैसी